0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: खूबसूरती दिल और जमीर में होनी चाहिए, लोग बेवजह उसे शक्ल और कपड़ों में टटोलते हैं। ये कहना है अज्ञात का। नमस्कार, मैं हूं गगन और आप सुन रहे हैं शारदा सवेरा। सुनो शारदा 90.8 FM पर।

ईश्वर से कुछ मांगने पर न मिले तो उससे नाराज ना होना, क्योंकि ईश्वर वो नहीं देता जो आपको अच्छा लगता है, बल्कि वो देता है जो आपके लिए हमेशा अच्छा है। आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर शारदा सवेरा। मैं हूं गगन आपके साथ।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो
1: शारदा। यहां हमारे जीवन में बहुत कुछ ऐसा है, यहां जितने भी लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग करते ये हैं कि हम चाहते हैं महाराज जी हमें आप दो तो हमारी इच्छा का दो, हमें आपने जो करना है वो हमारी इच्छाओं का प्रति करो, हम जो करें अपने ऐसे हम जो सोच लें वही हो जाए, अगर इतना ऐसा आपको करना है तो जो सोचो वो हो जाए, तो फिर तो आपको भगवान से जुड़ना होगा, क्योंकि भगवान जो सोचते हैं वो हो जाता है। तो जब आप भगवान से जुड़ेंगे, प्रभु से, प्रभ अबनासी, भगवान कौन है, प्रभ अबनासी, प्रभ अबनासी से जब जुड़ेंगे तो ये शक्ति आपको प्रभ अबनासी दे देगा मुफ्त में, जो आप सोचो करोगे वो हो जाया करेगा। हम ऐसे ही हैं, त्रिलोचन दास ऐसा ही है, मैं जो सोचता हूं ना हो जाता है, इसलिए मैं सोचता ही नहीं हूं। ये सच बोल रहा हूं, मैं जो सोचता हूं कि मुझे, मैंने कभी जिंदगी में कुछ भी सोचा हुआ ये चाहिए हो गया, मिल गया, वो भी बहुत अच्छे हैं, वो बहुत बढ़िया है। भगवान से बड़ा कोई नहीं होता, प्रभु से बड़ा कोई नहीं होता, गुरु से बड़ा कोई नहीं होता। अब भगवान जी और प्रभु अविनाशी करते क्या हैं, अब अथॉरिटी तो मुझे दे दी कि जो सोचेगा हो जाएगा, और ये भी अथॉरिटी दे दी अब तू सोचेगा भी नहीं। अब इतनी ताकत लेके तू आराम से बैठा रहेगा, ये भी प्रभु का काम है। इसलिए जीत किसकी है, जो तुझको मंजूर होगा प्रभु वही होगा। जब छोटे हुआ करते थे तो बोले भगवान मिलेगा तो हम क्या मांगेंगे, हम गुड़िया मांगेंगे, पतंगे मांगेंगे। सोच अच्छी थी, गुड़ियों से खुश हो जाते थे हम लोग, गुड़िया वो जो उड़ती हैं वो हम पंजाबी में गुड़िया कहते हैं, यहां वो पतंग कहते हैं, बटाला में हमारे गुड़िया, पता नहीं गुड़िया हिंदी में गुड़िया वो होती है वो जो क्या कहते हैं डॉल। हाँ, हम लोग जब छोटे होते थे छोटी छोटी सी डिमांड्स होती थी, छोटी छोटी सी इच्छाएं होती थी और वो इच्छाएं पूरी हो जाती थी। अब हम बड़े हो गए हैं, हमारी इच्छाएं पूरी हो गई। अच्छा, मैं रहता इंसान की तरह हूं, कोई ऐसा नहीं है मुझे, और मैंने कभी मांगा नहीं अंदर से, आपको सच बताता हूं। आज महाराज जी साक्षात मेरे साथ बैठे हैं, आप बैठे हो, प्रभु की मौजूदगी है, कभी मन में सोचा ही नहीं कि ये हो जाए प्रभु। अपनी मेहनत करता हूं, कर्म करता हूं, अपनी मेहनत और कर्म से जो कुछ मुझे मिल जाए बहुत अच्छा है, और अगर मुझे ना भी मिले तब भी महाराज जी ने मुझे इतना सिदक दे रखा है, संतोष। मैं अपने आप को टेस्ट करता रहता हूं, टेस्ट टेस्ट मतलब कि अपने आप को देखता रहता हूं कि ये तेरे को नहीं मिला, अब बता तेरे मूड खराब हुए कि ठीक हुए, मेरा मूड फिर ठीक रहता है, खुश रहता है। उस वक्त मुझे ये अपनी ताकत नहीं इस्तेमाल करनी कि मेरे पास वो ताकत है जी, जो मैं सोच लूंगा वो हो जाएगा, इसलिए मैं सोचता ही नहीं हूं, अपने आप आने दो जो आ रहा है, नहीं आ पाया तब भी खुश हो जाओ, आज नहीं आया कोई बात नहीं, ये भी खुशी की बात है, नहीं हुआ तब भी खुशी की बात। आप लोग क्या करें, आप अच्छा अच्छा सोचो, अच्छा अच्छा दिन चढ़ जाए, थिंक अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, क्योंकि बहुत भीड़ भाड़ है। आप अगर अच्छे रहेंगे भी तो आपके आसपास के लोग आपको अच्छा नहीं रहने देंगे, ये भी याद रखिएगा, जानबूझ के आपसे टकराएंगे, खां आपकी गाड़ी चल रही है एकदम आएंगे, डॉक्टर साहब की गाड़ी बाहर वाले लोग ही ठोक जाते हैं, अपना तो बेचारे का कुछ चलता ही नहीं उनका, बाद में फोन करते हैं महाराज जी इंट्यूशन बहुत हो रही थी कोई गड़बड़ होने वाली है। गड़बड़ होने वाली है तो गाड़ी मत चलाओ, अपनी बीवी को दे दो गाड़ी, तू चला, उससे सारी गड़बड़े भाग जाएंगी, बीवी का नाम आते ही। भगवान अपने बंदों को पहले बता देता है, इनकी इंट्यूशन बहुत पावरफुल है, पहले बता खबरदार कर देता है कुछ होने वाला है। हमें भी खबरदार कर देता है, मुझे तो पहले कर देता है, मुझे एकदम से पता लग जाता है कि अब गड़बड़ होने वाली है, त्रिलोचन दास कुछ गड़बड़ होने वाली है, मैं तो ठीक है, धैर्य धैर्य धैर्य, शांति शांति शांति शांति शांति। पर प्रॉब्लम क्या है, अब गड़बड़ हो भी गई, मान लो आप जा रहे हो और दूसरा आपके साथ आके टकरा रहा है, फिर क्या करेंगे आप, क्या करोगे? मतलब टकराने वाला ये मतलब नहीं, मैं एक्सीडेंट की तरफ मत भाग जाना, टकराने वाला मतलब है कि आप तो चुपचाप बैठे हो और आप अभ्यास कर रहे हो गुरु का, भगवान का, मैं अच्छा सेवक बनूं, और आपको कोई आता है और आपके कानों में आम राम राम राम राम राम, आप तो गए, गुरु का नशा उतर गया है, भगवान का नशा उतार के चला गया, वो आपके अंदर कान में बात मार के पता नहीं क्या बात कर गया, आप तो है करते रहे। तो उसका क्या करोगे? जिस दिन आपको समझ आ गया, ज्ञान हो गया कि यही सत्य है, उस दिन समझ लो बेड़ा पार हो गया, सब कुछ ठीक हो गया। यह महिला तीन दफा आई हमारे पास, पहली दफा हो गया काम, दूसरी दफा फिर आई, तीसरी दफा फिर आई कि ट्रांसफर हो गया, दिल्ली से बाहर नहीं जाऊंगी। मैंने कहा गुरु बहुत बड़ा है, कहां जाने देगा। तो उन्हें रोती थी और मुझे समझ पड़ गई कि ये डिपेंडेंट है। ये बहुत अच्छा तरीका तूने अपनाया पुत्र, गुरु के पास आके रो दो, माए मर गया गुरुदेव मुझे बचा लो, तो गुरु बचा लेंगे, बात खत्म। अब गुरु के पास आके सोचते रहेंगे, हां जी मैंने कौन सी अरदास करनी थी, भूल ही गया, मेरे को अरदास बताओ क्या करनी है। दस लोगों से पूछते आओगे, यार मैं तो क्या करूं अरदास, कोई मतलब ठीक है, इधर देख लिया उधर देख लिया इधर देख, ठीक। ये समर्पण नहीं है, ये शरणागत नहीं है, यहां सोच आती है, यहां सोच सोच के आप चलते हो, सोच सोच के कदम उठाते, सेवक नहीं बने। गुरु की कृपा इतनी होती है कि गुरु के सेवक उसे कहते हैं जो गुरु को सब कुछ अपना कहता है, प्रभु हाय मैं तेरा हो गया, बस बात खत्म, अब तू संभाल मुझे, अब तेरा काम है मुझे संभालना, तू संभाल, अब मेरे से मैं नहीं संभलता, मेरा मन मेरे से नहीं संभलता, मेरी सोच मेरे से नहीं संभलती। ऐसे पुरुषों को संगत कहते हैं, ऐसे पुरुषों को संगत कहते हैं। संगत किसे कहते हैं? जो उस पर टिकी हुई है, जिसका पूरा ध्यान अपने गुरु पर, अपनी शरण शरण अपने परमात्मा। बड़े केस हैं, बड़े बड़े बेअंत, मैं आपको क्या कहानियां सुनाऊं। आप बोलेंगे हैं, एक बच्ची मुझे अभी परसों अपना दुखड़ा, उसको बहुत दुख आए पीछे, तो अब सुख मुझे सुना रही थी अपना। तो मैंने उस बच्ची से कहा, पुत्र मैंने कहा, जब मैं तुझे कहता था, उसे एक साल पहले मैंने कहा था, उसके जीवन पे एकदम से एक डेढ़ साल पहले प्रकोप आ गया। प्रकोप आया तो वो अपनी जिद पे थी, नहीं मैंने ऐसे नहीं करना, मैंने वो नहीं करना, ऐसा कर लो। मैंने कहा टिक जाओ, ये भगवान कोई कार्य कर रहा है, कोई लेसन दे रहा है, कोई बहुत बड़ी कोई कृपा करने वाला है, चुप हो जाओ और देखो क्या हो रहा है, शांत हो जाओ। समझ नहीं आई उसको, एक साल के बाद अब समझ आई और वही अपने शब्दों को वापस लेकर मेरे पास आई, आपने जो जो जो जो जो जो कहा था वो वैसा वैसा होता गया। बस मैंने कहा, तुम्हें विश्वास नहीं था पहले? बोले नहीं। कहते दुखों ने इतना सता दिया था, इतना तंग कर दिया था कि मेरा विश्वास रोज डोलता था। मैं कहता था महाराज जी मेरे साथ ऐसी बात करते हैं, ये तो ऐसी बातें सबके साथ ही करते होंगे कि कोई नहीं पुत्र सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहते आप ये बात करते थे तो मैं कहता था कि मैं कहती थी कि महाराज जी मुझे कोई ऐसा जादू करें, कोई ऐसा करामात करें, कोई चमत्कार करें कि दुख एक मिनट में परे कर दें, तो कर क्यों नहीं रहे मेरे महाराज जी दुख परे। तो मैंने कहा पुत्र, मैं उसको बार बार कहता था, मैं कहा बच्चे तेरा लेसन है, सीखना पड़ेगा, समा है, ये सीखने के लिए सिखाने के लिए आया है, सीखो कुछ और इतनी खुशियां आने वाली हैं। देयर इज आपके पास अगर दुख आए ना और बहुत ज्यादा दुख आए तो ये समझ लीजिएगा देयर इज ए इनविटेशन टू सुख, एक आमंत्रण सुख को पहुंच चुका है, वो सुख आपके पास आने ही वाला है, बस इंतजार कर लीजिए थोड़ा सा। तो एक साल के बाद उस बच्ची ने आप इतनी खुशी की खुशी होके एकदम सुख, उसके पास पैसा नहीं था, आज उसको महीने की इतना कृपा हो गई है कि वो कहते हैं मेरे को धनी धन महाराज जी, मेरे घर में आदमी भी खुश वो भी खुश, मेरे घर में धनी धन है महाराज जी, मेरा आदमी अब 5 लाख रुपए कमा रहा है महीने का। मैंने कर ले भाई 5, सिर्फ एक साल के अंतर अंतर आपने क्या कर दिया महाराज जी, हमें पता ही नहीं चला। ये सोचिए जरा, ये है जो गुरु पे सब कुछ छोड़ देते हैं। आप अपनी जिंदगी को समझिए। मैं बचपन में बहुत छोटा हुआ करता था तो उसके घर में ही कुछ गड़बड़ हो गई, कुछ परिवार वालों ने उसके साथ बहुत कुछ कर दिया, उनको बहुत कुछ हो गया। उस वक्त वो मुझे आके अब याद दिला रहा था, पीछे आया था मेरे पास 10-15 दिन पहले, मेरे को अंदर आ कहता महाराज जी जो मिला मुझे आपसे मिला, जो मैंने प्राप्त किया आपसे, आपने तो मुझे महाराज जी इतना बचाया, पल पल इतना बचाया महाराज जी, हम में खोट बहुत है, इतना आज दे दिया है कि हम आज महाराज जी इस योग्य नहीं है, इतना आपने हमारे को बख्श दिया, दे दिया, रहमत कर दी, कृपा कर दी। स्वीकार क्यों नहीं करते आप लोग आज आपकी जो जिंदगी है इतनी शांतिपूर्वक? ये तो आप भाग रहे थे आज से 1.5 साल पहले, झोला टांग के अब भागते हुए थे इधर उधर, आप टिक के बैठे हो, अपने आप पर कृपा हो रही है, आपकी इज्जत चेंज हो गई, आपके विचार चेंज हो गए, आपको शांति प्राप्त हो गई, पहले से ज्यादा शांत हो गए हो। ये सब कौन कर रहा है? गुरु ही तो कर रहा है, और कौन कर रहा है? गुरु बताएगा, एक एक को बताएगा कि मैंने तेरे पे ये रहमत करी है? गुरु नहीं बताता, ये तो हमें खुद ही पता लगना चाहिए कि गुरु हम पर क्या कृपा कर रहा है। अगर गुरु जताएगा, जता के तो फिर गुरु ने तो फिर वो फिर बात ना रही। गुरु थोड़ी बोलता है, ये तो गुरु के सेवक बोलते हैं कि प्रभु तेरी कृपा हो गई, तेरी कृपा हो गई, तूने कर दिया कमाल गुरुदेव, तूने कर दिया कमाल, आज बेड़ा पार कर दिया मेरा। सेवक को करना है। अब गुरु थोड़ी बोलेगा कि मैं आया तू तो ले तथास्तु किया, ले लिया मेरे से ये बातें नहीं चच्ची लगती। इनकी एक एक कृपा के ऋणी है हम, ऋणी ऋणी, कर्जा है सिर पर, एक एक पल का, एक एक पल का शुक्र है। जैसे नाम लिया प्रभु गुरु महाराज जी, हम इस दुख में हैं, कब उसने साथ नहीं दिया? सोचो जरा, क्या नहीं दिया? आप अपना हाल तो देखो, पुराने गुजरे जमाने में क्या हुआ करते थे, आज क्या है? बाबा जी का एक बहुत बड़ा काम अड़ा हुआ था, ये बड़े परेशान थे, तो मुझे 8 जनवरी पर बाबा जी मुझसे मांगते हैं, महाराज जी आज आपका जन्मदिन है, आज आप ना मत करिएगा, इनकार मत करिएगा, आज मुझे मालोमाल कर दीजिए। मैं सब बाबा जी के साथ बैठा था, उनको रब की बातें सुना रहा था। तो उस वक्त इन्होंने मुझसे उस वक्त मांगा, महाराज जी आप मुझे दे दीजिए जा जो जो मैं मांग रहा हूं। मैंने कहा बाबा जी दे दिया, जाओ आप पर कृपा हो गई, जो आपको चाहिए दे दिया, पूछो इनसे मिला कि नहीं मिला, बैठे हैं सामने, पूछ लो मिला कि नहीं मिला। वही सोच रहे थे बैठे बैठे, और वही सोच मैंने पकड़ ली कि बाबा जी के दिमाग में क्या चल रहा है। कहते वही सोच रहा था मैं, ये बात के बारे में सोच रहा था, मैंने आपको सुना भी दी, क्योंकि ये बता नहीं सकते, सत्संग तो मैं कर रहा हूं। ये सोच रहे थे बैठे, इतना बड़ा कृपा है, इनके मुख से सुन लो, बहुत बड़ी कृपा है इनके ऊपर। अभी ये बाबा जी हैं, एक नया उपकार फिर चढ़ा दिया और इनको पता है मेरा गुरु बहुत बड़ा है। मेरे से ऐसे करके रोते हुए इन्होंने बाबा जी ने मुझे कहा था, क्यों बाबा जी? गुरु है वो दयाल है। तभी मैंने कहा मैं सोचता नहीं हूं और जो सोचता हूं वो हो जाता है। आपके लिए ही सोचता हूं। अगर मैं खुद के लिए सोच लूं कि मैं बहुत ये बन जाऊं, उसी वक्त महाराज जी मुझे बना देंगे। पर क्या होगा, बन के क्या होगा? मैं बोलूं जी मैं ये हो जाऊं, मैं वो हो जाऊं, ये भी हो जाएगा, पर क्या होगा उसके बाद? मेरा प्रभु से नाता टूट जाएगा, क्योंकि मैं अब पदार्थों में जी रहा हूं, पदार्थों की दुनिया में चला गया हूं, परमात्मा की दुनिया से भाग गया हूं और पदार्थों में जी रहा हूं। इसलिए मैं सोचता ही कुछ नहीं हूं। जैसा प्रभु तुम्हें भावे वैसा होवे, जैसा तुम चाहो वही हो।
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। सुंदर स्त्री हीरा है, लेकिन नेक स्त्री हीरों का खजाना है, ये कहना है सादिका। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। मैं हूं गगन और प्रोग्राम है शारदा सवेरा।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजेइंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं। और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM, Suno Sharda.
4: राम राम दोस्त राम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ, वो गगन जो हमेशा गगन को छूने की बातें किया करता है, दिलों को जीतने की मैं कोशिश करता हूं अपने इस खास प्रोग्राम के माध्यम से। इसका नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। मंडे टू सैटरडे सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ, और हमेशा कहता हूं कि सुरक्षित चले, सुरक्षित घर पहुंचे, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। कहीं ना कहीं मैंने आज आपको इशारा कर दिया कि आज इसी विषय पर हम बात करने वाले हैं। विषय होगा रोड सेफ्टी, और जब रोड सेफ्टी का हम जिक्र करते हैं तो जिक्र होता है एक एक्सपर्ट का, और जिक्र होता है जो इस क्षेत्र में महारत हासिल रखते हैं कि हम क्या करें क्या ना करें। ये मेरा सौभाग्य है कि आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत जुड़ रही है जो कि हरफन मौला हैं। आप हिंदुस्तान टाइम्स में अपनी सेवाएं दे रहे हैं और रोड सेफ्टी के लिए बहुत बहुत बहुत काम किया है। खुश मिजाज इंसान है, हरफन मौला है, आप हैं अंकुर शरण जी। तो अंकुर जी, सुनो शारदा 90.8 FM पर आपका बहुत बहुत बहुत स्वागत है, वेलकम।
6: थैंक यू सर फॉर दिस अपॉर्चुनिटी एंड अ ग्रेट ऑनर।
4: थैंक यू सर, वेलकम। कैसा लग रहा है शारदा विश्वविद्यालय के इस आंगन में आकर आपको?
6: बहुत खूबसूरत सफर रहा। जब मैं एंटर किया इस कैंपस में, लिटरली दिल खुश हो गया, क्योंकि जिस तरीके से ये यहाँ का वातावरण आप लोगों ने बनाया है, स्पेशली जो ग्रीन एनवायरमेंट आप लोगों ने जो क्रिएट किया है, दिस इज रियली अमेजिंग एंड ऑसम।

0: ऐसा जस्ट कि अंकुर, तो भाई मैं तो पर्यावरण से बहुत जुड़ा हुआ हूँ और मैं चाहूंगा कि पर्यावरण से हर कोई जुड़े और कहीं ना कहीं अपना योगदान देता रहे।
1: माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात कम शब्दों में आपने रख दी और मैं इस बात को आगे लेकर जाना चाहूंगा। प्रधानमंत्री मोदी जी कहते हैं कि एक पौधा अपने माँ के नाम जरूर लगाइए, इस धरा को हरा भरा करिए। और जब इस तरीके से इस आंगन का जिक्र हो रहा है, इस प्रांगण का जिक्र हो रहा है, तो जिक्र करना चाहूंगा, बताना चाहूंगा कि हमारी जो टैग लाइन है सर, टैग लाइन ये है कि वेयर आर यू द वर्ल्ड इज हियर, और यही वजह है कि यहाँ बड़ी बड़ी फिल्मों की शूटिंग होती ही रहती है। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशाद 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और आज स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान है। हिंदुस्तान टाइम्स में आप अपनी सेवाएं दे रहे हैं, वहां पर आप सर्विस कर रहे हैं और सर्विस कर रहे हैं जन सेवा यानी कि रोड सेफ्टी पर बहुत धरातल पर आप काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं इनके साथ जुड़ा हुआ हूं। आप हैं अंकुश शरण जी। और अंकुश शरण जी, एक लाइन है, बड़ी खूबसूरत लाइन है कि ए भाई जरा देख के चलो। ये लाइन है कहीं ना कहीं रोड सेफ्टी पर सटीक बैठती हैं। क्या कहना चाहेंगे रोड सेफ्टी के बारे में?
1: देखिए, रोड सेफ्टी एक अभिन्न अंग है हम सबका। हम चाहे जहां से भी आते हैं, जिस समाज को भी हम बिलोंग करते हैं, हम चाहे विद्यार्थी हैं, चाहे हम बुजुर्ग हैं, कुछ भी है, आप सब सड़क को यूज करते हैं। तो मुझे लगता है कि सड़क पे चलते हुए हमें हमेशा ध्यान में तो रहना चाहिए, साथ ही साथ बहुत जरूरी है कि रोड सेफ्टी की प्राथमिकता को हमें नजरअंदाज कभी भी नहीं करना चाहिए। चाहे हम स्कूटर चला रहे हो, टू व्हीलर हो, चाहे फोर व्हीलर हो, हम लोग देखते हैं कि लापरवाही कि हम लोग ने जिस एटीट्यूड में हम लोग रहते हैं, तो उसी एटीट्यूड के साथ अगर हम रोड पे चलते हैं तो डेफिनेटली उसका खामियाजा हमें ही भुगतना पड़ता है
0: जी।
1: तो थ्रू रोड सेफ्टी कैंपेन के द्वारा हम लोग बहुत सारी ऐसी जानकारियां लोगों तक साझा कर रहे हैं, साथ में वॉलंटियर्स नेटवर्क को पैन इंडिया लेवल पे हम लोग रोड सेफ्टी स्क्वाड की मदद से कर रहे हैं, ताकि मैक्सिमम वॉलंटियर्स हमारे बने, क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा।
0: क्या बात है, बहुत खूबसूरत। फिर अपने शब्दों को दोहराते हुए यही कहूंगा कि कम शब्दों में बहुत अच्छी अच्छी बातें आप हमारे श्रोताओं तक पहुंचा रहे हैं। और इसीलिए मैं कहता हूं, बारंबार कहता हूं कि सुरक्षित चलें, सुरक्षित घर पहुंचें, सुरक्षित ऑफिस पहुंचें। कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। जरा सी भी स्पीड आपकी ओवर स्पीड होती है तो कहते हैं ना कि अपने पर्स में से अपनी फैमिली का फोटो निकाल लीजिएगा, तो कहीं ना कहीं एक अलार्म आपके दिमाग में घंटी बजेगी, नहीं यार मुझे ओवर स्पीड में नहीं चलना है। क्योंकि ओवर स्पीड में चलेंगे तो निश्चित तौर पर हो सकता है कि कहीं ना कहीं कोई घटना दुर्घटना हो जाएगी। और जब आप अपनी फैमिली के बारे में सोचेंगे तो आपको याद रहेगा कि नहीं, सुरक्षित चलना है, सुरक्षित घर या सुरक्षित ऑफिस पहुंचना है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन योर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। यह है ग्रेटर नोएडा का आपका अपना रेडियो स्टेशन। रेडियो स्टेशन एक सामुदायिक रेडियो स्टेशन होने के नाते समुदाय की बातें करते हैं, ज्ञान विज्ञान पढ़ने पढ़ाने जिंदगी को जीने की बातें करते हैं और बातें करते हैं रोड सेफ्टी के बारे में। ये एक ऐसा विषय है जिसके बारे में जान लेना समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। एक छोटी सी गलती की वजह से एक्सीडेंट हो जाता है, आपका अंग भंग हो जाता है या कभी कभी आपकी मृत्यु तक हो जाती है। इस विषय पर बात करने के लिए मेरे साथ एक्सपर्ट के तौर पर जुड़े हुए हैं हिंदुस्तान टाइम से आप हैं अंकुश शरण जी। तो अंकुश जी एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत धन्यवाद सर।
0: सर अभी मैंने जिक्र किया कि अंग भंग हो जाता है, कभी कभी मृत्यु तक हो जाती है, तो ऑन ग्राउंड में अगर बात करूं आपसे धरातल पर मैं जानूं कि किस तरीके हालातों को आप देखते हैं, क्या कहना चाहेंगे और किस तरीके से लोगों को ध्यान रखना चाहिए।
1: देखिए हम लोगों ने रोड सेफ्टी के ऊपर बहुत काम किया है और शासन प्रशासन के साथ मिलकर जो भी हो सकता है हम लोग उसकी अवेयरनेस कैंपेन्स तो कर ही रहे हैं, लेकिन अब क्या है कि उसे धरातल पर लाना बहुत जरूरी हो गया है। हम लोग को चाहिए कि जो भी बातें हम लोग को बताई जाती है समझाई जाती है उन्हें हमें अपने दैनिक जीवन में उतारना है। वो सिर्फ लिखित बातें या कोरी बातें नहीं है, उसे हम जितना ज़्यादा गंभीरता से लेंगे अपनी लाइफ को हम बहुत अच्छी तरीके से चला सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां जो होती हैं उसका तो इलाज है लेकिन हादसों का कोई इलाज नहीं है। उनका सिर्फ बचाव है कि जब हम सतर्क रहेंगे तो अपने आप को बचाएंगे, क्योंकि हम लोग ने देखा है कि जिस समय कोई भी एक्सीडेंट होता है उस समय जो प्राइम टाइम जो होता है हम लोग का राइट गोल्डन आवर उसके अंदर क्या हम
0: मॉर्निंग और इवनिंग टाइम
1: नहीं जो भी एक्सीडेंट हुआ उसके एक घंटे के अंदर।
0: अच्छा उस प्राइम टाइम की बात
1: प्राइम टाइम ओके। तो जो गोल्डन आवर होता है वो बहुत जरूरी होता है, लेकिन अब हम लोग क्या होते हैं कि भागा दौड़ी में इतने ज्यादा हो चुके हैं हमें ध्यान ही नहीं रहता। तो आज चाहे हम किसी के ऊपर भी दोषारोपण करें सबसे पहले हमें अपने ऊपर देखना है, अपनी स्पीड पे लगाम लगानी है, हमें समय पर पाबंद होके काम करना है। साथ ही साथ हमें ये देखना है कि हम मूक बधिर होके ना चले। मैं हमेशा से एक रोड सेफ्टी स्क्वाड बनाने से पहले मैं खुद एक वॉलंटियर रहा काफी समय तक। जब भी कभी मैं देखता रोड पर कोई एक्सीडेंट हुआ तो जाने अनजाने मुझे अगर मैं नहीं भी जानता हूं उनको तब भी मैं अपनी गाड़ी से साइड लगाकर देखता, अगर गंभीर है तो इमिडिएटली फोन कर दिया। अगर दिल्ली एनसीआर के अंदर है तो हम लोग के पास एक अपनी टीम है, हम लोगों ने उस पर फोन करके ट्रैफिक के हम लोगों ने अपने ऐसे व्हाट्सएप ग्रुप्स बना रखे हैं नोएडा का फरीदाबाद का गुड़गांव का एनसीआर लेवल का कि जिसमें डीसीपी ट्रैफिक से लेकर हर वो आला अधिकारी जो भी ट्रैफिक से जुड़ा है वो उसके अंदर लोग जुड़े हुए हैं ताकि हम लोग स्पीड में तुरंत कहीं पे भी कोई एक्सीडेंट होता है या कहीं ऐसा जाम लग जाता है जो कि अननेचुरल है
0: जी,
1: तो उसके बारे में भी तुरंत हम लोग बता देते हैं ताकि उसके ऊपर इमीडिएट एक्शन लिया जा सके।
0: क्या बात है। लिसनर्स कहने का आशय यही है कि इसका अगर मैं क्रक्स निकालूं, इसका एक सारांश निकालूं तो उस वक्त आप देख हुए अनदेखा न करेगा, हो सकता है कि बड़ा पछतावा होगा जब आपको पता चले कि उस वक्त जो एक्सीडेंट हुआ था आपने वहां देखा नहीं मदद नहीं की, वो आपका कोई सगा संबंधी था, जिंदगी भर एक पछतावा रह जाता है। लेकिन आप देखिए और तुरंत पुलिस को सूचित करिए, पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय का एक आदेश है कि पुलिस आपको परेशान नहीं करेगी। और दूसरी बात आज मैं देख रहा हूं वर्तमान समय में सरकार प्राथमिक उपचार के लिए खर्च भी कर रही है, जो इस तरीके रोड एक्सीडेंट्स के केसेस तुरंत पहुंचते हैं क्योंकि कोई सगा संबंधी उस वक्त वहां होता नहीं है। अंकुश शरण जी जो कि एक एक्सपर्ट के तौर पर रोड सेफ्टी के ऊपर चर्चा कर रहे हैं इसके बारे में बातें करेंगे जरूर, मगर एक छोटे से अंतराल के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन सुरशादा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। और स्टूडियो में मेरे साथ एक खास मेहमान के तौर पर जुड़े हुए हैं, आप हैं अंकुश शरण जी। बहुत अच्छे एक पत्रकार के तौर पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं, रोड सेफ्टी के साथ जुड़े हुए हैं, हिंदुस्तान टाइम्स से एक नामी गिरामी आपका ये अखबार, उससे आप जुड़े हुए हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: बहुत बहुत शुक्रिया।
0: रोड सेफ्टी के बारे में आपने जिक्र किया था कि लोग मूक बधिर यानी कि चुप हो जाते हैं, आंखों पर पट्टी बांध लेते हैं, कुछ एक्शन नहीं लेते हैं, जिसकी वजह से पछतावा होता है कि काश मैं उस वक्त उस व्यक्ति की मदद कर देता जो कि मेरा सगा संबंधी था। जब ये शब्द आता है तो लोग दिमाग की बत्ती जलती है। मैं ये जानना समझना चाहता हूं कि ये एक्सीडेंट्स होते ही क्यों हैं, क्या एक वजह है कि हम सबको पता है कि ये हमारी एक लिमिट है, उस लिमिट को हम क्रॉस कर जाते हैं। ओवरटेक आप कर रहे होते हैं, हम कर रहे होते हैं, लेकिन हम अपनी लेन से ही क्रॉस कर रहे होते हैं। हम लोगों को देखते हैं कि रैश ड्राइविंग कर रहे होते हैं, इधर उधर से वो गाड़ी को ओवरटेक कर रहे होते हैं, एक्सीडेंट्स के बहुत ज्यादा केसेस हमारे सामने आते हैं। तो आपका अनुभव क्या कहता है?
1: देखिए, सबसे पहली बात तो है नेग्लिजेंस। ये एक ऐसा वर्ड है कि जो एक तो लैक ऑफ डिसिप्लिन एंड नेग्लिजेंस, इसी वजह से सबसे ज्यादा एक्सीडेंट्स होते हैं। हमें जब पता है कि आपके ऑफिस का टाइम 9 बजे है और आपके घर ऑफिस घर से ऑफिस पहुंचने में आपको 1 घंटा लगना है, तो आप 15 मिनट 20 मिनट आधा घंटा पहले आप निकलिए,
0: क्या बात,
1: ताकि आप उस जो पीक आवर्स है उससे बचा जा सके। अब लोग क्या करते हैं कि अक्सर मैंने देखा है कि लोग पहले तो लेट निकले और उसके बाद फिर वो सोचते हैं कि हम स्पीड पे ओवर स्पीडिंग करके, और क्योंकि जैसे फरीदाबाद से अब गुड़गांव जाते हैं तो पहाड़ी का रास्ता है, राइट, उस पे 60 से 80 स्पीड अलग अलग जगहों पे बनाई हुई है, लेकिन लोग अक्सर उस पे बहुत स्पीड में जाते हैं। अब क्या है कि उससे एक तो वो वन अरावली वन क्षेत्र भी है, कई बार उसमें गाय भैंस इस तरीके से बंदर वहाँ पे बहुत होते हैं, अचानक से कोई आ गया और अक्सर हम लोगों ने वहाँ पे एक्सीडेंट होते हुए देखा है। तो हम लोग हमेशा यही कहते हैं कि भाई इन्फोर्समेंट को आप इतना मत उकसाओ कि वहाँ पे स्ट्रिक्टनेस इस लेवल की कर दी जाए कि वो आप ही पे भारी पड़ जाए।
0: जी,
1: प्रशासन के तौर पर, क्योंकि हम लोग प्रशासनिक अधिकारियों के साथ भी
0: जुड़े,
1: उनकी बातों को भी हम लोग लेकर आते हैं, क्योंकि इट्स अब जैसे कहते हैं ना के दो पहलू होते हैं, लाइक सिक्के के दो पहलू होते हैं, उस तरीके से हम लोग ने ब्लेम तो तुरंत कर देते हैं कि भाई इनकी वजह से ये हुआ, लेकिन आप ये देखिए कि अगर हम सब डिसिप्लिन में अगर गाड़ी चलाएं, राइट, हमें ओवरटेक करने के बड़ी गंदी आदत है, और वही गंदी आदत जो है हम पहाड़ी क्षेत्रों में जब जाते हैं तो हम वही चीज करते हैं। तो सेम वे हम लोग की ये रडार पे हम लोग हमेशा देखते हैं लोगों को कि कौन कौन सी गाड़ियां अगर देहरादून के क्षेत्रों में गई हैं, तो हमारे पास वो सारा डेटा आता है कि देखिए सबसे ज्यादा एनसीआर की जो गाड़ियां होती हैं वो जाके इस तरीके से कर देती हैं। तो हमें लगता है कि अभी डिसिप्लिन को मेंटेन रखना बहुत जरूरी है, थोड़ा पेशेंस रखिए और इन्फोर्समेंट खुद पे आप रखिए ताकि आप भी सुरक्षित रहें और सड़क भी सुरक्षित रहे।
0: क्या बात है, माशाल्लाह, बहुत अच्छी बात आपने हमारे लिसनर्स तक पहुंचा दिया। और बस हमेशा जब हम सारांश निकालते हैं, एक निचोड़ निकालते हैं, इस बात का सारांश या यूं कहें कि निचोड़ यही है, यकीन मानिए कि आपकी फैमिली, आपके माँ बाप भाई बहन, आपके छोटे नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे इंतजार कर रहे होते हैं दरवाजे पर। जब एक दस्तक होती है वो खुश हो जाते हैं कि मम्मी मम्मी पापा आ गए, लेकिन जब खबर आती है कि आज उस व्यक्ति का एक्सीडेंट हो गया है और इस वजह से उसकी मृत्यु हो गई है, तो बहुत बहुत बहुत बुरा लगता है। ईश्वर के वास्ते, खुदा के वास्ते, जिनसे भी आप बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और अक्सर से दो लाइनें मैं खुद कहा करता हूं कि ये जो जान है दरअसल आपकी जान नहीं है, इस जान पर आपके माँ बाप भाई बहन सबका हक है, तो उनकी जान की खातिर अपनी जान का ख्याल रखिए, तो निश्चित तौर पर सब अच्छा होगा, बेहतर होगा, सुरक्षित चले, सुरक्षित घर, सुरक्षित ऑफिस पहुंचे, कहीं ना कहीं कोई ना कोई आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार कर रहा है। मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद, सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड, ऑल योर सुरक्षा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना काम यूनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। सामुदायिक रेडियो स्टेशन का फर्ज यही है कि समुदाय में हमारे आसपास क्या खास हो रहा है उन बातों को हम जन जन तक पहुंचाएं। रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय है जिसके बारे में बात करना बहुत जरूरी है, लेकिन जाने अनजाने में लोग ऐसी गलतियां कर जाते हैं जिसकी वजह से जिंदगी भर एक पछतावा रह जाता है कि काश मैंने यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन किया होता तो आज मैं सुरक्षित होता या अंग भंग नहीं होता। ये सारी बातें जिनको ध्यान रखना बहुत जरूरी है। रोड सेफ्टी एक ऐसा विषय है, इस विषय पर बात करने के लिए अंकुर शरण जी हिंदुस्तान टाइम्स से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। तो सर एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू सर।
0: ऑन रोड जब मैं देखता हूं तो मुझे पता है कि राइट हैंड की जो लेन है वो कार के लिए है, ओवरटेक करना है तो राइट हैंड से हम करें
1: जी।
0: लोग गलत दिशा से ओवरटेक कर रहे होते हैं। इसके विपरीत भी सर हमने ये देखा है कि बसें जो लेफ्ट में चलनी चाहिए थे या ट्रक भी लेफ्ट में चलना चाहिए था वो राइट हैंड में जाके चल रहा है। कैमरास लगे हुए हैं। शायद मैंने जो अनुभव किया है कि हम या पुलिस प्रशासन इंतजार करता है कि मेरे पास कोई शिकायत दर्ज नहीं हुई है, कंप्लेन नहीं हुई है, या यूं कहें कि कभी कभी वो स्वतः संज्ञान लेते हैं। चूंकि आप रोड पर काम कर रहे हैं आपका अनुभव वही बात निकलकर सामने आती है कि ये जो आपका एक्सपीरियंस है इस विषय पर आप क्या कहना चाहेंगे, ये सही है गलत है या क्या सुधार की आवश्यकता है?
1: देखिए हम लोगों ने सुना है ना प्रत्यक्ष को प्रमाण देने की जरूरत नहीं होती।
0: सही कर
1: हम लोग जब तक गाड़ी चला रहे हैं अपने गंतव्य स्थान पर पहुंच जाते हैं, कोई टेंशन नहीं है। लेकिन जिस दिन आप सोचिए हजारों लाखों गाड़ियां रोड पे दौड़ रही होती है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई गाड़ी भिड़ती है
0: जी,
1: एक्सीडेंट होता है
0: जी,
1: लोग लड़ाई झगड़ा करने लगते हैं
0: जी,
1: उन सब को अगर हम लोगों ने जब देखा है तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि ओवरटेक अगर ये हुआ है, अगर गलत डायरेक्शन से हुआ है
0: जी,
1: तो पहली तो पेनल्टी उस इंसान के ऊपर आ जाती है कि जिसने ओवरटेक गलत तरीके से किया।
0: यानी कि जब एक्सीडेंट हुआ है तो सारा मतलब
1: ये सारा कुछ, क्योंकि एज पर जो रिकॉर्ड्स देखा जाता है जब प्रत्यक्ष गवाही जब ली जाती है या एफआईआर दर्ज होता है, क्योंकि आप ये देखिए इंश्योरेंस आप लोग क्लेम करते हैं, अगर मैं मान लीजिए कि इंश्योरेंस वाला हूं तो मैं भी तो देखूंगा ना कि भाई हमारी कंपनी अगर आपको इंश्योरेंस दे रही है तो कहीं आप गलत ड्राइव तो नहीं कर रहे हैं, कल आप वो मैल प्रैक्टिस में तो नहीं है कि आपने नशा किया हुआ है तो आप नल एंड वॉइड हो जाता है, गलत डायरेक्शन से आपने ओवरटेक किया तब वो नल एंड वॉइड हो जाता है। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जिसे ध्यान में रखने की जरूरत होती है। लेकिन आजकल क्या है कि हम लोगों ने अपना लाइसेंस बनवा लिया, हमारे हाथ में फोन आ गया, महंगी कारें आ गई, तो सोचा चलो अब तो ये रोड अपनी है, रोड आपकी नहीं है, रोड एक समाज की है, समाज के भी आप अभिन्न हिस्सा हैं। जब हम लोगों ने देखा नितिन गडकरी साहब से जब मुलाकात हुई और एक युवा रोड सम्मेलन एक हुआ था उसके अंदर हमें उनसे मिलने का मौका मिला, तो वहां पे उन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि देखिए हमारी सरकार ने बहुत अच्छी रोड्स तो बना दिए लेकिन इस पे चलने की जिम्मेदारी आप सबकी है,
0: बेशक
1: युवाओं की है
0: बहुत से।
1: अगर आपको बहुत रक्तदान देना है तो सड़क पे मत दें। हमारे साथ बहुत सारी ऐसी संस्थाएं जुड़ी हुई हैं जो कि आपसे रक्त मांग रही हैं, तरीके से दें ताकि किसी का भला हो सके। मेरे एक अजीज मित्र हेलमेट मैन ऑफ इंडिया राघवेंद्र जी,
0: जी जी
1: उनकी भी कहानी ऐसी दिलचस्प है कि जब हम लोग देखते हैं कि बहुत सारे लोग आज दम तोड़ रहे रोड पर, तब उन्होंने किस तरीके से प्रतिबद्धता दिखाते हुए अपने एक जिगरी दोस्त की जब उनकी डेथ हुई ऑन रोड, उसके बाद उन्होंने उसको एक पॉजिटिव तरीके से लेते हुए देखा कि वो जो उनका दोस्त की डेथ हुई वो बिकॉज ऑफ वो हेलमेट उस समय नहीं पहने थे, वो इकलौते बेटे थे अपने माँ बाप के, और इस बात इस हादसे के बाद उन्होंने संकल्प लिया और आज वो हेलमेट मैन ऑफ इंडिया के नाम से पूरे देश में प्रचलित हैं। और हम लोगों ने उनके साथ भी मिलकर रोड सेफ्टी स्क्वाड के साथ मिलकर बहुत सारे ऐसे एक्टिविटीज हम लोग प्लान कर रहे हैं, और अब आपके इस माध्यम से भी हम लोग चाहेंगे कि लोग सुरक्षित रहें। बस
0: क्या बात है, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है लिसनर्स। मैं तो आशा करता हूँ कि बस ये छोटी छोटी बातें इनको नजरअंदाज ना करिए। माशाल्लाह जिंदगी बहुत बहुत बहुत खूबसूरत है। आप घूमना चाहते हैं, आप किसी शादी में शिरकत करना चाहते हैं, जिंदगी को आगे तक लेकर जाना चाहते हैं, अपने सपने को साकार करना चाहते हैं, तो भाई साहब ये तभी संभव होगा जब आप यातायात के नियम कायदे कानून का अच्छी तरीके से पालन करते हुए अपने गंतव्य अर्थात बोले तो डेस्टिनेशन पॉइंट पर पहुंचेंगे सुरक्षित, तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। मिलते एक छोटे से ब्रेक के बाद, बातों का जो सिलसिला लगातार जारी है और एक अच्छे विषय पर हम बात करें और एक अच्छी बात हम बात करेंगे ब्रेक के उस पार, क्योंकि आजकल हम देखते हैं कि लोग रील के चक्कर में उनकी रेल बन जाती है। क्या है ये सवाल, जवाब क्या होगा, जानेंगे जरूर मगर एक छोटे से ब्रेक के बाद। सो डोंट गो एनीवेयर, स्टे ट्यून्ड ऑन 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। रोड सेफ्टी पर आज हम बात कर रहे हैं और इस पर बात करने के लिए मेरे साथ उपस्थित हैं रेडियो में हैं हमारे साथ हमारे अजीज दोस्त। हमारे साथ हैं अंकुर शरण जी जो कि हिंदुस्तान टाइम्स से ताल्लुक रखते हैं और रोड सेफ्टी पर धरातल पर प्रशासन से मिलकर प्रशासनिक अधिकारियों से मिलकर बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो सर इस सराहनीय काम के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत दिली दुआएं शुभकामनाएं आपके लिए।
1: बहुत बहुत शुक्रिया सर।
0: ब्रेक पर जाने से पहले मैंने एक सवाल आपके सामने छोड़ा था कि आजकल हम देखते हैं कि रील के चक्कर में लोगों की रेल बन जाती है, या तो वो एक साजिशन तौर पर ऐसा कर रहे होते हैं या उनको डर नहीं है कि सिर्फ 5,000 का चालान कटेगा या फिर 5,000 का चालान कोई बड़ी बात नहीं है, रील के चक्कर में मेरे पास व्यूज बहुत ज्यादा आएंगे। और कभी कभी ऐसी गलतियां कर जाते हैं कि उनके पास पछतावे के अलावा कुछ नहीं होता, यूं कहें कि अंग भंग या वो खुद नहीं होते दुनिया में। क्या कहना चाहेंगे?
1: देखिए, व्यूज के चक्कर में दुनिया पागल हो रही है। अब अगर आपने रोड को भी आपने सोच लिया कि वहां पे भी हमें व्यूज लेना है, तो कहीं ऐसा ना हो कि आपका इंटरव्यू जो है वो अखबारों में छप जाए। अच्छे काम के लिए आप लोग छपें तो बहुत अच्छी बात होगी। तो युवाओं से एक ही एक अनुरोध है कि रील्स के चक्कर में ज्यादा ना पड़े। अगर आपको रील वाकई में बनाना है तो आप सड़क सुरक्षा के ऊपर बनाइए और बना के रोड सेफ्टी स्क्वाड को टैग कीजिए। हमारी संस्था है रोड सेफ्टी ओमनी फाउंडेशन, राइट, जो कि हरियाणा सरकार के साथ जुड़ी हुई है। बहुत सारा काम हम लोग फरीदाबाद, गुड़गांव, चंडीगढ़ में,
0: और आप कह सकते हैं गगन आप भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। फरीदाबाद से मैं आता हूं।
1: आप तो हैं ही जुड़े।
0: थैंक यू सर।
1: तभी सर हम लोग को कोशिश रहती है कि हम युवाओं को किस तरीके से लीड बाय सेटिंग एग्जांपल्स दें। और अगर आप वाकई में अच्छी रील्स बनाना आपको आता है तो प्लीज क्यों ना आप सड़क सुरक्षा के ऊपर ऐसी रील्स बनाएं ताकि उसको हम अपने ऑफिशियल हैंडल्स पे डालें। हरियाणा पुलिस से लेकर ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं जो आपके चीजों को आगे प्रदर्शित करेगी और प्रॉपर चैनल्स के साथ प्रदर्शित करेगी, तो डेफिनेटली उसमें व्यूज भी मिलेंगे और आपको कहीं ना कहीं हम लोग सर्टिफिकेट्स और अवार्ड्स भी दिलवाएंगे।
0: क्या बात है, व्यूज भी मिलेंगे और आपकी न्यूज भी छपेगी। yes. अच्छी सकारात्मक दिशा में। सर वक्त का इशारा लगभग हो ही चुका है और मैं बहुत अच्छी अच्छी बातें रही। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि दोबारा जब भी आप इस तरफ आए तो जरूर आएगा, क्योंकि भाग दो हम करना चाहेंगे क्योंकि बातें बहुत ज्यादा है, समय मेरे पास कम है। एक छोटी सी वाकया को अक्सर हम लोग देख रहे होते हैं, आप भी हम भी, अननेसेसरी लोग क्या मानसिकता होती है, उनको दिख रहा है कि वो 500 मीटर तक गाड़ियां खड़ी हुई हैं और पीछे से पैं पों यानी कि अनावश्यक तौर पर वो हॉर्न बजा रहे होते हैं। इस मानसिकता से लोग कैसे निकलें, कैसे वो अपने आप को एक सही दिशा में लेकर जाएं, उन लोगों के लिए या यूं कहें कि एक क्रक्स, एक संदेश क्या होगा हमारे लिसनर्स के लिए?
1: देखिए, मेंटल हेल्थ मैटर्स।
0: क्या बात।
1: अगर आप मेंटली अनफिट हैं और अगर आपकी वजह से दूसरे परेशान हो रहे हैं तो निसंदेह लॉ ऑफ कर्मा आपको इस तरीके से वो मेंटल प्रेशर डाल देगा कि या तो आप गाड़ी चलाने लायक नहीं बचेंगे। और हम लोगों ने एक बड़ा सिद्धांत के ऊपर हम लोग काम करते हैं कि अगर आपने वाकई में एक इंसानियत दिखानी है तो आप वहां पे हॉकिंग का प्रयोग कीजिए जहां पे इसकी वाकई में आवश्यकता है। भारत में भी ऐसी बहुत सारी जगह है जहां पे बहुत ही डिसिप्लिन में लोग गाड़ी चलाते हैं और हॉकिंग, स्पेशली अगर आपको देखना है तो जाके आप चंडीगढ़ में जाके चलाइए गाड़ी, आपको समझ में आ जाएगा कि कितने तरीके से लोग वहां पे गाड़ी चलाते हैं।
0: सर ये दूर की बात आपने की है, अगर नियम कायदे कानून देखना है तो जनपद के आसपास देखें, सिर्फ वहीं नियम लगा।
1: आप ये देखिए कि अगर वही वाली बात है ना, स्ट्रिक्टनेस एंड एनफोर्समेंट, जब दिल्ली पुलिस आपके जब तत्पर खड़ी होती है, तत्पर है, तो आप बहुत ज्यादा
0: सीट बेल्ट लगा लेते हैं,
1: बेल्ट खौफ में
0: नजर आएंगे,
1: डिसिप्लिन में रहते हैं। और ये डिसिप्लिन होना चाहिए,
0: होना ही चाहिए।
1: मैं तो ये चाहूंगा कि एनसीआर लेवल पे जहां पे भी अगर आपको पुलिस दिखती है, और पुलिस ही नहीं, आप खुद में कंट्रोल रखिए सारी चीजें, क्योंकि कोई देखे ना देखे ऊपर वाला देख रहा।
0: क्या बात है, क्या बात है, बहुत खूबसूरत, बहुत अच्छी चर्चा रही है सर आपके साथ और बहुत अच्छे आप वक्ता है। मैं तो ये कहूंगा कि आप इधर भी आकर यानी कि ऐसे आरजे के तौर पर आप काम कर सकते हैं, क्योंकि वोकैबुलरी बहुत अच्छी, अच्छा ज्ञान है और अच्छी तरीके से कट टू कट बात आपने हमारे श्रोताओं तक पहुंचाई है। कुछ और कहना चाह रहे हैं
1: गगन जी? एक आपके माध्यम से मैं चाहूंगा जो भी लिसनर्स हैं, आज भारत को बहुत सारे वॉलंटियर्स की जरूरत है। लीडर्स तो हर कोई बनना चाहता है, लेकिन अगर आप सही माने में अगर वॉलंटियर बनते हैं और सड़क सुरक्षा के प्रति अगर आप जागरूक हैं भी और करना चाहते हैं, तो प्लीज आप शादा को सुनिए 90.8 एफएम। और साथ ही में जो लिसनर्स आपको लगता है कि हाँ दे वांटेड टू बी पार्ट ऑफ आवर रोड सेफ्टी स्क्वाड, प्लीज डू कनेक्ट विद अस। हम लोग ट्विटर पे भी मौजूद हैं,
0: सो प्लीज टेल अस सर वो डिटेल्स क्या है, वो आईडी क्या है या कांटेक्ट नंबर क्या है।
1: कि आप ट्विटर पे एक्स पे जाके रोड सेफ्टी स्क्वाड डालिएगा, हमारा पेज उसके अंदर आ जाएगा। साथ ही में जो लिखना चाहते हैं कुछ वो प्लीज लिख के दें, हम लोग ग्लोबल कन्फेडरेशन ऑफ एनजीओस के साथ मिलकर इसको पूरे भारतवर्ष में चीजें बढ़ा रहे हैं, प्रचार प्रसार के साथ माध्यम से आप लोग मीडिया सोशल मीडिया जिस भी तरीके से जुड़ना चाहते हैं प्लीज जुड़िए, ताकि लेट्स बी वोकल फॉर लोकल रोड सेफ्टी।
0: क्या बात है, बहुत बहुत दिल की गहराइयों से सर एक बार पुनः बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि समाज को आपकी आवश्यकता है और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और बस लिसनर्स यही कहूंगा कि समझदारी दिखाइए, अपने आप को बीमार मत प्रदर्शित करेगा ऑन रोड, जिस तरीके से हमारे गेस्ट ने ये बात रखी है कि कहीं ना कहीं मानसिक बीमारी आप दिखा रहे होते हैं, क्योंकि अनावश्यक तौर पर जब आप हॉर्न बजाते हैं और अनावश्यक तरीके से गाड़ी को जब आप ओवरटेक करते हैं, या कुल मिलाकर यही कहूं कि यातायात के नियमों का हमें अच्छी तरीके से पालन करना है, घर में ऑफिस में कहीं ना कोई आपका इंतजार कर रहा है, जिंदगी बहुत खूबसूरत है, जिंदगी आपका इंतजार कर रही है, तो बस खुश रहिए, स्वस्थ रहिए और यातायात के नियमों का पालन करते हुए आप आगे बढ़ते रहिए। और बस सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना ये कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुरु शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ, सोमवार से शनिवार सुबह 9 से 10 लाइव में रहता हूं आपके साथ। और इसके अलावा फीडबैक कमियां खूबियां जरूर बताएगा कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लगा, 01204060205 अर्थात 120 40 60 205, इसके अलावा 90.8fm@sharda.ec.in पर भी आप हमें मेल के जरिए मेल जोल बढ़ा सकते हैं। वक्त का इशारा, मैं होता हूं 9 से 11, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। नमस्कार।

0: कुछ नहीं।
1: Before investments are subject to market risk. Read all skin related documents carefully.
2: Hi, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म टेलीविजन ओटीटी प्रोडक्शन एनिमेशन वीएफएक्स गेमिंग डिजाइन पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग
1: और हाँ एक खास बात SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन आरजिंग एडिटिंग प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है तो फिर कहीं देर ना हो जाए कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in शारदा यूनिवर्सिटी नॉलेज पार्क ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा 90.8
1: एफएम। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ आप यही के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

राम राम दोस्त राम सत श्री अकाल आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही कम्युनिटी रेडियो स्टेशन शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। जनाब मंडे टू सैटरडे सुबह 9-10 लाइव में रहता हूँ आपके साथ और हमेशा ईश्वर से खुदा से पिता परमेश्वर से यही दुआ यही प्रार्थना करता हूँ कि आपका दिन शुभमय गुजरे मंगलमय गुजरे कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो। फिलहाल स्टूडियो की घड़ी में 9:14 हो चुके हैं। 21 तारीख है, मंगलवार का दिन है। बजरंगबली से यही प्रार्थना कि सबका मंगल ही मंगल हो, कभी किसी का मंगल ना हो। लेकिन वर्तमान समय में सच बात हुई कि बारिश शुरू हो चुकी है और बारिश के मौसम में हम चाहते हैं कि हमारा मंगल हो अमंगल ना हो, इसके लिए कई सारी सावधानियों को ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। यूपी में अगर मैं बात करूं तो यूपी में मानसून एक बार फिर से रफ्तार पकड़ लिए और भारत मौसम विज्ञान विभाग यानी कि IMD ने प्रदेश के कई जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी कर दिया गया है और अगले 24 घंटों के दौरान बहुत ज्यादा बारिश होने की चेतावनी दी गई है। और बंगाल की खाड़ी से आने वाला जो मजबूत मानसूनी हवाओं और उत्तर भारत में सक्रिय मानसूनी प्रणाली की एक वजह से उसके कारण पूरे प्रदेश में बारिश का जो दायरा है वो तेजी से बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और कई जिलों में जलभराव की समस्याएं, बिजली गिरने और निचले इलाकों में बाढ़ जैसी स्थिति बनने की भी संभावना रहेगी। तो ऐसे समय में बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। रेड अलर्ट कहां कहां घोषित किया गया, जैसे कि बलरामपुर है, श्रावस्ती है, बहराइच है, लखीमपुर खीरी, कासगंज, एटा, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, शाहजहांपुर, संभल और बदायूं में बहुत ज्यादा बारिश होने की संभावना है। तो अगर आपका कोई वहां रहता है तो आप उनको अलर्ट कर सकते हैं, उनकी खैरियत आप जान सकते हैं। कुल मिलाकर गरज चमक के साथ बारिश हो रही है दिल्ली NCR में और मौसम अच्छा हो चुका है। तापमान में थोड़ी सी गिरावट दर्ज की गई है। अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, आते जाते वक्त कहीं कोई दिक्कत परेशानी न हो इस बात का भी ख्याल रखिएगा और जहां बिजली गिरती है चमकती है वहां मत खड़े होइएगा, उस ऐसे स्थान पर जाएगा जहां बिजली ना गिरे। जब आप ऑन रोड चल रहे हैं तो गड्ढों का भी ध्यान रखिएगा, पोल के अगर आसपास खड़े हैं तो वहां मत खड़े होइएगा क्योंकि करंट कभी भी आ सकता है। हाँ, जान मान की ख्याल रखिएगा, आपकी जान बेशकीमती है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ सिर्फ सुरु शारदा 90.8 FM पर। ब्यूटीफुल ट्रैक केसरिया, ब्रह्मास्त्र फिल्म का गाना, अरिजीत सिंह की आवाज। गुड मॉर्निंग, मैं हूं गगन।

0: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
1: सबको हाथ बटाना है, टीबी को मिटाना है। हेलो दोस्तों, मैं हूं दीपाली, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM। हम लोग स्मार्ट के सहयोग से एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं, टीबी हारेगा देश जीतेगा। स्मार्ट अपनी मुहिम में सुनिश्चित करने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है कि प्रत्येक टीबी रोगी का उपचार हो। अगर आपको टीबी है तो बिल्कुल घबराएं नहीं, बस अपने नजदीकी अस्पताल जाएं और छाती का एक्सरे और बलगम की जांच कराएं और स्मार्ट की इस मुहिम में हमारा साथ दें।
2: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

0: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
1: नमस्ते आशा दीदी,
0: सब ठीक बा? साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
1: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखी नी, ओके रा के तुरंत साफ करी नी। जैसे के पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे, सब के साफ सफाई करी ले हम।
2: और आस पास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा

0: बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़ जा मच्छर बन पर भारी।
1: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
2: The world is here.
1: वेलकम बैक, एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। 9:25 हो चुके हैं, 21 तारीख है और प्रोग्राम का नाम है बिंदास सुबह, बिंदास बोल, बिंदास बातें। हमारे आसपास क्या खास है उसके बारे में जान लेना, समझ लेना बहुत बहुत बहुत जरूरी है। अगर आज की मैं बात करूं तो दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एक एडवाइजरी जारी की गई है, उसके बारे में जान लेना भी बहुत जरूरी है। यानी कि एक रैली निकाली जा रही है तो उस बात को ध्यान में रखते हुए कई राज्यों, मतलब जो लोग आ जा रहे हैं और कौन कौन से जो रोड्स हैं वहां से बचने की बहुत जरूरत है, जैसे कि सत्याग्रह मार्ग, वेलोड्रोम रोड, राजघाट, डीटीसी डिपो रोड और इसके आसपास के जो सटे हुए जो क्षेत्र हैं, जो इलाका है, संसद मार्ग और सेंट्रल दिल्ली यानी कि जंतर मंतर के मुख्य चौराहे। और सलाह ये दी जा रही है कि एयरपोर्ट या रेलवे स्टेशन अगर आप आ जा रहे हैं तो समय से थोड़ा पहले निकलेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। वैकल्पिक मार्ग का भी मैं जिक्र करना चाहूँगा, यानी कि मध्य और नई दिल्ली की तरफ जाने वाले जो रास्ते हैं, वैकल्पिक सड़कों और मुख्य रूप से दिल्ली मेट्रो का आप इस्तेमाल कर सकते हैं क्योंकि मेट्रो बहुत सेफ है वर्तमान समय में, क्योंकि बारिश जब होती है तो ऑन रोड ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो जाता है। तो जब भी आप ऑन रोड आ जा रहे हैं तो बहुत सोच कर, समझ कर, संभल कर आप आगे बढ़ेगा ताकि आप अपने गंतव्य स्थान पर यथा समय पहुंच पाए, कहीं कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और यही वजह कि दिक्कत परेशानी ना हो, मैं हूं ना आपके साथ सुबह 9 से 10 लाइव आपके चेहरे पर मुस्कुराहट जो लाता हूं। फिलहाल मुस्कुराने की वजह तुम हो, सच बात है मुस्कुराने की वजह आप हैं और जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर भी रौनक आ जाती है और आपके चेहरे पर तब रौनक आ जाती है जब आपका कोई साथी हम सफर मुस्कुराता है। सिटी लाइट फिल्म का ब्यूटीफुल ट्रैक अरिजीत सिंह की आवाज में, गुड मॉर्निंग सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ।

0: मेरा नाम
1: गोलू है, मुन्नी का बड़ा भाई। एक दिन स्कूल से आया तो देखा मुन्नी रो रही थी, सोचा प्यास लगी होगी। मैं भाग की दादी के पास गया, बोला मुन्नी को पानी पिला दो ना। दादी ने एकदम मना कर दिया, बोली 6 महीने तक मुन्नी सिर्फ मम्मी का दूध पिएगी और कुछ खिलाया पिलाया तो 10 हो सकते हैं। अगली बार मुन्नी रोई ना, मैंने उसके कान पे जाके कह दिया 6 महीने तक सिर्फ मम्मी का दूध पीना है।
2: स्तनपान विकल्प नहीं संकल्प है। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
3: स्मार्ट के सहयोग से अभी आप सुन रहे थे ये खास जानकारी। स्वास्थ्य बाण कार्यक्रम के अंतर्गत ऐसी ही अधिक जानकारी के लिए सुनते रहिए।
4: हाय, मैं हूं रणविजय, आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।

0: हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हेलो कौन? अरे हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे, हम बोल रहे।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.
2: वेलकम बैक। एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत। आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ। 9:37 हो चुके हैं। 21 तारीख है यानी कि मंगलवार का दिन। ईश्वर से, खुदा से, पिता परमेश्वर से यही दुआ, यही प्रार्थना करता हूँ कि सबका दिन मंगलमय गुजरे, कहीं को दिक्कत परेशानी ना हो। इसलिए ऑन रोड बहुत सोचकर समझकर संभलकर आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि वर्तमान समय में जब बारिश होती है तो हिंदुस्तान की खूबसूरती कहें, लापरवाही कहें या क्या कहें, हम सबकी तक जिम्मेदारी बनती है कि हम अपने जो नाले हैं उसमें कूड़ा करकट न डालें। दूसरी जिम्मेदारी बनती है शासन प्रशासन की कि वक्त रहते हो उसकी साफ सफाई हो जाए। ऑन रोड हम ये देखते हैं कि जो होल हैं, जो सीवर के ढक्कन हैं, वो खुले रहते हैं। उनकी भी जिम्मेदारी प्रशासन की है कि वक्त रहते हो उनको ढका जाए, क्योंकि बारिश जब होती है तो वो होल हमें नजर नहीं आते, दिक्कतें परेशानियां बहुत ज्यादा हमारे सामने आ जाती हैं। तो बरसात के मौसम में कुल मिलाकर आप अपनी सेहत का ख्याल रखिएगा, इस मौसम का जो लुत्फ उठाएगा और खाने पीने का ध्यान रखिएगा, क्योंकि जब मौसम बदलता है तो आपकी सेहत भी बदलती है। किसी को सर्दी खांसी आछी आछी, मतलब सर्दी खांसी जुकाम की शिकायतें हो रही हैं, किसी के गला खराब हो रहा है, किसी के गले में खराश हो रही है, तो इस तरीके से आप अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। और क्या है खास? खास बात यह कि जब आप ऑन रोड आ जा रहे हैं तो टोल आपको देना पड़ता है ना। टोल से कैसे बचा जाए? अजय ये तो बड़ी अच्छी खबर है, बचाना बचाना। हाँ, लेकिन कुछ खास है, यानी कि टर्म्स एंड कंडीशंस अप्लाई, इसके बारे में बातें करेंगे जरूर। यानी कि पास की कुछ ऐसी बातें होंगी और एरिया की बातें होंगी, क्योंकि अगर आप उस क्षेत्र में आते हैं, हाँ इसके बारे में विस्तार से डिटेल में जानेंगे जरूर। तो आप कहीं जाएगा मत, सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM विद मी मेरे यानी गगन के साथ।

0: मेरी फिल्मों में आपने देखा ही होगा कि अगर विलन को पीटते हुए आधे में छोड़ दिया जाए तो बाद में विलन बदला लेने जरूर आता है और हीरो के लिए बहुत सारी दिक्कतें खड़ी कर देता है। ठीक ऐसे ही अगर हम टीबी का इलाज अधूरा छोड़ दें तो आगे जाके ड्रग रेजिस्टेंट टीबी भी हो सकता है, जिसका उपचार लंबा और कठिन भी है। इसीलिए पूरा कोर्स ही है पक्का इलाज। और सुनिए, टीबी का आधुनिक और संपूर्ण उपचार सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त है, फ्री। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
1: हाय, मैं हूँ विदिता बाघ और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

कहते हैं कि कोशिश करने वालों की हार हुआ नहीं करती, लहरों से डरकर नौका कभी पार हुआ नहीं करती। कहते ये भी है कि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। 9:44 हो चुके हैं, 21 तारीख है। गुड मॉर्निंग, सुप्रभात, मैं हूं गगन आपके साथ। ये बात या ये कहें कि एक सकारात्मक संदेश मैंने आप तक क्यों पहुंचाया, ये कोट मैंने क्यों किया, एक नीट की परीक्षार्थी, नीट की तैयारी की, नीट का एग्जाम पास किया और वो खुद कह रही है। अगर कोई ऐसा कहता है तो मुझे लगता है कि एक मोटिवेशन, एक किसी को प्रेरणा वो दे रही है कि सोशल मीडिया से मैंने दूरी बना के रखी, टीवी मोबाइल से दूरी मैंने बनाकर रखी, जितनी आवश्यकता थी उतना ही मैंने उसको यूज किया। तो मुझे लगता है कि नियम खाद कानून के साथ जब आप आगे बढ़ेंगे तो कहीं कोई दिक्कत परेशानी होगी नहीं। और इस तरीके से उन्होंने ऑल इंडिया रैंक 20 हासिल करने वाली वो जो हैदराबाद की वैष्णवी दास, आज लाखों छात्रों के लिए किसी प्रेरणा से कम नहीं है। तो एक सक्सेस स्टोरी मैंने आपके सामने रखी कि इस तरीके से अगर आप छोटे छोटे कदमों से आगे बढ़ेंगे तो कोई दिक्कत परेशानी आपके सामने होगी नहीं। चलिए, ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको इशारा किया था कि हाईवे पर अगर आप आ जा रहे हैं, लोकल पास आपको चाहिए, तो अब बहुत आसानी से फोन से बन सकेगा लोकल टोल पास। और राजमार्ग यात्रा एक ऐप है, इससे आपको आसानी से स्टेप बाय स्टेप जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप टोल का जो पास है वो आप हासिल कर सकते हैं। यानी कि 20 किलोमीटर दायरे में अगर आप रहते हैं तो राजमार्ग यात्रा ऐप से आप लोकल टोल पास बनवा सकते हैं। और इससे पहले इसके लिए टोल प्लाजा पर लाइनों से आपको जो लगना पड़ता था उससे आपको लाइन में नहीं लगना पड़ेगा और आपको कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट भी जमा नहीं करना पड़ेगा। डिजी लॉकर और वाहन जैसे सरकारी डिजिटल प्लेटफॉर्म और GIS की मदद से सब कुछ खुद ही वेरीफाई कर देगा। तो इस तरीके से आप ये लोकल पास हासिल कर सकते हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। इंस्टीट्यूट ऑफ सुरशाता 90.8 FM विद मी, मेरे यानी गगन के साथ। हाँ, कोई नहीं ऐसा, मतलब सुनो शायद 90.8 FM प्लस गगन बहादुर जैसा।

0: बैड न्यूज।
1: अजी ये क्या है?
0: नहीं नहीं फिल्म का गाना। तौबा तौबा।
1: हाँ हम उन लोगों से तौबा करना चाहते हैं। हाय तौबा मत करिए और ऐसे लोगों के पीछे पागल मत होइए जो मतलब आपको क्या बोलते हैं
0: हार्म।
1: हाँ नुकसान।
0: नहीं नहीं वो मुस्कान की वजह से नुकसान।
1: अच्छा मतलब जो नुकसान पहुंचा रहे हैं।
0: हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपनी सेहत का ख्याल रखिए, क्योंकि सेहतमंद अगर आप हैं तो यकीन मानिए कि दुनिया के सबसे बड़े दौलतमंद आदमी आप हैं। और जब सेहत नहीं तो कुछ नहीं, इसलिए अपनी सेहत से प्यार करिए, नेचर से प्यार करिए, अपनी फैमिली से प्यार करिए। और जीवन साथी या जीवन संगनी की जब बात आती है तो वर्तमान समय में कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से लोग डर जाते हैं, घबरा जाते हैं, लेकिन अच्छी सक्सेस स्टोरी भी हमारे सामने है। तो बस अपनी कहते ना वो फैमिली है उसका ख्याल रखिए। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन जाते जाते कुछ और खास बात है वो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। खास बात निकल कर ये सामने आ रही है कि दिल्ली का जो सफ़र है वो 16 किलोमीटर कम होता हुआ नजर आएगा, यानी कि एलजी चौक से नोएडा एक्सप्रेसवे तक हिंडन नदी पर अब बनने जा रहा है 6 लेन का नया लिंक रोड और पुल अगले महीने से चालू हो जाएगा। और इससे होगा क्या कि परीचौक और सूरजपुर क्षेत्र के जो लोग हैं उनको उनका जो सफर है 5 मिनट का रह जाएगा। और नोएडा और ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर ट्रैफिक कम करने के लिए नदी के जो किनारे हैं वहां पर 29 किलोमीटर लंबे 4 लेन एक्सप्रेसवे की कार्य योजना पर उत्तर प्रदेश सिंचाई विभाग और प्राधिकरण मिलकर काम कर रहे हैं। जाहिर सी बात है कि उत्तर प्रदेश हमारा बदल रहा है, उत्तम प्रदेश हो रहा है, नोएडा ग्रेटर नोएडा, क्योंकि हम यहाँ हैं तो हम देख रहे हैं कि डबल डेकर बस चल रही है, जो कि अक्सर हम फिल्मों में देखा करते थे वो हमें यहाँ देखने को मिल रही है, यानी कि हमारे जो सपने हैं वो साकार होते हुए नजर आ रहे हैं, चाहे वो जेवर एयरपोर्ट की बात हो या कुछ और। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, सो डोंट गो एनीवेयर। एल्टीट्यूड ऑल यू सुर शारदा 90.8 एफएम विद मी मेरे यानी गगन के साथ, गल मीठी मीठी बोल फ्रॉम द मूवी आयशा तुची रैना की आवाज़, सिर्फ सुनो शारदा 90.8 एफएम। Bye.

इस ब्यूटीफुल ट्रैक के साथ मैं ले रहा हूँ अनुमति, फिर होगी आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कीप लिसनिंग टू शारदा 90.8 एफएम। ना टेंशन लेने की जरूरत, ना किसी को टेंशन देने की जरूरत। जिंदगी बहुत खूबसूरत है जनाबे आली, से प्यार के साथ, मोहब्बत के साथ, खुशियों के साथ गुजारती चले जाइए और सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना वही सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुरू शारदा 90.8 एफएम। सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक यहां से हम ऑन एयर होते हैं सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। कल होगी फिर आपसे मुलाकात। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड नमस्कार।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया, फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशाद 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आर्जिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: हाय नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

ट्यूबरक्लोसिस या टीबी किसी को भी हो सकता है। मैं भी इसका शिकार हुई थी, पर मैं इससे बच निकली। मैं ऐसा इसलिए कर सकी क्योंकि मैंने अपना इलाज अधूरा नहीं छोड़ा। टीबी से लड़ने के लिए इसका पूरा इलाज करना जरूरी है। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो ये बीमारी बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा सकती है। हो सकता है आप ड्रग रेजिस्टेंट भी बन जाए, जो एक अधिक खतरनाक प्रकार की टीबी है और इसका इलाज भी बहुत मुश्किल है। एक टीबी विजेता होने के नाते मुझे पता है कि ये आसान नहीं है। इसका इलाज लंबा चलता है और इसके साइड इफेक्ट्स भी बहुत ज्यादा होते हैं। जब मैं ड्रग रेजिस्टेंट टीबी से जूझ रही थी, तब मुझे इसके इलाज से जुड़ी कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पहली चुनौती है इसके इलाज से जुड़ी दवाइयों की संख्या। कभी कभी तो 16 दवाइयां लेनी पड़ती थी और कब कौन सी दवाई लेना ये याद रखना बहुत मुश्किल था। दूसरी चुनौती है इसके साइड इफेक्ट्स। उल्टी होना, सिर चकराना, दर्द, कमजोरी और मानसिक स्थिति बिगड़ने जैसे साइड इफेक्ट से उबरना मुश्किल होता है। इसलिए कई लोग इलाज बीच में ही छोड़ देना चाहते हैं। मैं भी यही करना चाहती थी। तो इन चुनौतियों से लड़ने के लिए हम क्या कर सकते हैं? अगर आप सरकार के RNDCP के द्वारा इलाज करा रहे हैं, तो उसमें एक ऐसा सिस्टम है जो आपके इलाज के ऊपर निगरानी रखता है और ये सुनिश्चित करता है कि आप आपका इलाज पूरा कराएं। ये काफी आसान है, इसको 99 डॉट्स कहते हैं। टीबी की दवाएं एक लिफाफे में होती है, जिसमें आपको अलग अलग निर्देश, आकार और नंबर दिखाई देंगे। यहाँ के सलाहकार पहले डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन देखते हैं और मरीजों से पूछते हैं कि डॉक्टर ने उनको कितनी गोलियां लेने को कहा है। चलिए हम आज की दवाई लेते हैं। मुझे आज 3 गोलियां खानी है। गोली नंबर 1 से शुरू करके गोली नंबर 3 तक खानी है। याद रखिए, लिफाफे में जैसा दिखाया है आपको उसी संख्या क्रम में गोलियां लेनी है। अगर आप क्रम के हिसाब से 3 गोलियां ले चुके हैं, तो इन गोलियों के खुले फ्लैप के अंदर देखें। आपको इन फ्लैप्स के अंदर छिपे नंबर दिखाई देंगे। अगर आप 3 गोलियां लेते हैं तो आप 1 या 2 नंबर बता सकते हैं। अब रजिस्ट्रेशन के वक्त आपने जो मोबाइल नंबर दिया है, उस मोबाइल से इनमें से किसी एक नंबर पर आपको कॉल करना है। ऐसा करने की क्या जरूरत है? जब आप ये कॉल करेंगे तो आपके सुपरवाइजर को ये पता चलेगा कि आपने उस दिन की गोलियां ले ली है।

अस्पताल कर्मचारी को ये पता होना जरूरी है कि आप नियमित रूप से दवाई ले रहे हैं। अगर आप नहीं चाहते कि वो बार बार आपके घर आए, तो आपको उनको कॉल करके ये बताना होगा कि आपने दवाई ले ली है। इसके लिए आपको रोजाना इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करना होगा। याद रखें, ये एक टोल फ्री नंबर है। आपके मोबाइल पे बैलेंस ना होने पर भी आप इसके ऊपर कॉल कर सकते हैं। अगर बैलेंस हो भी तो भी इससे कोई पैसे नहीं कटेंगे। ये भी याद रखें कि आपको इनमें से दिखाए गए किसी एक नंबर पे ही कॉल करना है, सभी नंबर पे कॉल करने की जरूरत नहीं है। आपको इन नंबरों के पहले कोई अतिरिक्त संख्या जोड़ना भी जरूरी नहीं। जब आप नंबर मिलाएंगे तो दूसरी तरफ से धन्यवाद सुनने मिलेगा। अगर आपको कोई साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उन्हें कहीं लिखिए और अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात कीजिए। ये याद रखना जरूरी है कि आपको बिना किसी चूक अपना इलाज समय पर लेना है। मैं जानती हूँ कि ये आसान नहीं है, लेकिन टीबी को हराने के लिए कोई दूसरा तरीका भी नहीं है। इलाज पूरा करने के लिए 99 डॉट्स का उपयोग करें। टीबी से लड़ने के लिए इसे एक साधन समझें। आइए हम सब मिलकर टीबी को हराएं।

0: भाई,
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: 45 मिनट योग करने से बीमारियां दूर रहती हैं और आप स्वस्थ रहते हैं। योग एक ऐसा विज्ञान है जो शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य के साथ साथ आध्यात्मिक विकास के लिए बहुत उपयोगी है।
1: आओ करें सब योग।
2: आयुष मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: मगर छोड़े जान।
1: अगर आपने डॉट्स का कोर्स बीच में छोड़ दिया है तो शीघ्र जांच कराएं। कहीं आपको बिगड़ी हुई टीवी यानी MDR टीवी ना हो चुकी हो। इसका इलाज 24 से 27 महीने तक चलता है। ऐसी स्थिति में इलाज पूरा कराएं। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन का एक अभियान।
2: नमस्कार, मैं हूं अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।
3: तुम कर क्या रही हो तारा?
4: तारा लड़ रही है अब्बा मच्छरों से फैलने वाली बीमारियों से।
3: ओह,

0: मच्छरों पे कैसे करना है बात, ये बताएंगे अगली बार।
1: तुम सब भी हो जाओ तारा की तरह तैयार।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। भाई जो कहते हैं सच कहते हैं कि जान है तो जहान है, सारी मुश्किलें आसान है, इसलिए हर एक मुश्किल को आसान बनाने के लिए हम आपके साथ जुड़ जाते हैं अच्छी अच्छी हेल्थ की बातें आप तक पहुंचा रहे होते हैं। कोरोना का समय हम सबने देखा और जहां ऑक्सीजन की कमी की वजह से मारा मारी थी, अगर ये ऑक्सीजन हमें क्षण भर न मिले तो सच बात तो ये है कि जीवन समाप्त हो जाएगा। इस ऑक्सीजन का किस तरीके से हम ख्याल रख सकते हैं, किस तरीके से नेचर का ख्याल रख सकते हैं, कुछ ऐसी ही बातें, यानी कि शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर अगर आप 5 फल और सब्जियां खाएंगे तो शरीर को भरपूर रूप से मिलेगी आपको एनर्जी। जी हाँ, शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर कई तरह की परेशानियां हो सकती हैं, इसलिए ऑक्सीजन का स्तर बनाए रखना बहुत जरूरी है। आइए जानते हैं कि शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कैसे कंट्रोल रखें। लेकिन इससे हटकर एक बात कहना चाहूंगा कि अगर आप पौधे लगाएंगे, किसी पौधे को सींचेंगे तो निश्चित तौर पर वो एक बड़ा वटवृक्ष का रूप धारण कर लेगा जो कि आगे चलकर आपको ऑक्सीजन देगा ही देगा। इसलिए पर्यावरण का ख्याल रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं तो बात सामने आती है ऑक्सीजन लेवल बढ़ाने वाले कुछ फूड्स के बारे में जानते हैं। शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जिस तरह पानी की जरूरत होती है उसी तरह ऑक्सीजन भी बहुत जरूरी है। ये कोशिकाओं को बनाने के साथ साथ उनके बेहतर कार्यों में मददगार होती है। ऑक्सीजन हवा के जरिए शरीर को प्राप्त होता है। हम में से कुछ ऐसे लोग हैं जिनके शरीर में ऑक्सीजन लेवल काफी कम होता है। ऐसे में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आपको कुछ प्रयास की जरूरत है। शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को कंट्रोल करने के लिए आप कुछ खाद्य पदार्थों की मदद ले सकते हैं। आइए जानते हैं ऐसे कुछ खाद्य पदार्थों के बारे में। पालक से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे जानते हैं। पालक स्वास्थ्य के लिए काफी हेल्दी होता है। ये न सिर्फ शरीर में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने में आपकी मदद कर सकता है बल्कि इससे आप शरीर में आयरन की कमी को भी दूर कर सकते हैं। जी हाँ, आयरन की मदद से शरीर में ऑक्सीजन का प्रभाव बेहतर होता है जिससे आपके शरीर में ऑक्सीजन की कमी दूर होती है। इसके साथ ही ये आपके शरीर की मांसपेशियों की मजबूती को भी बढ़ावा देता है। अब बात करते हैं शकरगंध से करें ऑक्सीजन की कमी दूर, कैसे। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर आप शकरगंध का सेवन कर सकते हैं। शकरगंध एंटीऑक्सीडेंट्स का काफी अच्छा स्रोत है। इसकी मदद से आप शरीर के अंगों को सुरक्षित रख सकते हैं। इसके अलावा ये मैग्नीशियम और पोटेशियम का भी अच्छा स्रोत होता है जो शरीर में ऑक्सीजन की कमी से होने वाले नुकसान को कम कर सकता है। बात ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाए एवोकाडो, यानी शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने में एवोकाडो भी काफी हेल्दी माना जाता है। इससे ब्रेन में ऑक्सीजन का प्रवाह सही तरीके से होता है जिससे शरीर में ऑक्सीजन के स्तर में सुधार ला सकते हैं। बात नींबू की, नींबू है असरदार। नींबू अगर आप शिकंजी में मिलाकर पीते हैं तो जाहिर सी बात है नींबू यूं कहें कि शिकंजी के बगैर अधूरी है। नींबू अगर आप सलाद में डालते हैं तो सलाद स्वादिष्ट हो जाता है। नींबू पानी पीते हैं तो वो आपकी सेहत के लिए बड़ा ही लाभदायक है। शरीर में ऑक्सीजन की कमी होने पर नींबू के रस का सेवन करें। नींबू के रस में मौजूद गुड़ शरीर में ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल करने में असरदार होता है। इसके साथ ही इसमें मौजूद पोटेशियम आपके माइंड को अलर्ट रखने में असरदार होता है। बात तरबूज की, जी हाँ, तरबूज गर्मी के सीजन में हर रोज अगर आप खाते हैं तो निश्चित तौर पर आपको इसका फायदा मिलेगा और गर्मी के मौसम में बहुत तादाद में देखा जाता है तरबूज। जी हाँ, तरबूज से ऑक्सीजन की कमी से राहत मिलती है, कैसे जानते हैं। शरीर में ऑक्सीजन का स्तर बढ़ाने के लिए आप तरबूज का सेवन कर सकते हैं। दरअसल तरबूज में अल्कालाइन की अधिकता होती है जो आपके शरीर के पीएच लेवल को बनाए रखने में मददगार साबित हो सकते हैं। इसके अलावा तरबूज में बीटा कैरोटीन और लाइकोपिन मौजूद होता है जो शरीर में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने में असरदार है। तो कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि अपना ख्याल रखें, अपनी फैमिली का ख्याल रखें और हाँ, नेचर का ख्याल रखें। नेचर का ख्याल रखेंगे तो भरपूर मात्रा में आपको ऑक्सीजन मिलती रहेगी। ऐसी खास जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM मेरे यानी गगन के साथ। फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं।
2: अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in.
3: The world is here.

0: भाई?
1: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में।
2: सुनो शारदा 90.8 FM सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम।
3: भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक
4: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर।
2: तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

जिसे देखो दिल की धुनी रमाता। अरे ये मंदिर नहीं है, शिवाला नहीं है, हसीनों से कह दो कहीं और जाएं, मेरा दिल है दिल, धर्मशाला नहीं है।

फूल खिलते हैं, बहारों का समा होता है, ऐसे मौसम में ही तो प्यार जवां होता है। दिल की बातों को होंठों से नहीं कहते, ये फसाना तो निगाहों से बयां होता है।

हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम दो असलाम सत श्री अकाल आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए। निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें। विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं। इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें। अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक।
1: समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: चारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट इज अ टेम्पल ऑफ क्रिएटिविटी। यदि आप मीडिया में करियर बनाना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट। ये कोर्स ऑफर करता है बैचलर्स एंड मास्टर्स डिग्री इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, स्पेशली डिजाइन फॉर फिल्म, टेलीविजन, ओटीटी प्रोडक्शन, एनिमेशन, वीएफएक्स, गेमिंग डिजाइन, पब्लिक रिलेशन एंड एडवर्टाइजिंग।
1: और हाँ, एक खास बात, SSMFE का अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM, ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन। आरजिंग, एडिटिंग, प्रोडक्शन और स्क्रिप्ट राइटिंग सिखाने के साथ इंटर्नशिप का भी गोल्डन चांस देता है। तो फिर कहीं देर ना हो जाए, कॉल करिए 01204060210 पर और विजिट करिए www.sharda.ac.in। शारदा यूनिवर्सिटी, नॉलेज पार्क, ग्रेटर नोएडा, उत्तर प्रदेश।
2: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

किसान मित्रों नमस्कार, आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर, लेकर हाजिर हूं आपका मन पसंद कार्यक्रम खेत खलियान। जी हां किसान मित्रों, इस कार्यक्रम के माध्यम से हम आपको खेती किसानी की नई नई जानकारी पहुंचाते हैं और साथ ही साथ सरकार की जो कल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं, ताकि आप इन योजनाओं का लाभ उठा सकें और अपनी आमदनी बढ़ा सके। और किसान मित्रों, आज के खेत खलियान कार्यक्रम में सबसे पहले बात करते हैं मधुमक्खी पालन योजना की। किसान मित्रों, आपकी आय को बढ़ाने के लिए सरकार की ओर से खेती के साथ साथ ही पशुपालन, मछली पालन और मधुमक्खी पालन के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। किसान भाई खेती के साथ साथ ये काम आसानी से कर सकते हैं और इसी क्रम में सरकार की ओर से किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए अनुदान भी दिया जा रहा है। इसके साथ ही किसान भाइयों को मधुमक्खी पालन का प्रशिक्षण भी दिया जाता है। किसान भाई खेती के साथ साथ मधुमक्खी पालन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। सरकार की ओर से मधुमक्खी पालन को मीठी क्रांति के तहत प्रोत्साहन दिया जा रहा है। किसान मित्रों, सरकार द्वारा शुरू की गई प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के अंतर्गत मधुमक्खी पालन की ट्रेनिंग लेने के बाद आप अपना स्वरोजगार खोल सकते हैं। ट्रेनिंग पूरी करने के बाद आपको एक प्रमाण पत्र भी दिया जाता है, जिसका प्रयोग आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के तहत आवेदन करने के लिए कर सकते हैं। अगर आप पहले से ही मधुमक्खी पालन स्वरोजगार से जुड़े हुए हैं तो ये लोन आपके लिए काफी लाभदायक होगा। आप मधुमक्खी पालन ऋण योजना के जरिए अपने व्यवसाय को और अधिक बढ़ा सकते हैं और इसे उच्च स्तर तक ले जा सकते हैं। यदि बात की जाए कि मधुमक्खी पालन की शुरुआत कैसे की जाए और कितना खर्चा इसमें आएगा शुरुआती दौर में, तो आपको बता दें कि यदि आप शुरू में 10 पेटी के साथ मधुमक्खी पालन शुरू करते हैं तो इसमें करीब 35,000 से 40,000 रुपए तक का खर्चा आ सकता है, लेकिन जैसे जैसे मधुमक्खियों की संख्या बढ़ने लगेगी आपको मुनाफा अधिक होना शुरू हो जाएगा। आगे आपको सिर्फ मधुमक्खियों के लिए पेटियों की संख्या बढ़ानी होगी। इस तरह आप शुरुआती कुछ पैसा खर्च करके मधुमक्खी पालन करके अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं। तो अगर आप मधुमक्खी पालन करना चाहते हैं तो इसके लिए आप कृषि विज्ञान केंद्र में जाकर के संपर्क कर सकते हैं और इस व्यवसाय की शुरुआत कर सकते हैं। तो किसान मित्रों, ये तो आपने जाना मधुमक्खी पालन योजना के बारे में। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं केशव कुमार और ज्योति। खिस्सा रहेगा रामायण का।

0: किसान मित्रों, अभी आप केशव कुमार और ज्योति से ये रागनी सुन रहे थे, किस्सा था रामायण का। किसान मित्रों, आज के समय में फसल की बेहतर पैदावार पाने के लिए कृषि यंत्रों और मशीनों का जमकर उपयोग हो रहा है। अब तो खेत की जुताई से लेकर फसल की कटाई तक का काम कृषि यंत्रों से ही किया जा रहा है। रोटावेटर, हैप्पी सीडर, जीरो टिलेज, रोटो सीड ड्रिल, स्ट्रा रीपर, निराई गुड़ाई के स्वचालित यंत्र, लेजर लैंड लेवलर, स्वचालित और ट्रैक्टर चलित छिड़काव का यंत्र किसानों के लिए काफी मददगार साबित हो रहे हैं। कृषि यंत्र और मशीनें कृषि उत्पादन का एक महत्वपूर्ण अंग है। कृषि यंत्र और मशीनों के उपयोग से कम समय में कम श्रम के साथ और कम लागत से अधिक पैदावार ली जा सकती है। इसके अलावा बीज, उर्वरक, पानी और कृषि रक्षा दवाओं का उपयोग भी इन्हीं कृषि यंत्रों और मशीनों की मदद से किया जाता है। कृषि यंत्रों का प्रयोग समय पर कृषि कार्य संपन्न करने में मददगार है और बड़े स्तर पर कृषि कार्य करना इनसे आसान होता है। इसके अलावा कृषि उत्पादन से लेकर प्रसंस्करण और बाजारीकरण तक के सभी कार्यों को सफलतापूर्वक और व्यवस्थित ढंग से कृषि यंत्रों और मशीनों द्वारा संपन्न किया जाता है। इन यंत्रों पर किसान भाइयों का काफी पैसा खर्च होता है, इसीलिए कृषि यंत्रों के प्रयोग और रखरखाव पर पूरा ध्यान देना आवश्यक है। इससे न केवल कृषि यंत्रों की आयु बढ़ती है बल्कि कृषि यंत्रों के रख रखाव की लागत में कमी के साथ साथ समय की भी बचत होती है। किसान मित्रों, कृषि कार्य करने के बाद कृषि यंत्रों को साफ सुथरे और सूखे स्थान पर रखना चाहिए। आवश्यकता अनुसार इन पर तेल और ग्रीसिंग करते रहना चाहिए। कृषि यंत्रों को उनकी कार्य क्षमता के अनुसार ही प्रयोग करें और विशेष कार्यों के लिए विशेष यंत्र का ही प्रयोग करें ताकि कार्य कुशलतापूर्वक संपन्न किया जा सके। कृषि यंत्रों को प्रयोग करने से पहले अच्छी तरह से उनके सभी पुर्जों की जांच कर लें। यंत्रों के उपयोगकर्ता को यंत्र चलाने का अच्छी तरह से ज्ञान और उसका प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए। अन्य सुरक्षात्मक साधनों का जैसे पानी और रेत को कार्य करते समय पास रखें। कृषि यंत्रों और मशीनों का प्रयोग करते समय केवल कुशल श्रमिकों को ही सहायक के रूप में काम पर रखें। विशेष तौर पर महिला श्रमिकों को कार्य शुरू करने से पहले ठीक प्रकार समझा दें कि किस प्रकार कार्य करना है। कार्य करने के दौरान कोई रुकावट आ जाए तो कुशल मिस्त्री की ही सहायता लें। और इसके अलावा छोटे छोटे बच्चों को कृषि यंत्र और मशीनों के पास ना आने दें। तो इन सब बातों का ध्यान में रखते हुए हमारे किसान भाई कृषि यंत्रों का रख रखाव और उनका उपयोग करें। तो किसान मित्रों, ये तो बात रही कृषि यंत्रों के रख रखाव और उनके उपयोग की। और आइए अब आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं सुनील चौहान और किस्सा रहेगा लव कुश का।
1: ओरे

किसान मित्रों, अभी आप सुन रहे थे सुनील चौहान से ये रागनी, किस्सा था लव कुश का। किसान मित्रों, भारत सरकार द्वारा आपकी आय को बढ़ाने और आपके जीवन स्तर को बेहतर बनाने के लिए हर संभव प्रयास किया जा रहा है। यहाँ तक कि किसान भाइयों के समक्ष आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान के लिए समय समय पर सरकार द्वारा योजनाएं लॉन्च की जाती हैं और इन योजनाओं को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य कृषि फसलों का चौमुखी विकास करना है। पिछले कुछ वर्षों में लोगों का रुझान बागवानी के क्षेत्र में अधिक देखने को मिल रहा है और सबसे खास बात यह है कि वर्तमान समय में देश के हमारे बहुत से किसान भाई बागवानी से अच्छी आय प्राप्त कर रहे हैं। इसीलिए सरकार ने बागवानी के क्षेत्र में लोगों को बढ़ावा देने और हमारे किसान भाइयों की आय में वृद्धि करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय बागवानी मिशन चलाया है। किसान मित्रों, राष्ट्रीय बागवानी मिशन के अंतर्गत किसानों को उच्च दामों वाली सब्जियों, फल और फूलों साथ ही मसालों की खेती के लिए प्रोत्साहन दिया जा रहा है। खाद्यान्न फसलों की अपेक्षा बागवानी में किसानों को अधिक आय के साथ ही विभिन्न प्रकार के फायदे हैं। खाद्यान्न फसलों को उगाने के लिए बहुत सारी भूमि की आवश्यकता होती है, जबकि बागवानी का कार्य आप कम भूमि पर आसानी से कर सकते हैं। बागवानी फसलों की सहायता से छोटे और हमारे सीमांत किसान भाई अपनी कम भूमि पर भी अधिक लाभ प्राप्त कर सकते हैं। इस मिशन के माध्यम से किसानों को बागवानी फसलों के लिए सरकार द्वारा वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। सरकार द्वारा इस स्कीम को शुरू करने का मुख्य उद्देश्य हमारे किसान भाइयों की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए बागवानी फसलों को बढ़ावा देना है, ताकि हमारे किसान भाई पारंपरिक खेती की अपेक्षा आधुनिक खेती की तरफ आकर्षित हो सके। इस योजना के माध्यम से किसान भाइयों को उनकी आवश्यकता के अनुसार सिंचाई, नेट हाउस, भंडारण और तारबंदी आदि के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। तो किसान बहन भाइयों, ये तो बात रही राष्ट्रीय बागवानी मिशन की, और आइए अब कार्यक्रम के आखिर में आपको सुनवाते हैं एक रागनी। कलाकार हैं ज्ञानेंद्र सरधाना और हरेंद्र नागर। किस्सा रहेगा महाभारत का।

ज्ञानेंद्र सरधाना और हरेंद्र नागर द्वारा गाई गई इसी रागनी के साथ आज का खेत खलियान कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होता है। सभी किसान मित्रों को नमस्कार।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे टीबी की बात करने आया हूँ। डेली रेजिमेन के अंतर्गत अब टीबी मरीज को 6 से 8 महीने रोज दवा लेनी होगी। जहाँ पहले एक दिन में कई गोलियाँ लेनी पड़ती थी, आज आपको अपने वजन के हिसाब से मात्र 2 से 5 गोलियाँ ही लेनी पड़ेंगी। और बच्चों के लिए पानी में घुलने वाली दवाइयाँ दी जाती हैं। आप अपना इलाज सहयोगी किसी को भी बना सकते हैं, दोस्त, घर वाले, पड़ोसी या अन्य। तो आइए मिलकर देश को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1-800-11-66-66 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
5: The world is here.

दोस्तों सावित्री सत्यवान के साथ आज बियाबान जंगल में लकड़ी काटने के लिए पहुंच गई। मेहरबानों सत्यवान की जो एक साल बाकी थी उसका वही दिन और उस दिन में भी कुछ थोड़ा सा क्षण बाकी था। मेहरबानों सत्यवान पेड़ पर चढ़कर लकड़ी काट रहा था और सावित्री पेड़ की जड़ में सत्यवान की ओर देख रही थी। सत्यवान की उम्र का वो क्षण सावित्री को याद था और इसीलिए क्योंकि पतिव्रत था थी सत्यवान के साथ जंगल में आई थी। मेहरबानों चांदनी रात में बारात बुरी लगती है और जब घर में उल्लास चांदनी रात में बरसात बुरी लगती है और जब घर में उल्लास तो बारात बुरी लगती है। इन झूठे अफसानों से दिल नहीं भरता यारो, जब दिल में हो दर्द तो हर बात बुरी लगती है। मेहरबानों आज सावित्री को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, सिर्फ उसे याद थी उन यमराजों की, उन यमराज के दूतों की, कब वो आएंगे और कब मेरे साथ के आगे वो हार मान के जाएंगे। मेरे मेहरबानों फिर क्या था, सत्यवान के सर में दर्द होने लगा, काया दुखने लगी। सावित्री मुझे कुछ ऐसा दिखाई देने लगा जैसे इस दुनिया में मुझे अब रहना ही नहीं है, प्राणनाथ में तुम्हारी दुख को जानती हूं, पेड़ से नीचे उतर के आओ। मेहरबानों सत्यवान नीचे उतर के आता है और ब्याही के घोड़ा में अपना सिर रख लेता है। मेरे मेहरबानों आखिरी समय था, भला क्या कहने लगा, सावित्री अब तू विधवा हो जाएगी, आज तेरे प्राणनाथ तुझे छोड़कर यमपुरी को जा रहे हैं।

0: हाय, मैं हूं रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। मैं आज हम बात करने वाले हैं डाइजेशन के विषय में। अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत है तो निश्चित तौर पर आपको कोई दिक्कत परेशानी हो नहीं सकती, लेकिन अगर आपका पाचन तंत्र मजबूत नहीं है, डाइजेशन सिस्टम कहीं ना कहीं गड़बड़ा रहा है, तो दिक्कतें परेशानी आपके सामने आती रहेगी। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही कि खराब से खराब डाइजेशन को एक दिन में सुधार देंगे यानी कि ये पांच जूस। वो कौन कौन से पांच जूस हैं जिसके बारे में आज मैं आपको बताने जा रहा हूं, और जूस पीने का सही तरीका भी। चलिए विस्तार से बात करते हैं। खराब डाइजेशन कई बीमारियों का कारण बन सकता है, इसलिए डाइजेशन को दुरुस्त रखने के लिए पांच हेल्दी जूस जरूर पिए। बेहतर पाचन के लिए हेल्दी जूस बहुत आवश्यक है। पाचन से जुड़ी समस्याएं बहुत असहज हो सकती हैं, काफी दर्दनाक भी, लेकिन बहुत से तरीकों से इन समस्याओं से छुटकारा पाया जा सकता है। ऐसा करने का एक सबसे आसान तरीका है हेल्दी जूस पीना, जो विटामिन, मिनरल्स और डाइजेस्टिव एंजाइम से भरपूर होते हैं। आइए जानते हैं कुछ ऐसी हेल्दी जूस के बारे में जो आपके पाचन तंत्र के लिए काफी लाभदायक हो सकते हैं। बात करते हैं अदरक का जूस के विषय में। तो बात सामने आती है कि अदरक का जूस एंटी इंफ्लेमेटरी गुणों से भरपूर होता है, जो पेट के डिस्कम्फर्ट से राहत दिलाता है और हेल्दी डाइजेशन होने में मदद करता है। अदरक का जूस बनाने के लिए आपको अदरक छील लेना है और उसे छोटा छोटा काट लें। अब थोड़े से पानी के साथ इसे ब्लेंड कर लें और इसके पल्प को छान लें। आप स्वादानुसार नींबू का रस या फिर शहद भी मिला सकते हैं, इससे ये आपको कड़वा नहीं लगेगा। अब बात अनानास का जूस। जी हाँ, अनानास में ब्रोमेलिन नाम का तत्व अधिक मात्रा में होता है, जो प्रोटीन को ब्रेक डाउन कर सकता है और इन्फ्लेमेशन कम करने में सहायक होता है। अनानास के जूस का सेवन करने से पाचन में लाभ मिल सकता है और ब्लोटिंग जैसी समस्याओं से भी छुटकारा मिल सकता है। आपको केवल ताजा अनानास लेना है, उसे थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। अब इसे छानकर पी सकते हैं। अब बात नींबू के रस की। नींबू का रस भी प्रकृति में अम्लीय होता है और इसमें एंटीऑक्सीडेंट होते हैं। नींबू की साइट्रिक प्रकृति गुर्दे की पथरी की संभावना को कम करने में मदद करता है। बात एलोवेरा जूस की। एलोवेरा अपनी हीलिंग गुणों के लिए जाना जाता है, इससे इन्फ्लेमेशन कम होने में मदद मिलती है। इससे पेट में हेल्दी बैक्टीरिया का उत्पादन बढ़ता है और पाचन में भी मदद मिलती है। आपको केवल एलोवेरा जेल को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड कर लेना है। गाजर का जूस। गाजर में फाइबर अच्छी खासी मात्रा में पाया जाता है और ये पाचन तंत्र को रेगुलेट करने में मदद करता है। इससे हेल्दी बाउल मूवमेंट्स में भी मदद मिलती है। अगर आप इसे नियमित रूप से पीते हैं तो पेट में इन्फ्लेमेशन भी कम हो सकती है और पेट में हेल्दी बैक्टीरिया के उत्पादन में भी मदद मिलती है। आपको केवल गाजर को थोड़े से पानी के साथ ब्लेंड करके छान कर पी लेना है। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: हाय, दिस इज शालमली खोलगड़े एंड यू आर लिसनिंग टू मी ऑन 90.8 FM सुनो शारदा।

0: हाय, मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: क्या आपको बुखार आ रहा है?
2: ये बुखार डेंगू, चिकनगुनिया या मलेरिया का हो सकता है।
1: बुखार होने पर फौरन नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र पर जाकर दिखाएं।
2: सिर, हाथ, पांव और पेट पर सामान्य पानी की पट्टी रखें।
1: बुखार के दौरान पानी, शिकंजी, ताजी फलों का रस और नारियल पानी जैसे तरल पदार्थों का ज्यादा सेवन करें।
2: हल्के सूती कपड़े पहने और कमरे को ठंडा रखें।
1: डॉक्टर की सलाह के बगैर कोई भी दवा का सेवन ना करें। झोला छाप चिकित्सकों से बचें।
2: संचारी रोग के बारे में अधिक जानकारी के लिए आप हेल्पलाइन नंबर
1: 1800-180-5145 पर कॉल कर सकते हैं।
2: याद रखना, बुखार में देरी
1: पड़ेगी भारी।
2: यूनिसेफ के सहयोग से सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा ये जानकारी जनहित में जारी।
3: हाय, नमस्कार, मैं हूँ आरजे रौनक और आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM पर।

0: सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हाय प्रिया, तुम इतनी टेंशन में क्यों हो? आखिर हुआ क्या तुम्हें?
2: रोहन, अब क्या बताऊँ, इतने सारे कोर्स है, समझ नहीं आ रहा बैचलर्स में एडमिशन कहाँ लूँ।
1: अच्छा प्रिया, ये बताओ कि तुम्हें लाइफ में करना क्या है?
2: मुझे मैं चाहती हूँ मेरी आवाज पूरी दुनिया में गूंजे। मैं चाहती हूँ कि कैमरा उठा के निकल जाऊँ और फोटोग्राफी करूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने ट्रेवल व्लॉग्स और फिल्में बनाऊँ। मैं चाहती हूँ।
1: मैं समझ गया प्रिया, तुम क्या चाहती हो। तुम ऐसा कोर्स चाहती हो जिसमें रेडियो, फिल्म और एंटरटेनमेंट का कॉम्बो हो।
2: लेकिन ऐसा कोई कोर्स है क्या?
1: बिल्कुल प्रिया, शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट एक ऐसा कोर्स ऑफर करता है जिसमें आपको सब कुछ सीखने को मिलेगा।
2: क्या सच में? इसका मतलब मेरे सपने साकार हो सकते हैं, तो चलें।
1: हाँ, मैंने तो एडमिशन ले लिया है, अब तुम्हारी बारी है।
3: Come and explore the world of Sharda School of Media, Film and Entertainment, which makes you industry ready.
4: और साथ ही साथ आपको मिलेगा ऑपरेशनल सुरुशादा 90.8 FM कम्युनिटी रेडियो स्टेशन के साथ काम करने का सुनहरा मौका, जहां से आप आरजिंग सीख सकते हैं, प्रोडक्शन करना सीख सकते हैं, वॉइस ओवर करना सीख सकते हैं और टीवी इंडस्ट्री का मौका चाहते हैं तो शारदा टीवी भी आपको मौका देता है, जहां नजदीकी से एक्टर, डायरेक्टर और प्रोडक्शन टीम के साथ सीखने को बहुत कुछ मिलता है।
3: So, where are you? The world is here at Sharda University.
5: नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो शारदा 90.8 FM महिलाओं का सम्मान करता है, उनके हक की बात करता है और इन्हीं सारी बातों को ध्यान में रखते हुए हम एक विशेष श्रृंखला के तौर पर एक खास कार्यक्रम चला रहे हैं जिसका नाम है हिंसा को नो। इसमें हमें सहयोग मिला है स्मार्ट संस्था का और जिन विषयों पर समय दर समय हम बात कर रहे हैं वो विषय हैं जैसे कि मेरी पत्नी, मेरा अधिकार, दहेज प्रथा या हत्या, कैसे बचे मनचलों से, कच्ची उम्र की शिक्षा, माँ मुझे बाहर जाना है, पितृसत्ता, असमान व्यवहार, असमान दीक्षा, खतना धर्म नहीं दर्द, बालिका या वधू और बेटियां हैं तो वंश है यानी प्रजनन अधिकार। तो इस तरीके से हर एक मुद्दे पर हम खुलकर बातें कर रहे हैं और हम आपको बताना चाहेंगे इस विशेष कार्यक्रम में हमें दूसरे सामुदायिक रेडियो स्टेशन का भी सहयोग मिल रहा है और ये भी सच है कि दूसरे स्टेशन हमारे खास प्रोग्राम को अपने यहां से ऑन एयर करते हैं। इसी समझौते के तहत हम दूसरे स्टेशन के कार्यक्रम आज यहां से ऑन एयर कर रहे हैं जिसमें हमें सहयोग मिल रहा है लाउड स्पीकर 90 FM का। आइए सुनते हैं, उनका आभार व्यक्त करते हैं और सुनते हैं हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम।
6: हिंसा को नो

0: नमस्कार। आज के हमारे कार्यक्रम हिंसा को नो में आप सबका स्वागत है और ये कार्यक्रम हम स्मार्ट की सहायता से प्रस्तुत कर रहे हैं। हिंसा एक ऐसा शब्द है जिसे सुनकर ही एक डर सा लगता है। जरूरी नहीं कि हिंसा मारपीट या शारीरिक प्रताड़ना ही हो। कई बारी हमारे साथ ऐसी चीजें होती हैं जिसे हम हिंसा के रूप में नहीं मानते, उसे अपने जीवन का, समाज का एक हिस्सा, एक रीति मानते हैं। कुछ ऐसी ही सामाजिक कुरीतियों के बारे में हम आप सबके साथ एक नाटक साझा कर रहे हैं। हिंसा को नो में आज का हमारा जो विषय है वो है हिंसा में महिलाओं की भूमिका। इस विषय को हम अलग अलग कहानियों के माध्यम से आप तक प्रस्तुत करने की कोशिश करते हैं। इस कड़ी में हमारी पहली कहानी है रेनू की। रेनू के घर में उसकी सास मंजू, पति महेश और एक देवर रोहित है। एक सुबह रेनू का पति महेश रेनू से,
1: रेनू, ओ रेनू।
2: हाँ बोलिए।
1: नाश्ता बना?
2: नहीं, बन रहा है अभी।
1: अरे इतना लेट कैसे हो गया?
2: वो आज सुबह माँ जी को नहलाने धुलाने लगी थी, इसी में लेट हो गया।
1: तुम्हारा रोज का ही लेट हो जाता है।
2: नहीं वो आज,
1: क्या आप, जब सिर्फ तुम्हारा एक ही काम है खाना बनाना, वो भी तुम्हें टाइम से नहीं कर पाती हो।
2: रोज तो बन ही जाता है ना, आज ही बस थोड़ा सा लेट हो गया।
1: हाँ तुमको पता है तुम एक काम बहुत अच्छा करती हो, उसमें कोई कमी नहीं होती, वो है जुबान लड़ाना।
2: अरे बना रही हूँ, रुक जाइए थोड़ा।
1: अब क्या बनाओगी, मेरा ऑफिस जाने का वक्त हो गया है, अब तो रहने ही दो।
2: अब बस दो मिनट रुकिए, मैं बना के लाती हूँ।
1: अच्छा सुबह से तुम कुछ नहीं बना पाई, दो मिनट में क्या बना लोगी? बेवकूफ समझती हो या फिर खुद को बड़े होशियार समझती हो?
2: आप तो बिना बात के ही भड़क जाते हैं, जब देखो तब।
1: मैं भड़क रहा हूँ? मैं?
2: ये भड़कना ही तो है।
1: तुम सच में बहुत बदतमीज हो। और तुम ही क्यों, तुम्हारी पूरी फैमिली बदतमीज है, स्पेशली तुम्हारे पापा।
2: आप हर बात में पापा को क्यों ले आते हैं? हर बात जब देखो तब आप पापा को बीच में लेते आते हैं, जब देखो तब आप मेरे मायके वालों को बीच में लेके आते हैं। मुझे समझ में नहीं आता आप क्यों ऐसा करते हैं।
1: उन पर ही गई हो तुम।
2: आपको जो कहना आप मुझे कहिए, घर वालों को क्यों कहते हैं? जो भी काम करती हूँ वो मैं करती हूँ ना, घर वाले थोड़े ही करते हैं। तो मुझे सुनाइए, घर वालों को क्यों बोलते हैं, उनकी क्या गलती है इसमें?
1: क्यों ना जाऊँ, तुम सब पूरे घर वाले एक ही जैसे हो और उसी लायक हो।
2: बस कह रही हूँ ना, उन लोगों को कुछ मत कहा करिए।
0: महेश रेनू को एक जोर का थप्पड़ मारता है। रेनू थप्पड़ खा के चुपचाप किचन में जाके नाश्ता बनाने लगती है। इस कहानी में रेनू चुपचाप अपने ऊपर हो रही हिंसा को सह के हिंसा को और भी बढ़ावा दे रही है।

0: हिंसा में महिला की भूमिका की इस कड़ी में हमारी अगली कहानी है रुचि की। रुचि बीएससी की छात्रा है। रुचि के कॉलेज में लड़के लड़कियां साथ में पढ़ते हैं। रुचि के कई दोस्त लड़के भी हैं। रुचि की एक दोस्त है शिल्पी। शिल्पी पढ़ने में बहुत अच्छी है। वो हमेशा ही क्लास में अव्वल आती है। शिल्पी की ही कक्षा में एक लड़का है जिसका नाम है प्रताप। प्रताप शिल्पी को बहुत परेशान करता है, पर प्रताप रुचि का अच्छा दोस्त है। एक दिन कॉलेज में प्रताप रुचि से,
1: यार रुचि एक बात बताओ, ये शिल्पी कहाँ रहती है?
2: वो जो अपने कॉलेज के बाद चौराहा पड़ता है ना, उधर ही घर है उसका।
1: मैंने उसे कल मार्केट जाते देखा था।
2: हाँ, गई होगी किसी काम से।
1: तुम्हारी तो बहुत पटती है ना शिल्पी से।
2: पटती वटती नहीं है, पढ़ने में थोड़ी ठीक है इसलिए बात कर लेती हूँ। कॉपी वॉपी दे देती है यार।
1: अच्छा, तुम्हें कॉपी देती है?
2: हाँ देती तो है।
1: यार मुझे वो अपना पेन का कैप तक न दे। अच्छा, उसकी एक बहन भी है ना?
2: हाँ है।
1: वो कहाँ पढ़ती है?
2: अपने ही कॉलेज में पढ़ती है वो भी, तुम्हें नहीं पता?
1: नहीं, क्या नाम है उसका?
2: प्रिया नाम है उसका। अरे वही प्रिया जो एनुअल डे के प्रोग्राम में तुम्हारे साथ पार्टिसिपेट की थी।
1: क्या प्रिया शिल्पी की बहन है? प्रिया तो बड़ी अच्छी है यार।
2: हाँ वो तो अच्छी है, मिलनसार भी है बहुत।
1: तो ये पता नहीं किस पे गई है जो ऐसी है।
2: छोड़ो ना उसे, तुम ये बताओ तुम्हारा सब्जेक्ट कंप्लीट हुआ?
1: अरे हो जाएगा यार, जब कॉपी चेक कराना होगा तब कर लूंगा। यार रुचि, ये शिल्पी पता नहीं किस घमंड में रहती है।
2: क्यों, क्या हुआ?
1: अरे यार उसको 3-4 बार प्रपोज कर चुका हूँ, पता नहीं किस बात का घमंड है उसमें।
2: अरे यार पढ़ने में थोड़ी ठीक है ना इसलिए बहुत ज्यादा उड़ती है। एक दो बार टॉप क्या कर लिया क्लास में, एकदम खुद को हीरोइन ही समझती है। आर्यभट्ट की नानी है, नानी बहुत अपने आप को हीरोइन बनती है। पता है पिछली बारी भी उसने एकदम नाक में दम कर दिया था, जब देखो तब मैम के सामने, मैम कॉपी चेक कर दीजिए, सिर्फ कॉपी चेक कर दीजिए। मेरा तो एकदम दिमाग खराब है यार उस लड़की पे।
1: मन तो करता है जिस पर उड़ती है उसके वही पंख कुतर दूं।
2: मतलब
1: सोच रहा हूँ इस बार सेमेस्टर एग्जाम में उसको फर्जी नकल में पकड़वा कर रेस्टिकेट करवा दूं।
2: अरे वाह, अगर ऐसा हो जाए ना तो मजा ही आ जाए।
1: कर सकते हो? अरे देखना, मैं करके रहूंगा।
2: हाँ जरूर करना है ऐसा, तभी तो मैडम जो खुद को आर्यभट्ट समझती हैं, ये वाली हेकड़ी निकलेगी, मजा आएगा।
0: इस कहानी में रुचि प्रताप की गलत हरकतों को बढ़ावा देकर शिल्पी पे होने वाली हिंसा में भागीदार बन रही है। इस तरह कई बार महिलाएं खुद भी अन्य महिलाओं पर हिंसा को जन्म देती हैं। आशा करते हैं कि आप सबको हमारी ये कहानियां पसंद आई होंगी, और पसंद आने के साथ साथ आपने समझा भी होगा कि किसी भी समस्या का समाधान हिंसा से नहीं बातचीत करके ही निकलता है। तो उम्मीद है आप भी इस कहानी के द्वारा दिए गए संदेश को अपने अंदर आत्मसात करेंगे और आप भी कहेंगे हिंसा को नो।

अभी आप सुन रहे थे हिंसा को नो के अंतर्गत ये विशेष कार्यक्रम। इसमें हमें सहयोग मिला लाउड स्पीकर 90 FM का। ये विशेष कार्यक्रम हिंसा को नो के अंतर्गत आप सुन रहे हैं और ऐसे ही विशेष कार्यक्रम आप समय दर समय यहाँ से सुनते रहेंगे। अधिक जानकारी के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं 0120406025 पर, और इसी नंबर पर आप अपनी प्रतिक्रिया हम तक पहुंचा सकते हैं कि ये विशेष कार्यक्रम आपको कैसा लगा। एक बार पुनः लाउड स्पीकर 90 FM का हम धन्यवाद करते हुए आपसे मैं अब अनुमति लेना चाहता हूँ। बस सुनते रहे ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।

0: भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक। समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम। सुनो शारदा।
1: नई दुल्हन तो बिल्कुल चांद जैसी है।
2: काकी, आप अपनी टीबी का इलाज तो करवा रही हैं ना?
1: हाँ बेटी, मैं टीबी की दवाइयाँ हर रोज खा रही हूँ। ये दवाई सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में बिल्कुल मुफ्त मिल रही है।
2: हाँ, अब तो आप और जल्दी ठीक हो जाएंगी, क्योंकि अब सरकार टीबी के मरीजों को मुफ्त इलाज के साथ हर महीने 500 रुपए की मदद भी दे रही है, ताकि वो इलाज के दौरान पोषण से भरपूर भोजन ले सके, और ये मदद सीधे उनके बैंक खाते में आएगी।
1: दुल्हन सुंदर ही नहीं, समझदार भी है।
3: आइए मिलकर टीबी को हराएं, टीबी मुक्त भारत बनाएं।
4: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
5: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
6: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया भर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।

0: सुनो आरती, ये जो फूलों की बेलें नजर आती हैं ना, दरअसल ये बेलें नहीं है, अरबी में आयतें लिखी हैं। इसे दिन के वक्त देखना चाहिए, बिल्कुल साफ नजर आती है। दिन के वक्त ये सारा पानी से भरा रहता है। दिन के वक्त जब ये फुहारे
1: क्यों कर रहे हो? कहां आ पाऊंगी मैं दिन में?
0: ये जो चांद है ना, इसे रात में देखना, ये दिन में नहीं निकलता।
1: ये तो रोज निकलता होगा।
0: हाँ, लेकिन बीच में अमावस आ जाती है। वैसे तो अमावस 15 दिन की होती है, लेकिन इस बार बहुत लंबी थी।
1: 9 बरस लंबी थी ना।

0: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शादा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखें और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हेलो, कौन?
2: नमस्कार, हम दस्त बोल रहे हैं और हम आ रहे हैं आपके घर, आपके बच्चे की तबीयत जो खराब करनी है
3: तो लंबा प्रोग्राम बना के आ रहे हैं,
2: जल्द मिलते हैं।
1: हेलो हेलो हेलो,
4: आ रहे हैं दस्त, दस्त देंगे बड़ा हम कष्ट कष्ट।
5: दस्त ऐसे बताकर नहीं आते, तो दस्त के लिए तैयार रहना, घर में ORS और जिंक है ना। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी।
6: नमस्कार, मैं हूँ अभिनव चतुर्वेदी और आप सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
1: लक्षण इसी से तो किसी की पहचान बनती है, और बड़े बुजुर्गों ने कहा भी है कि किसी के दो चार लक्षण जान लो फिर वो इंसान कैसा है मालूम पड़ जाता है। फिर एक खांसी के लक्षण को हम कैसे नकार कर उसे टीबी में बदलने का मौका दे देते हैं, बताइए। देखिए, सिर्फ पांच बातें ही तो याद रखनी है आपको। दो हफ्ते से लगातार खांसी, बुखार, रात में पसीना आना, भूख न लगना, वजन में लगातार गिरावट, इनका पता चलते ही टीबी की जांच कराइए। और सुनिए, सरकारी स्वास्थ्य केंद्र में ये जांच बिल्कुल मुफ्त है। इंडिया वर्सेस टीबी, टीबी हारेगा देश जीतेगा।
2: यह संदेश स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
3: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है, और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
4: The world is here.

0: हाय, मैं हूँ रणविजय। आप मुझे सुन रहे हैं सुनो शारदा एट 90.8 FM।
1: अरे सुनीता, कैसे बा मुनिया?
2: नमस्ते आशा दीदी, सब ठीक बा?
1: साफ सफाई के ध्यान रखत आरू ना?
2: जी दीदी, जैसे रहुआ कहल रहनी, हर द्वार के साफ सफाई की जिम्मेदारी लेनी हम। जहाँ कहीं भी पानी जमा देखे नी, ओकेरा के तुरंत साफ करें, जैसे कि पानी के ड्रम, कूलर, फ्रिज, ट्रे
3: और आसपास कहूँ भी टायर, नरिवल, खाली बर्तन या कोनो भी चीज में पानी जमा

0: चिकन भुनिया मलेरिया बीमारी बुखार से बचे तो बेटा। बस अब ली हर इतवार के साफ सफाई की जिम्मेदारी, मिलके पड़प जा मच्छर बन पर भारी।
1: Hi, this is Shalmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda.

नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनुशादा 90.8 एफएम, मेरे यानी गगन के साथ बात हेल्थ की। में आज हम बात करने जा रहे हैं किडनी पेशेंट के लिए बेस्ट हैं 5 फूड। आइए जानते हैं कि गुर्दे की बीमारी में किस तरीके से ये फायदा पहुंचाता है। जी हाँ, एक संतुलित शाकाहारी डाइट गुर्दे के स्वास्थ्य में महत्वपूर्ण योगदान दे सकता है। और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम कर सकता है। बात करते हैं किडनी पेशेंट के लिए डाइट क्या है। तो बात सामने आती है कि बेहतर स्वास्थ्य के लिए किडनी को स्वस्थ रखना बहुत जरूरी है और संतुलित आहार किडनी की बीमारियों को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि आप शाकाहारी हैं तो ऐसे कई पोषक तत्व युक्त खाद्य पदार्थ हैं जो किडनी के स्वास्थ्य को बेहतर बनाने में सहायता कर सकते हैं और किडनी रोग के खतरे को कम कर सकते हैं। बात करते हैं कि हम 5 शाकाहारी खाद्य पदार्थों के बारे में जानेंगे जो किडनी पेशेंट के लिए फायदेमंद हो सकते हैं और जरूरी पोषक तत्व भी प्रदान करते हैं। तो बात पत्तेदार साग के विषय की। पालक, बथुआ, करीमुआ, सरसों, केल, कोलार्ड ग्रीन्स जैसी पत्तेदार हरी सब्जियां किडनी के स्वास्थ्य के लिए बेहतर विकल्प हैं। इनमें पोटेशियम की मात्रा कम होती है और आवश्यक विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर होते हैं। इन सागों में डाइटरी फाइबर भी अधिक होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने और वजन को नियंत्रित रखने में मदद करता है। अपने आहार में पत्तेदार सब्जियां शामिल करने से किडनी की कार्य क्षमता में मदद मिल सकती है और क्रॉनिक किडनी रोग का खतरा कम हो सकता है। अब बात करते हैं बेरीज की। स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, रॉस्पबेरी और क्रेनबेरी जैसी बेरीज एंटीऑक्सीडेंट, विटामिन और फाइबर से भरपूर होते हैं। इनमें पोटेशियम भी कम होता है जो उन्हें किडनी के लिए अनुकूल फल बनाता है। बेरीज में एंटी इंफ्लेमेटरी गुण होते हैं और ये ऑक्सीडेटिव तनाव को कम करने में मदद कर सकता है जो किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद है। नाश्ते के रूप में मुट्ठी भर फ्रेश बेरीज का आनंद लें या पौष्टिकता बढ़ाने के लिए उन्हें स्मूदी, सलाद या दलिया से जोड़ें। बात फलियों की। दाल, छोले, काली बीन्स और राजमा सहित विभिन्न फलियां प्रोटीन और फाइबर के उत्कृष्ट स्रोत हैं। उनमें सोडियम की मात्रा कम होती है और मैग्नीशियम, पोटेशियम और फास्फोरस जैसे आवश्यक खनिजों की अच्छी मात्रा प्रदान करते हैं। फलियों में संतृप्त वसा और कोलेस्ट्रॉल भी कम होता है जो उन्हें हृदय के लिए स्वस्थ विकल्प बनाता है। अपने आहार में फलियां शामिल करने से ब्लड प्रेशर के स्तर को बनाए रखने और गुर्दे की बीमारी के खतरे को कम करने में मदद मिल सकती है। बात साबुत अनाज की। किनोआ, ब्राउन राइस, जौ और ओट्स जैसे साबुत अनाज किडनी के स्वास्थ्य के लिए फायदेमंद होते हैं। इनमें फाइबर की मात्रा अधिक होती है और ये मैग्नीशियम, आयरन और विटामिन बी जैसे आवश्यक पोषक तत्व प्रदान करते हैं। साबुत अनाज में ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम होता है जो ब्लड शुगर लेवल को नियंत्रित करने में मदद करता है और टाइप 2 डायबिटीज के खतरे को कम करता है जो किडनी रोग का एक प्रमुख कारण है। बात फूल गोभी की। फूल गोभी एक बेहतरीन सब्जी है जो किडनी के लिए फायदेमंद हो सकती है। इसमें पोटेशियम कम होता है और विटामिन सी, फोलेट और फाइबर का अच्छा स्रोत होता है। फूल गोभी का उपयोग आलू जैसे हाई पोटेशियम खाद्य पदार्थों के विकल्प के रूप में किया जा सकता है जिससे ये किडनी की समस्या वाले लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प बन जाता है। फूल गोभी को भूनकर या भाप में पकाकर साइड डिश के रूप में खा सकते हैं।

0: उमंग
1: CIET प्रस्तुत करता है
0: उमंग उमंग उमंग उमंग।
2: आप सबको विमलेश का नमस्कार
3: और आप सबको अजीत का भी नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत है आप सबका उमंग कार्यक्रम में। आइए श्रोताओं, सबसे पहले सुनते हैं आज का सुविचार जिसे भेजा है
2: हमीरपुर बुंदेलखंड उत्तर प्रदेश से रामशरण विश्वकर्मा, साहिल विश्वकर्मा एवं समस्त विश्वकर्मा परिवार ने। और वो लिखते हैं,
3: जो लोग दूसरों से जलते हैं वो माचिस से सीख ले सकते हैं, क्योंकि तीली दूसरों को जलाने से पहले खुद जलती है।
2: बहुत अच्छा सुविचार भेजा है आपने, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
3: और आइए श्रोताओ, अब सुनते हैं संदेश भेजने वाले श्रोताओं के नाम।
2: लच्छनपुर छत्तीसगढ़ से जीवन लाल रजक लिखते हैं, प्रसिद्ध वैज्ञानिक लुई पाश्चर के बारे में बताई गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी। इस कार्यक्रम को लाइव कक्षा 9वीं के विद्यार्थियों को क्लास में सुना दिया। बच्चे इस कार्यक्रम को सुनकर बहुत खुश हुए। मैं छत्तीसगढ़ के शासकीय विद्यालय में शिक्षक हूं, मुझे NCERT नई दिल्ली द्वारा प्रसारित हर कार्यक्रम बहुत ही अच्छा लगता है।
3: तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे संदेश के लिए। हम आपको प्रोत्साहित करेंगे कि इसी प्रकार से हमारे कार्यक्रमों को आप अपनी कक्षाओं में सुना सकते हैं।
2: जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। राजेश कुमार विद्यार्थी कुर्सठ हरदोई से लिखते हैं,
3: NCERT पर आधारित उमंग कार्यक्रम मुझे सुनना बहुत अच्छा लगता है और मैं आपका कार्यक्रम समय निकाल कर जरूर सुनता हूं।
2: जी,
3: ये काफी ज्ञानवर्धक, मनोरंजक और शिक्षाप्रद कार्यक्रम है। जानकारियां भी बहुत सी मिलती हैं। आपके कार्यक्रम के माध्यम से आपको और NCERT को बहुत बहुत धन्यवाद।
2: आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे विचार के लिए। खुर्जा उत्तर प्रदेश से तिलक राज अरोड़ा, प्रकाश अरोड़ा, चंदन अरोड़ा और अंकुश अरोड़ा लिखते हैं,
3: उमंग कार्यक्रमों की जितनी भी प्रशंसा की जाए उतनी ही कम है। उमंग कार्यक्रम में मगर वो टूट गई सुनकर आंखें नम हो गई। ये कार्यक्रम बेहद पसंद आया, आपका शुक्रिया।
2: आपका भी शुक्रिया संदेश भेजने के लिए। आइए अब सुनते हैं आपकी हमारी जानी पहचानी श्रृंखला ये भी जानिए।
3: श्रोताओ, ये भी जानिए श्रृंखला में आज हम दुनिया में भारतीय संस्कृति का लोहा मनवाने वाले स्वामी विवेकानंद के जीवन के कुछ अनजाने पहलुओं पर चर्चा करेंगे जिन्हें शायद बहुत कम लोग जानते हैं।
2: जी, सबके मन में उनकी छवि एक गंभीर और सौम्य संत के रूप में है, लेकिन आज हम झांकेंगे उनके बचपन और किशोरावस्था में और ये जानेंगे कि उनका जीवन कितनी ऊर्जा से भरा हुआ था। 12 जनवरी 1863 को उनका जन्म कलकत्ता में हुआ था।
3: श्रोताओं, उन पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद द फीस्टिंग एंड फास्टिंग मॉन्क। इसी किताब से उनके जीवन की कुछ मजेदार बातों का पता चलता है। क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही खाने और खिलाने का बहुत शौक था?
2: श्रोताओं, उन पर एक किताब लिखी गई है जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद द फीस्टिंग एंड फास्टिंग मॉन्क।
3: वाह, बड़ा खूबसूरत नाम है, द फीस्टिंग एंड फास्टिंग मॉन्क।
2: जी, इसी किताब से उनके जीवन की कुछ मजेदार बातों का पता चलता है। क्या आपको पता है कि स्वामी विवेकानंद को बचपन से ही खाने और खिलाने का बहुत शौक था?
3: श्रोताओं, इसका पता इस बात से चलता है कि उन्होंने वेद वेदांतों की बहुत सारी किताबें खरीद कर पढ़ी थीं, लेकिन एक और विशेष किताब उन्होंने किश्तों में खरीदी थी जिसका नाम था
2: फ्रेंच कुकिंग एनसाइक्लोपीडिया। इस पुस्तक में नई नई रेसिपीज थीं
3: और अक्सर वे इन रेसिपीज का इस्तेमाल अपने घर में करते थे।
2: जी
3: श्रोताओं, दुनिया के सारे फलों में उन्हें सबसे अच्छा लगता था अमरूद।
2: जी, इसके अलावा वे मुलायम नारियल में मलाई, बर्फ और चीनी मिलाकर खाने के बहुत शौकीन थे। उनका बचपन का नाम था नरेंद्र दत्त।
3: बचपन में वे बहुत ही शरारती थे जिसे हम अंग्रेजी में नॉटी कह सकते हैं।
2: जी,
3: उन्हें साधु संत बहुत अच्छे लगते थे और अक्सर ऐसा होता था कि वे घर की कई वस्तुएं और खाने पीने की चीजें उन्हें दान स्वरूप चुपके से दे दिया करते थे। अपने संपूर्ण जीवन में वे रामायण से बहुत प्रभावित रहे।
2: उनकी स्मरण शक्ति इतनी अच्छी थी कि वे वेद वेदांतों के बहुत से अंश कंठस्थ कर लेते थे। बड़ी छोटी उम्र में ही जब बच्चे अक्षर ज्ञान ही सीख रहे होते थे तो उन्हें पढ़ना लिखना अच्छी तरह से आ गया था।
3: तो श्रोताओं, ये तो हुई पढ़ने की बात। पढ़ने के अलावा क्या आपको पता है कि उन्होंने बाकायदा भारतीय शास्त्रीय संगीत का भी प्रशिक्षण लिया था। वे बहुत अच्छे गायक थे और सितार, हारमोनियम और पखावज के साथ साथ तबला भी बजाते थे।
2: उन्हें कुश्ती, नौकायन और घुड़सवारी भी बहुत पसंद थी। शतरंज खेल में वे माहिर थे। सन 1883 में प्रेसिडेंसी कॉलेज से उन्होंने BA किया था
3: और विद्यासागर कॉलेज से लॉ की डिग्री हासिल की थी। वे आजन्म ब्रह्मचारी रहे क्योंकि उनके गुरु रामकृष्ण परमहंस का मानना था कि विवेकानंद किसी एक परिवार के लिए नहीं लेकिन पूरी दुनिया के लिए बने हैं। इसलिए सारी दुनिया को उनके ऊपर हक है।
2: उनका मानना था कि ईश्वर की सच्ची उपासना करने का सबसे उत्तम तरीका है मानव की सेवा करना।
3: श्रोताओं, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस की बीमारी के दौरान उन्होंने उनकी जी जान से सेवा की और उनकी मृत्यु के बाद उन्होंने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की।
2: अमेरिका के शिकागो में आयोजित धर्म संसद में उनके व्याख्यान ने धूम मचा दी थी और पहली बार पश्चिमी जगत भारत के हिंदू दर्शन से इतनी अच्छी तरह से परिचित हो सका।
3: वे अमेरिका कैसे पहुंचे श्रोताओं, इसकी बड़ी दिलचस्प कहानी है।

0: बड़ी सी जानकारी, आशा है कि आपको जरूर पसंद आई होगी। तो अब आज का प्रश्न आज की ही जानकारी से।
1: प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद पर कौन सी पुस्तक लिखी गई है जो उनके बचपन में खाने और खिलाने के शौक पर प्रकाश डालती है। प्रश्न एक बार फिर से सुन लेते हैं।
0: स्वामी विवेकानंद पर कौन सी पुस्तक लिखी गई है जो उनके बचपन में खाने और खिलाने के शौक पर प्रकाश डालती है।
1: आप हमारे ईमेल पर और IVRS नंबर पर अपना संदेश भेज सकते हैं। हमारे ईमेल का पता है audio@cit.nic.in
0: और हमारा IVRS नंबर है 8800440559। संदेश जरूर भेजिएगा।
1: श्रोताओं, निवेदन है कि सिर्फ रेडियो पर अपना नाम सुनने के लिए उमंग कार्यक्रम न सुने,
0: लेकिन अपने ज्ञान और सूचनाओं में वृद्धि के लिए भी कार्यक्रम जरूर सुने।
1: जी,
0: तो आइए चलते हैं, अब सुनते हैं आज का पहला कार्यक्रम। श्रोताओं, भारतीय चिंतन और दर्शन में गुरु और माता पिता को ईश्वर के तुल्य माना गया है।
1: जी हाँ, आज हम सुनेंगे रामायण में वर्णित एक बहुत ही प्रसिद्ध युवक की कहानी, जिसकी मातृ और पितृ भक्ति का उदाहरण कहीं और मिलना दुर्लभ है।
0: आप समझ गए होंगे श्रोताओं, जी हाँ, हम बात कर रहे हैं श्रवण कुमार की।
1: जी
0: आइए सुनते हैं।

0: माँ।
1: हाँ बेटा।
0: पिताजी।
2: हाँ श्रवण बेटा।
0: यदि आपने संध्या पूजा कर ली हो तो मैं आपके लिए भोजन का प्रबंध कर दूं।
2: हाँ बेटा।
1: हाँ बेटा श्रवण, हमने संध्या पूजा कर ली, तूने भी कर लेना।
0: नहीं माँ, मेरी पूजा, मेरी भक्ति तो तब तक अधूरी है जब तक मैं अपने हाथों से आपको और पिताजी को भोजन न करा दूं।
2: नहीं श्रवण, तुझे भगवान की भक्ति करनी ही चाहिए, वही तो हम सबका पालनहार है।
0: पिताजी, आप दोनों से अधिक पूज्य मेरे लिए कौन से देवी देवता होंगे।
2: बेटा।
1: सच बेटा, तेरी इसी सेवा ने हमें कभी ये अनुभव नहीं होने दिया कि हमारी आंखें नहीं है।
2: हाँ बेटा, तू ही तो है हमारी आंखों का उजाला।
0: तो फिर पिताजी, आप मेरा हाथ थामिए।
2: अच्छा श्रवण।
0: और माँ।
1: हाँ बेटा।
0: तुम मेरा कंधा पकड़ लो।
1: अच्छा बेटा।
0: हाँ, ऐसे मैं आपको भोजन के लिए ले चलता हूँ।
2: अच्छा श्रवण।
1: चलो बेटा।
0: आइए पिताजी।
2: हाँ चलो।
0: आओ माँ।
1: चलो बेटा।
0: ऐसे ऐसे।
1: चलो।
0: आओ माँ।
1: बेटा श्रवण।
0: हाँ माँ।
1: जाओ बेटा, अविश्राम कर लो, रात बहुत बीत चुकी है, कब तक ऐसे।
0: नहीं माँ, मैं पांव दबाने से थका बिल्कुल नहीं हूँ, जब आप दोनों को नींद आ जाएगी मैं चला जाऊंगा।
2: नहीं नहीं बेटा, ऐसे दिन रात हमारी सेवा करने से यदि तुझे कुछ हो गया तो।
0: आप भी कैसी बातें करते हैं पिताजी, जब तक आपका आशीर्वाद मेरे साथ है मुझे कुछ नहीं होगा।
2: श्रवण बेटा।
1: सच, कितना प्यारा बेटा है हमारा। यहाँ आ बेटा, अपने हाथों से तेरा मुख छूकर ही तुझे देख लूं।
0: माँ।
1: तू कितना सुंदर है।
0: माँ। अच्छा माँ, यदि तुम्हें और पिताजी को आंखें मिल जाएं, तो आप सबसे

0: पहले क्या देखना चाहेंगे?
1: एक बार यदि ऐसा हो जाए तो हम सबसे पहले तुझे ही देखेंगे बेटा।
0: और उसके बाद?
2: उसके बाद? उसके बाद चारों धाम तीर्थ देखे, जीवन का पुण्य कमाए।
1: किंतु ऐसा कहाँ हो सकता है श्रवण बेटा, न तो हम तुम्हें देख सकते हैं और न ही तीर्थ यात्रा कर सकते हैं।
3: क्यों नहीं हो सकता पिताजी? मैं आपकी दृष्टि तो नहीं लौटा सकता, पर हाँ सारे तीर्थ दर्शन अवश्य कराऊंगा। आप मेरी आंखों से देखेंगे पिताजी, मेरी आंखों से।
1: श्रवण,
2: परंतु ऐसा कैसे हो सकता है? तू बालक है बेटे, कैसे ले जाएगा हमें तीर्थ यात्रा के लिए? हमारी जीवन भर की इच्छा कैसे पूरी करेगा रे तू?
1: रहने दे बेटा, रहने दे, तू क्यों हमारे लिए कष्ट सहता है? अरे हम ठहरे बूढ़े हैं, न चल सकते हैं और न ही देख सकते हैं बेटा।
3: कष्ट कैसा पिताजी, आपकी सेवा तो मेरा धर्म है।
2: किंतु बेटा, तू हमें लेकर जाएगा कैसे?
3: मैं इसकी चिंता क्यों करती हो? मैं एक पहंगी मंगवाऊंगा जिसमें एक और पिताजी और एक और तुम बैठोगी, और मैं कंधे पर बहंगी रखकर आप दोनों को सारे तीर्थ करवाऊंगा।
1: किंतु बेटा, मार्ग में कहीं नदी, कहीं जंगल, कभी आंधी, कभी तूफान की न जाने कितनी कठिनाइयां सामने आएंगी।
3: पिताजी, भगवान हमारी सहायता करेगा।
1: ठीक है बेटा, जैसे तेरी इच्छा। अब तो तू ही हम अंधों की लाठी है।

0: पिताजी।
1: हाँ शर्मा,
0: अब हम तीर्थराज प्रयाग आ गए हैं। आप यहाँ वट वृक्ष की छाया में बैठकर कुछ देर विश्राम करें।
1: अच्छा बेटा,
0: जानती हो माँ?
2: क्या बेटे?
0: ये वट वृक्ष बहुत प्राचीन है।
2: अच्छा?
0: हाँ, लोग यहाँ आकर दीर्घायु के लिए प्रार्थना करते हैं।
2: सच बेटा, तो हम तेरी ही दीर्घायु के लिए प्रार्थना करें।
0: अरे अरे छोड़ो माँ। माँ, यहाँ कितने ही ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं।
2: अच्छा
0: माँ?
2: हाँ बेटा।
0: यहाँ लोग प्रयाग में स्नान कर रहे हैं।
2: अच्छा।
1: बेटा, यही कहीं मंदिर भी है ना? घंटियाँ सुनाई दे रही हैं।
0: हाँ पिताजी।
2: तो बेटा, तू हमें वहाँ ले चलेगा ना?
0: हाँ हाँ, क्यों नहीं, पहले यहाँ स्नान कर ले, फिर मंदिर चलेंगे।
2: अच्छा, तो बेटा चल, हमें स्नान करा ले।
0: हाँ माँ, चलो। चलिए पिताजी।
1: चलो बेटा,
0: मेरा हाथ पकड़ लीजिए।
1: अच्छा अच्छा,
0: आओ माँ।
2: चल बेटा।

0: माँ।
1: हाँ बेटा।
0: अयोध्या नगरी कैसी लगी?
1: बहुत अच्छी लगी बेटा।
0: माँ, यहाँ के राजा दशरथ हैं।
1: अच्छा।
0: उनके राज्य में न कोई दुखी है न निर्धन।
1: अच्छा।
0: चारों ओर सुख और शांति है।
1: हाँ बेटा सच, इसी कारण तो अयोध्या भी तीर्थ के ही समान है।
0: हाँ माँ ठीक कहती हो। अच्छा माँ, बहुत रात हो चुकी है, आज इसी वन में वृक्ष के नीचे विश्राम करते हैं, कल सूर्य उदय होते ही चल देंगे।
2: ठीक है बेटा, किंतु बहुत प्यास लग रही है बेटा।
1: हाँ, प्यास तो मुझे भी लगी है।
0: अच्छा तो मैं भी जल लेकर आता हूँ। वो बह रही सरयू नदी पास ही तो है।
2: अच्छा तो जाओ बेटा श्रवण, किंतु शीघ्र लौट आना।
1: हाँ बेटा, अधिक देर होने से हमें चिंता होने लगती है।
0: आप चिंता ना करें, मैं जल लेकर शीघ्र ही आऊंगा।

0: कितना घना अंधकार है। अरे ये कैसा शब्द हो रहा है? लगता है कोई मृग जल पी रहा है। ठीक है, मैं अभी ध्वनि की दिशा में बाण चलाता हूं। ये जीव भी दशरथ के बाण से आज बचकर न जा सकेगा। ओह, ये तो किसी बालक की चीख थी। कहीं मैंने नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मुझे अभी जाना चाहिए। तुम्हें ये मान लगा? ओह, ये मैंने क्या किया? उठो, देखो, मैं दशरथ हूँ। दशरथ,
1: आप अयोध्या के राजा दशरथ? मैं धन्य हूँ आपके दर्शन पाकर।
0: तुम चलो मेरे साथ, मैं तुरंत राज वैद्य से तुम्हारा।
1: आप मेरी चिंता ना करें। वहाँ उस और वृक्ष के नीचे मेरे बूढ़े अंधे माता पिता मेरी प्रतीक्षा कर रहे होंगे।
0: अच्छा,
1: आप उन्हें ही जल पिला दें, वो बहुत प्यासे हैं।
0: क्यों नहीं, किंतु बेटा तुम बहुत घायल हो।
1: पहले आप मेरे माता पिता को जल पिला दीजिए। और हाँ, जब तक वे जल ना पी लें, आप उन्हें मेरे घायल होने की सूचना ना दें।
0: क्यों?
1: नहीं तो वो जल भी ना पिएंगे और मेरे वियोग में प्राण त्याग देंगे।
0: परंतु तुम्हारी
1: राजन मेरी इच्छा पूरी करेंगे ना?
0: किंतु
1: पिताजी, मैं जा रहा हूँ।
0: बालक,
1: मुझे क्षमा करना पिताजी। मैं आपको मार्ग में ही छोड़कर जा रहा हूँ।
0: बालक, ये मैंने क्या किया? लेकिन बालक की अंतिम इच्छा पूरी करनी ही होगी।
2: लगता है श्रवण आ गया।
3: हाँ, पदचाप सुनाई दे रही है।
2: बेटा श्रवण, तू आ गया?
3: बहुत देर कर दी बेटा, हमें तो चिंता होने लगी थी।
2: श्रवण, क्या बात है बेटा, तू बोलता क्यों नहीं? श्रवण।
0: माँ,
2: कौन है आप?
0: मैं हूँ पापी दशरथ।
3: दशरथ?
2: राजा दशरथ? कहाँ आसन दूँ आपको, आप बैठिए। न जाने श्रवण भी अब तक क्यों नहीं आया, जल लेने ही तो गया था।
0: तो उस बालक का नाम श्रवण था। लीजिए, मैं आपके लिए जल लाया हूँ।
2: क्या आप मेरे बेटे से मिले थे?
3: वो स्वयं क्यों नहीं आया?
2: क्या हुआ उसे?
0: सब बताऊंगा, पहले आप जल पी लीजिए।
3: नहीं, पहले हमें बताइए हमारा बेटा कहाँ है।
2: सौगंध है आपको, बताइए ना।
0: उसे कैसे कहूं?
2: क्यों, क्या हुआ मेरे लाल को?
0: उसे मेरा बाण लग गया और मृत्यु हो गई।
3: नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वो हमें छोड़कर नहीं जा सकता।
2: नहीं श्रवण, शरण मेरे लाल दशरथ, हमारा शरण लाल, हमारे प्राण ले लो, किंतु बेटा लौटा दो हमारा।
0: बेटा, आप मुझे ही शरण समझिए माँ, मैं आपकी सेवा करूंगा, आपकी हर इच्छा पूरी करूंगा, आप मुझे अपना ही बेटा समझिए।
2: नहीं नहीं, तुम शरण नहीं हो सकते, वो इतना निर्दय नहीं था।
0: माँ,
3: हम अंधों का तो वही उजाला था, एक ही सहारा तो था हमारा, वो तुमने छीन लिया।
0: बाबा,
2: दशरथ, तुम क्या जानो पुत्र शोक क्या होता है, यदि तुम्हारा पुत्र तुम्हें छोड़ जाएगा और तुम भी हमारी भांति तड़पोगे, तब तुम्हें पता चलेगा माता पिता की पीड़ा क्या होती है, बेटे का वियोग क्या होता है।
0: मुझे क्षमा कर दो माँ। बाबा, आप ही मुझे क्षमा कर दें, अनजाने में मुझसे भूल हो गई, मुझे क्षमा कर दो। आप मेरे साथ राजमहल चलिए, आपको कोई कष्ट नहीं होगा।
3: जाओ दशरथ, जाओ, हमारी चिंता न करो, हमें यही रहने दो, यही रहने दो, यही रहने दो।

0: अभी आपने सुना कार्यक्रम श्रवण कुमार। श्रोताओं, यदि हम पूछें कि इन दिनों दुनिया की सबसे बड़ी समस्या क्या है, तो आपका जवाब क्या होगा?
1: मुझे लगता है कि आपका जवाब होगा जलवायु परिवर्तन।
0: जी,
1: लेकिन एक प्रश्न है कि जलवायु परिवर्तन भला क्यों होते हैं? इसके बहुत से प्राकृतिक और मानवीय कारण हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कारण है ऊर्जा प्राप्त करने के लिए प्रकृति से छेड़छाड़।
0: जी हाँ श्रोताओं, ऊर्जा बचाना हमारा सबसे महत्वपूर्ण लक्ष्य होना चाहिए। तो आइए सुनते हैं इसी क्रम में कार्यक्रम आओ करें रसोई गैस की बचत।
2: अरे बिन्नी।
3: हाँ?
2: अरे बिट्टू कहाँ हो भाई, आओ जल्दी आओ, जल्दी आओ।
3: क्या पापा?
2: रसोई में आओ, जल्दी आओ। शाबाश,
3: आया।
2: हाँ, आज मम्मी का रेस्ट है और हमारा कुकिंग डे है।
4: अरे वाह, नया चूल्हा।
5: हाँ बिन्नी, ये ISI मार्क चूल्हा है।
2: हाँ बच्चों, बिल्कुल। और हाँ, पता है आजकल तो स्टार रेटिंग वाले चूल्हे भी आते हैं।
5: स्टार रेटिंग?
2: हाँ, जितने स्टार ज्यादा उतनी बचत ज्यादा।
5: ओ
2: हाँ हाँ, तो बच्चों मेरा लाइटर कहाँ गया?
4: अरे अरे, अभी नहीं
2: है?
4: पहले तैयारी तो कर लें।
2: हाँ बिल्कुल सही कहा तुमने बिन्नी, पहले करते हैं तैयारी। क्यों बिट्टू?
5: हाँ पापा, दाल चावल को पहले ये ऐसे भिगो लेते हैं। हा?
4: हाँ, और पनीर को भी फ्रिज से निकाल कर बाहर रख देते हैं।
2: बिल्कुल हाँ। सही कहा तुमने बिन्नी, और मैं फटाफट सब्जियां काट लेता हूँ। लो भाई, हो गई सारी तैयारी।
6: लगे रहो, बहुत बढ़िया।
4: बिट्टू, दाल और चावल को कुकर में पकाते हैं। और पानी भी जरा हिसाब से, ना कम ना ज्यादा।
5: इससे खाना भी जल्दी बनेगा और गैस भी बचेगी।
2: ये पतीला ले लूं, इसको यहाँ रख दूं।
4: अरे अरे अरे,
2: हाँ? क्या हुआ?
4: वो बड़ा पतीला नहीं, ये छोटे वाला।
2: अच्छा अच्छा अच्छा अच्छा, ये वाला। ठीक है ठीक है।
5: पर क्यों?
4: जरूरत ना हो तो बड़ा बर्तन इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।
2: ठीक कहा।
4: अब इस पर ढक्कन ढक देते हैं, खाना जल्दी पकेगा।
2: वाह क्या बात है।
5: भाप निकलने लगी है, अब आंच कम कर देते हैं। ये
4: बिल्कुल ठीक।

0: लो भाई रसोई भी साफ हो गई।
1: गैस बचाए बचत बढ़ाए जीवन को खुशहाल बनाए।
2: आओ करें रसोई गैस की बचत। अभी आप सुन रहे थे ये कार्यक्रम और श्रोताओं अब इसी के साथ हमारा आज का उमंग प्रसारण यहीं समाप्त होता है। तो अब अपने मित्र अजीत
3: और विमलेश को तकनीकी टीम के साथ आज्ञा दीजिए। नमस्कार।
4: उमंग उमंग उमंग उमंग।
5: हाय मैं हूँ विदिता बाग और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना रेडियो स्टेशन।
4: सुनो।

0: आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सेहत से ही लाभ कही और मैं हूं आपके साथ शशि कपूर। जैसा कि आप जानते हैं सुनो शारदा 90.8 FM और स्मार्ट मिलकर के एक स्वास्थ्य जन जागरूकता मुहिम चला रहे हैं जिसका नाम है सेहत से ही लाभ कही, ताकि हमारे जो समुदाय के लोग हैं वो सब जागरूक रहें, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें और अपने देश की तरक्की में अपना योगदान दें। और आप सभी जानते हैं इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में बीमारियां भी होती हैं, तो कौन कौन सी चीज़ें हमें खाने चाहिए, कैसे बचना चाहिए, क्या बीमारियां हो सकती हैं, तो इन सब बातों की जानकारी के लिए आज हमारे साथ में हैं डॉक्टर आर के शर्मा जी, उनसे हम बात करेंगे। तो सबसे पहले डॉक्टर साहब आपका कार्यक्रम में स्वागत है।
1: धन्यवाद
0: डॉक्टर साहब। गर्मी का मौसम है, गर्मी पड़ रही है, चिलचिलाती धूप है, तो किस तरह से लोग अपना इस मौसम में ध्यान रखें?
1: इस मौसम में सबसे पहले ये है कि धूप में काम कम से कम करें, सुबह शाम ज़्यादा करें, धूप में सिर पर कपड़ा रख कर चलें, पानी बोतल या साथ में इलेक्ट्रॉल ORS या जो भी चीज़ अवेलेबिलिटी हो, या घर से अपने एक छाछ बेलपत्थर का जूस या जो भी जूस लेकर चल सकते हैं वो लेकर चलें साथ में, ताकि बीच में कहीं उसे पी सकें।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, गर्मी हो या मौसम खराब हो, जो काम करने वाले हैं उनको तो अपना काम करना ही है, जाना ही है,
1: काम बहुत जरूरी है, काम बिना तो कुछ नहीं है।
0: तो काम पर जो लोग जाते हैं, खास करके जो शारीरिक परिश्रम करते हैं, तो उनको कैसे अपना ध्यान रखना चाहिए?
1: उनको यही सिर पर कपड़ा रखे हर समय
0: जी।
1: दूसरा ये कि कम से कम जो है मतलब ऐसे ही समझ लीजिए, देखें बहुत ज्यादा चिलचिलाती धूप है, 2 घंटे का टाइम, 1 बजे से लेकर 3 बजे तक, उस समय थोड़ा सा जो है कम काम करें या रेस्ट करें,
0: और
1: सुबह बहुत जल्दी से काम कर सकते हैं, शाम को देर तक काम कर सकते हैं, उस समय थोड़ा ठंड रहती है, फेरी में जो है सब ज़्यादा परेशानी जाती है।
0: तो आपके कहने का मतलब ये है कि जो काम है उसको, जो मौसम ठंडा ठंडा होता है थोड़ा, तो उसी में निपटा दें, और जो धूप होती है
1: उसमें आराम करें,
0: उसमें आराम
1: वहाँ भी जगह मिल जाए, अपना लेबर है तो अपना कहीं पेड़ है कुछ है या शेड है, कहीं भी किसी तरह का जगह है उनको वहाँ पर अपना।
0: तो डॉक्टर साहब ये तो बात रही कि धूप से गर्मी से कैसे अपना बचाव कर सकते हैं, अब ये जो मौसम होता है ना बीमारियां भी हो जाती हैं, तो कौन कौन सी बीमारियां ज़्यादा होती हैं इस मौसम में?
1: खास तौर से जो है आपको एक तो उल्टी दस्त आते हैं, दूसरा बाजार का खाना पीना कहीं खा लिया, कोल्ड ड्रिंक पी ली तो गला खराब हो जाता है, पेट खराब हो जाता है, उससे लूज मोशन हो जाते हैं, तो बचाव करें इससे। बाजार का खाना कम से कम खाएं, ना खाएं तो अच्छा है, और यदि बहुत ज़्यादा मजबूरी है तो बहुत हल्का या कम खाएं।
0: तो जैसे आपने बताया कि दस्त की बमीारी हो जाती है, उल्टी की बीमारियां भी हो जाती हैं,
1: हीट स्ट्रोक
0: हो जाता है,
1: बुखार आ जाता है,
0: बुखार भी आ जाता है, अब बच्चों में जैसे डायरिया भी होता है, तो इसके क्या कुछ कारण हैं?
1: डायरिया का भी एक मेन कारण है धूप में, यदि घर में रहते तो नहीं होता इतना, लेकिन बाहर के आना जाना रखते हैं औरतें हैं बच्चों को लेकर, कई रिश्तेदारी में आना जाना कर रही हैं और धूप में गर्मी में है, तो उनको उल्टी दस्त के ज़्यादा चांसेस है।
0: तो जिन बच्चों को मान लीजिए डायरिया हो गया है, कभी ऐसा देखा जाता है उल्टी भी है और उसको
1: लूज मोशन भी है,
0: तो किस तरह से इस बीमारी पर काबू पाया जा सकता है?
1: सबसे पहले तो उनको यही है कि थोड़ा सा उसको कोई उल्टी के लिए सबसे पहले जाना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी जब तक नहीं रुकेगी दस्त वाली दवा भी नहीं पचेगी, तो सबसे पहले उसको उल्टी कंट्रोल करने के लिए लिक्विड आता है उल्टी के रोकने के लिए, उसके बाद ORS का पानी पिलाइए उसको, ORS का लिक्विड भी आता है रेडीमेड बना हुआ, और ORS का जो पैकेट घोल के बना सकते हैं। तीसरा फिर उसको दस्त की दवा दें, कोई इन्फेक्शन है तो उसके लिए एंटीबायोटिक देनी पड़ सकती है, इन्फेक्शन नहीं है पेट में ज़्यादा तो खाली जो है लूज मोशन के लिए कोई टैबलेट वगैरह या लिक्विड नहीं दे सकते।
0: बिल्कुल डॉक्टर साहब, कई बार ऐसा होता है कि बहुत दूर दराज में कोई रहते हैं, मान लीजिए रात में ये दिक्कत हो गई, अब वो डॉक्टर साहब के पास जा नहीं सकता उस दौरान, तो उस दौरान वो क्या कुछ उपाय अपना सकते हैं?
1: घरेलू उपाय हैं, नमक चीनी का घोल ले सकते हैं, ORS तो लगभग गाँव आजकल सब जगह मिल जाता है, क्योंकि आशा आंगनबाड़ी के सबके पास में ORS रहता है, तो ORS का पानी तो पिला ही दें कम से कम, यदि और दवा भी नहीं मिलती है कोई, और दवा मिल जाए आप, क्योंकि अब तो स्टोर भी काफ़ी लगभग हर गांव में एक आध कहीं ना कहीं स्टोर है, तो वहाँ से उल्टी की दवा तो ले ही सकते हैं।
0: तो डॉक्टर साहब, जैसे अभी आप ORS की सिफारिश बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा बताइए क्या चीज़ है ORS?
1: ORS एक जीवन रक्षक घोल है
0: जी,
1: और खाली दस्त उल्टी के लिए नहीं है ये, किसी भी हीट स्ट्रोक में गर्मी के समय में, या आपको देख रहे हैं कि हमें थकान भी हो रही है कहीं पर, कमजोरी महसूस कर रहे हैं, तब भी ORS का घोल जो होता है काम।
0: तो कहने का मतलब आपका यही हो गया कि अगर मान लीजिए कोई हमें बीमारी भी नहीं है गर्मी के मौसम वाली,
1: तब भी उसको ले सकते हैं,
0: तब भी हम उसको ले सकते हैं। अच्छा, हम जानना चाहेंगे कि अगर कोई अपने आप को स्वस्थ रखना चाहता है कि भाई हम अपने स्वस्थ रहें, तो किस तरह से उसकी दिनचर्या होनी चाहिए?
1: दिनचर्या तो यही कि सुबह जल्दी उठें
0: जी,
1: कुछ एक्सरसाइज व्यायाम अपना करें, काम भी करें लेकिन व्यायाम सबसे पहले है, ताकि इससे इसमें फुर्ती आ जाए। दूसरा, कम खाना और गम खाना, ये दोनों चीज़ साधन ऐसी है जिससे हमेशा स्वस्थ रहोगे, मन भी शांत रहेगा, और शरीर भी ठीक रहेगा।
0: बिल्कुल, बहुत ही अच्छी बात आपने कही है, जो कार्यक्रम चल रहा है सेहत सही लाभ कही, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे?
1: बहुत अच्छा है प्रोग्राम आपका ये, और इस चीज़ को जागरूकता के लिए जगह जगह इसको सुनाया जाए, बताया जाए, जो भी अच्छे आपके जो कहीं पे इस तरह की क्लिप मिलती है तो आपको जो बाहर उसको पब्लिक में सुनाया जाए।
0: आखिर में हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोता हैं उनके लिए क्या संदेश देंगे?
1: गर्मी से बचें, थोड़ा सा तत्म हो सकता है जितना हो सकता है, ये नहीं कि काम बंद कर दें, बाहर का बाजार का खाना कम से कम खाएं, बहुत ही मजबूरी में बाहर का खाना खाएं, घरेलू लिक्विड जरूर लें, मट्ठा हो, कोई मैंगो का जो आजकल जैसे पना बना लेते हैं वो ले लो, बेल पत्थर का जूस ले लो, ORS का पानी ले लो, ये घर से लेके चलें कुछ, और घर से एक बोतल पानी भी लेके चलें उसमें।
0: बिल्कुल डॉक्टर RK शर्मा जी, बहुत ही अच्छी जानकारी आपने दी है रेडियो के माध्यम से, और हमारे जो सुनने वाले हैं समुदाय के लोग हैं ज़रूर आपकी बातों का ध्यान रखेंगे, और जो भी आपने बातें बताई हैं उनको अपने जीवन में अपनाएंगे। हमसे बात करने के लिए और इतनी अच्छी जानकारी देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।

भाई मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 एफएम सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 एफएम सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 एफएम।

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: नमस्कार, मेरा नाम राजेश कुमार है। मैं आज आपसे एक टीबी की बात करने आया हूँ। यदि आपको दो हफ्ते से ज्यादा खांसी, रात का पसीना, हल्का बुखार, वजन का कम होना या भूख में कमी महसूस हो, तो जल्द से जल्द अपनी बलगम की जांच कराइए, क्योंकि ये टीबी के लक्षण हो सकते हैं। घबराइए नहीं, इसका 6 से 8 महीने का पूरा इलाज है और देश के सभी सरकारी स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच और इलाज के कोई पैसे नहीं लगेंगे। आइए मिलकर भारत को टीबी मुक्त बनाएं।
2: अधिक जानकारी के लिए 1800-11-6666 पर संपर्क करें।
3: टीबी हारेगा, देश जीतेगा।
4: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए, जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना, दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब। मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली NCR में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं। और हमें क्या करना है, क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को सूचित करने के लिए, तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छूकर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। सुनो।

0: अभियान।
1: इस अभियान का नारा, टीबी संबंधित भेदभाव को मिटाओ, देश को टीबी मुक्त बनाओ। एक्टिव टीबी रोगी के करीबी संपर्क में आने से टीबी फैल सकता है, लेकिन नियमित उपचार शुरू होते ही टीबी रोगी से दूसरों में बीमारी का संक्रमण बंद हो जाता है। यहाँ तक कि सिर्फ हाथ मिलाने या टीबी रोगी के साथ समय बिताने से टीबी नहीं फैलता। तो बताइए आप, जब टीबी की जांच और उपचार है आसान, तो डर या भेदभाव की कैसी बात। ना शर्माना, ना घबराना, टीबी की जांच करवाना। टीबी के लक्षण होने पर तुरंत अपने नजदीकी निजी या सरकारी अस्पताल या आयुष्मान आरोग्य मंदिर में जाएं। इस संदेश को औरों तक पहुंचाकर आइए टीबी को जड़ से मिटाएं।
2: हमें इन मरीजों को ज्यादा से ज्यादा जागरूक करने पर भी उतना ही ध्यान देना होगा।
3: डाउनलोड करें टीबी आरोग्य साथी ऐप,
4: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जनहित में जारी।
5: हाय, मैं हूं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और आप सुन रहे हैं सुनो शारदा 90.8 FM ग्रेटर नोएडा का अपना।

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.

धरती मेरी धरती लीजिए प्रस्तुत है विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी हवा में जल। श्रोताओं, पिछले भाग में आपने वातावरण के बारे में जाना। हमारी धरती हवा यानी वात का आवरण ओढ़े है। वायुमंडल धरती पर गर्माहट बनाए रखता है। सूरज की पराबैंगनी किरणें और अंतरिक्ष से गिरने वाले उल्काओं से हमारी रक्षा करता है और वायुमंडल की अलग अलग परतें किस प्रकार अपना अपना काम करती हैं। तो लीजिए आगे सुनिए विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी हवा में जल।

0: वसुधा
1: जी।
0: वसुधा वसुधा, अरे क्यों भाई, छुट्टी का दिन होने से आज भोजन की भी छुट्टी है क्या?
1: नहीं जी, भोजन से छुट्टी कैसे हो सकती है भला। हाँ, भोजन में देरी जरूर हो सकती है।
0: देरी? अरे भाई, अब और कितनी देर है खाना तैयार होने में। मेरे पेट में तो चूहे टुकुर टुकुर टुकुर कूदने शुरू हो गए हैं।
1: बस आप बच्चों को भी खाने के लिए बुला ही लीजिए, तब तक खाना भी तैयार हो जाएगा।
0: अरे हाँ हाँ, अभी बुलाता हूँ मैं। सृष्टि, मानव, खाना खाने के लिए आओ जल्दी भाई।
2: लो पापा, मैं तो आ गई।
0: हाँ।
2: पापा, ये कार्टून शो देखकर आता हूँ, आप लोग खाना शुरू कीजिए।
1: अरे मानव, सुबह से ही तो टीवी देख रहा है, खाना तो टाइम पर खा ले।
0: अरे हाँ मानव, खाना समय पर खाना चाहिए। चलो जल्दी आओ खाने के लिए, कार्टून शो तो दिन भर चलते रहेंगे।
2: क्या पापा, एक संडे का दिन ही तो मिलता है मुझे पसंदीदा कार्टून शो देखने के लिए, उसमें भी आप मुझे टीवी नहीं देखने देते हो।
0: बेटा पहले खाना खा ले, फिर टीवी देखते रहना। चलो आओ जल्दी आओ।
2: अरे आप शुरू तो कीजिए, मैं अभी आता हूँ।
1: हाँ, आज तो खाने की बड़ी अच्छी महक आ रही है।
0: अरे सृष्टि बेटा, महक तो आएगी ही, आज तुम्हारी मम्मी ने रविवार का स्पेशल खाना जो बनाया है।
1: अच्छा, तो आज मम्मी ने खीर बनाई है, क्यों मम्मी?
3: हाँ, तुम सभी को खीर बहुत अच्छी जो लगती है ना, इसीलिए।
1: खीर का सबसे ज्यादा दीवाना तो मानव है।
2: खीर? अरे वाह मम्मी, मैंने सुना है कि आज खीर बनी है।
1: लो आ गया मानव।
2: मम्मी खाना तैयार है ना, मुझे बहुत जोर से भूख लगी है।
3: हाँ बेटा, तू हाथ पैर धोकर आ, तब तक मैं खाना लगाती हूँ।
1: मम्मी खाने के लिए विवेक भैया का इंतजार कर लेते हैं ना, सभी साथ में खाना खाएंगे।
3: पर विवेक तो 3-4 बजे तक आएगा ना।
0: हाँ सृष्टि, आज विवेक के आने का कोई समय निश्चित नहीं है। उसके दोस्त वरुण के यहाँ हैंडपंप लग रहा है, अरे वो तो काम पूरा होने पर ही आएगा।
2: मम्मी आज खीर बनाई है ना?
3: खीर के साथ पूरी भी है माना।
2: अरे वाह, मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है, खीर और पूरी।
1: अच्छा मानव, यहाँ तेरे मुंह में पानी आ रहा है और उधर नल से पानी बह रहा है।
0: मानव फिर नल खुला छोड़ आया। तुम्हें कितनी बार समझाया है नल को ठीक से बंद करके आया करो।
1: ना जाने इसे किस बात की जल्दी रहती है कि नल अच्छे से बंद ही नहीं करता।
2: दीदी मैं तो नल बंद करके आया था।
1: नल बंद करके तो आया था, मगर आधा, जिससे बहुत पानी बह रहा था।
0: बेटा मानव, लोग तो बूंद बूंद से घड़ा भरते हैं, और एक हमारा मानव है कि पानी की कीमत समझता ही नहीं, जब देखो नल ठीक से बंद ही नहीं करता।
3: अरे खाना लगा दिया है, खाना खा लो जल्दी से, बहस बाद में कर लेना। चलो बैठो मानव।
0: लो भाई लो। वाह, वेरी गुड।
2: क्या खीर बनाई मम्मी, वाह। मम्मी आज तो खीर का रंग पीला दिख रहा है।
1: पीला नहीं मानव, केसरिया।
3: मानव, खीर में केसर डालने से खीर का रंग केसरिया हो गया है, समझा?
0: क्या बात है वसुधा, आज तो केसरिया खीर बहुत ही स्वादिष्ट लग रही है भाई।
3: खीर में सूखे मेवे जो मिला है जी।
0: वसुधा इसी बात पर ठंडा पानी पिला दो बस।
2: और मम्मी मुझे भी पानी का दूसरा गिलास देना।
3: दूसरा गिलास? क्यों, क्या हो गया?
2: वो इस गिलास की बाहरी परत गीली है, जरूर इस गिलास में बारीक छेद होंगे।
1: छेद नहीं है मानव।
2: छेद नहीं है तो फिर गिलास बाहर से गीला क्यों हो गया?
0: अरे मानव ये तो हमारे आसपास की हवा में मौजूद पानी है।
2: अरे ये क्या कह रहे हैं आप, हमारे आसपास की हवा में पानी मौजूद है?
1: हाँ मानव, गिलास की बाहरी सतह पर दिखाई देने वाला ये पानी वातावरण में उपस्थित नमी ही तो है।
0: मानव, और वातावरण की इस नमी को जल वाष्प या आर्द्रता भी कहते हैं।
2: पापा मुझे तो आपकी बात समझ में नहीं आती है।
1: पापा जब तक मानव का ध्यान खीर खाने में है, तब तक इसे कुछ समझ नहीं आने वाला।
2: दीदी क्या करूं, मुझे खीर इतनी अच्छी लगती है कि खीर खाते हुए मुझे दूसरी बातें समझ ही नहीं आती।
0: तो पहले खीर खाने
3: ना। अच्छी बात है ना मानव बेटा, खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ही ध्यान देना चाहिए। गुड बॉय।
0: चलो चलो फिनिश करो जल्दी से, मेरा खाना तो हो गया, मैं तो चला टहलने।
2: मम्मी पेट तो मेरा भी भर गया पर मन नहीं भरा।
1: तेरा तो मन कभी नहीं भरेगा।
2: क्या दीदी अभी।

0: अरे मानव, देखना तो कौन आया।
1: मम्मी, जरूर विवेक भैया होंगे।
2: भैया आप बहुत लेट हो गए आने में।
0: अरे विवेक, तूने तो 2 बजे का आने का बोला था, अब तो 5 बजने का।
3: अरे मम्मी, वरुण के यहाँ हैंडपंप का काम 4 बजे खत्म हुआ, इसीलिए लेट हो गया।
4: भैया तो क्या आप हैंडपंप लगा रहे थे?
3: नहीं मानव, दरअसल वरुण के मम्मी पापा आज सुबह ही किसी रिश्तेदार के यहाँ चले गए थे, इसलिए अकेले होने की वजह से वरुण ने मुझे बुला लिया।
4: भैया तो क्या वरुण को अकेले में डर लगता है?
3: अरे मानव, वरुण और मुझे एक प्रोजेक्ट भी कंप्लीट करना था, इसलिए मैं वरुण के घर गया था।
0: विवेक खाना खा ले बेटा, चल।
3: मम्मी खाना तो मैंने वरुण के यहाँ खा लिया था। हाँ पानी पीऊंगा, बड़ी प्यास लगी है।
0: अच्छा अच्छा, मानव विवेक भैया के लिए पानी लेकर आओ।
4: मैं
0: हाँ, तुम जाओ।
4: जी।
3: अच्छा सृष्टि, पापा कहाँ हैं?
4: भैया पापा आसन लगा रहे हैं।
3: आसन इस समय? पापा तो प्राणायाम और आसन सुबह करते हैं।
4: भैया मैं योग आसनों की नहीं बल्कि निद्र आसन की बात कर रही हूँ।
3: सृष्टि तुम भी ना सीधे सीधे नहीं कह सकती थी, पापा सो रहे हैं।
4: हाँ भैया, दुनिया गोल है इसीलिए कभी कभी गोल मोल बातें भी कर लेनी चाहिए।
3: बिल्कुल।
4: भैया ये लो पानी। और हम सब के लिए मम्मी चाय लेकर पधार रही है।
0: लो बच्चों, गर्मा गर्म चाय।
3: लाओ मम्मी।
4: मुझे इस वाले कप में चाहिए।
0: इसी में लो।
3: क्या बढ़िया चाय बनाई मम्मी, पर आज वरुण ने बहुत अच्छी चाय बनाई थी।
4: अच्छी मतलब बिना पानी वाली है ना विवेक भैया?
3: हाँ सृष्टि, वरुण ने चाय में तुलसी के पत्ते, अदरक और इलायची भी डाली थी, और हाँ दूध में पानी भी नहीं मिलाया था।
0: अरे पानी से मुझे ध्यान आया, हे मानव तू किचन का नल ठीक से बंद करके नहीं आया था, नल से पानी बह रहा था।
3: मानव जल की बूंद बूंद अनमोल है, इसलिए हमेशा नल को सही से बंद करने की आदत डालो।
4: अरे आप सभी लोग पानी को लेकर इतना परेशान क्यों होते हो? कहीं मेरी टीचर बता रही थी कि धरती के लगभग 3/4 भाग में पानी है,
1: लेकिन मानव इस जल की 97% मात्रा समुद्री पानी के रूप में है, जो खारा होने के कारण हमारे पीने व खेतों में सिंचाई के काम में उपयोग नहीं किया जा सकता।
3: और बाकी 3% जल का भी अधिकतर भाग ग्लेशियरों में बर्फ के रूप में जमा है।
4: भैया खारा जल तो नहीं, पर हाँ बर्फ में जरूर खा सकता हूँ।
0: बच्चों चाहे दुनिया में जल की कितनी भी मात्रा हो, पर हमारी कॉलोनी में तो नल एक दिन छोड़कर ही आता है। पानी की जरूरत पड़ने पर बेचारे हमारे विवेक को पड़ोस के हैंडपंप से पानी लाना पड़ता है।
3: क्या मम्मी?
4: मम्मी खाना खाते समय दीदी कुछ हवा में मौजूद नमी की बातें कर रही थी ना, तो क्यों ना हम उसी हवा के पानी से टंकी को भर लें?
1: मानव ये इतना आसान होता तो हमारे देश में लाखों लोग सुबह से शाम तक पानी के लिए ना भटकते होते।
0: बिल्कुल, पहाड़ों और रेगिस्तानों में तो महिलाओं का आधा जीवन सिर्फ पीने का पानी लाने में ही निकल जाता है।
3: मानव मम्मी सही कह रही हैं। शुद्ध जल के लिए हमारे देश में लाखों लोगों को मीलों भटकना पड़ता है।
1: और मानव रही हवा में नमी की बात, तो वो तो सतही जल के सूर्य की गर्मी से बनने वाली भाप है। पानी भाप बनकर हवा में मिलता रहता है।
4: अच्छा, तो इसीलिए छतों पर रखे पानी की टंकियों में ढक्कन लगाए जाते हैं ताकि उनका पानी भाप बनकर ना उड़े।
3: अब मानव इसमें कुछ सच्चाई तो है, पर टंकियों को इसलिए ढक दिया जाता है ताकि पानी में कचरा ना मिले।
4: भैया मम्मी भी तो हवा में नमी बढ़ाती है, मम्मी जब चाय बनाती है तब चाय की पतीली से भी तो भाप उड़ती दिखती है।
1: माँ ही नहीं, हम सब हवा में नमी बढ़ाते हैं।
3: हाँ मानव, हमारी श्वसन क्रिया यानी जो सांस हम लेते और छोड़ते हैं उससे भी तो हवा में नमी आती है।
4: भैया ठंड के दिनों में मेरे मुंह से भी तो भाप यानी नमी निकलती है।
3: हाँ मानव तू सही कह रहा है।
1: तो मानव समझे कि जल स्रोतों जैसे समुद्र, नदियों व झीलों से सूरज की गर्मी द्वारा जल भाप में बदलता है,
3: और ये क्रिया वाष्पन कहलाती है। कुछ समझा?
1: ये भाप या नमी हवा की आर्द्रता यानी उमस को बढ़ाती है।
4: विवेक भैया फिर तो समाचार पत्रों, रेडियो और टेलीविजन में बेबात ही ग्लोबल वार्मिंग से समुद्र के जलस्तर बढ़ने का हल्ला मचाया जाता है। यदि इसी प्रकार जल भाप बनकर हवा में मिलता रहेगा तो बजाय समुद्री जल बढ़ने के, समुद्र का अधिकतर पानी हवा में नमी के रूप में इकट्ठा होता रहेगा।
3: ऐसा नहीं है मानव, धरती पर पानी एक जल चक्र के माध्यम से समुद्र से हवा में और हवा से पुनः समुद्र में मिलता रहता है।
4: ये तो ऐसा ही हुआ कि पानी को फ्रिज में रखकर बर्फ जमाया और फिर उसी बर्फ को शरबत में डाला तो वो पानी में बदल गया, है ना?
0: हाँ मानव, दुनिया में अनेक घटनाएं नियमित होती हैं, जैसे पृथ्वी का अपनी धुरी पर घूमना, सूरज का रोज उदय होना, अस्त होना,
2: और जैसे मेरा रोज रोज स्कूल जाना।
4: मानव, तुझे तो एक दिन रविवार की छुट्टी भी मिल जाती है।
3: लेकिन पृथ्वी पर जल चक्र द्वारा निरंतर जल से भाप बनती रहती है।
4: लेकिन भैया, हमें तो कार्य करने के लिए खाना चाहिए होता है, फिर धरती पर जल चक्र को भी तो कहीं से ऊर्जा मिलती है ना?
1: मानव, तेरा काम खाने से कहाँ चलता है, तुझे तो खीर भी चाहिए होती है।
3: और साथ में पूरी भी। मानव, बात तो तेरी बिल्कुल सही है, सभी को अपना कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। ऐसे ही जल चक्र को भी सूर्य की ऊर्जा ही चलाती है। सूरज की गर्मी से ही पानी की विशाल मात्रा जल चक्र द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में बदलती रहती है।
1: हाँ विवेक भैया, हमारे आसपास जल तीन रूपों में पाया जाता है, ठोस, द्रव व गैस।
3: बिल्कुल ठीक सृष्टि, जल का द्रव रूप यानी पानी और ठोस रूप यानी बर्फ और गैस मतलब भाप।
4: भैया, मुझे तो पानी का ठोस रूप यानी बर्फ अच्छा लगता है, गर्मी में राहत देने वाला, ठंडा सा।
1: मानव, जब तुझे सर्दी लगती है तब बर्फ याद नहीं आती?
0: तब मैं हूँ ना अपने बेटे को भाप देने के लिए। मेरा
5: किसे भाप दी जा रही है?
0: किसी को नहीं, अपने मानव के सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं यहाँ। आप बैठिए, मैं आपके लिए चाय लेकर आती हूँ।
5: अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। अरे विवेक बेटा, तू कब आया वरुण के यहाँ से?
3: बस अभी।
5: उनके यहाँ हैंडपंप से पानी निकला या नहीं?
3: निकला है बाबा।
5: गुड।
4: पापा, आज तो छुट्टी की शाम का मजा पार्क में चलकर लिया जाए।
1: हाँ, मेरी भी बाहर घूमने की बहुत इच्छा हो रही है पापा।
5: वेल, तो बच्चों अपनी मम्मी से भी पूछ लो।
0: ये लीजिए चाय। बच्चों, तुम अपने पापा के साथ जाओ, आज घर पर मेरी सहेली पूनम आ रही है, मुझे उससे बहुत सारी बातें करनी है।
3: बढ़िया बात है मम्मी, आप अपनी सहेली से बातचीत करिए, मैं और पापा और सृष्टि और मानव पार्क में जाते हैं, 8 बजे तक लौट आएंगे।
5: मैं आप लोग चलो, मैं चाय खत्म करके आता हूँ।
0: मानव का ध्यान रखना सृष्टि।

0: लो भाई बात आ गया।
1: दीदी उधर देखो कितने सुंदर गुलाब के फूल लगे हैं ना। वो गुलाब के फूल कई रंगों के हैं देखो।
2: भाई मुझे तो चाचा नेहरू की तरह लाल रंग का गुलाब पसंद है।
1: पापा घर पर तो आप गमलों को रोज पानी डालते हैं, फिर वहाँ इतने सुंदर और बड़े फूल क्यों नहीं होते?
3: बेटा पौधों को पानी के साथ पोषक तत्व भी पर्याप्त मात्रा में मिलने चाहिए ना।
1: पर पापा आप तो गमलों में खाद भी डालते हो, फिर भी फूल बड़े क्यों नहीं होते?
4: ऐसा इसलिए मानव क्योंकि हमने इन फूलों की किस्म ही नहीं लगा रखी, समझे? और वैसे भी यहाँ माली है रोज रोज की देखभाल के लिए। पापा तो सिर्फ शनिवार को ही अपने गमले देख पाते हैं।
2: और मानव यहाँ फूल छूने या तोड़ने पर माली पिटाई भी कर देता है।
1: भैया क्या यहाँ भी माली रोज पौधों को पानी देते हैं?
4: और क्या मानव, वरना पौधे मर नहीं जाएंगे।
1: पर दीदी ये सारा पानी तो मिट्टी सोख लेती है, फिर पौधों को पानी कहाँ से मिलता है?
2: अरे मानव पौधे मिट्टी से ही जड़ों द्वारा पानी चूस लेते हैं और साथ ही पोषक तत्व भी।
1: फिर पौधों से पानी कहाँ जाता है?
3: अरे बेटा पौधे मिट्टी से पानी लेकर अपनी पत्तियों द्वारा फालतू पानी को नमी के रूप में हवा में छोड़ते हैं। बेटा जिस तरह आदमी व अन्य जीव सांसों के द्वारा हवा में नमी छोड़ते हैं, उसी प्रकार पौधे भी हवा में नमी छोड़ते हैं।
2: और मानव इस प्रक्रिया को वाष्पोत्सर्जन कहा जाता है।
1: पापा ऊपर आसमान में देखिए कितने सारे पक्षी हैं, देखिए।
3: दृष्टि देखो पक्षी भी शाम होते ही अपने घोंसलों की तरफ लौटने लगते हैं।
1: देखो
2: बाबा कहीं चल के बैठ लिया जाए। आइए यहाँ
1: बैठो। पापा पार्क में कितना अच्छा लगता है ना, ठंडी ठंडी हवा, फूलों की महक, वो चहचहाते पक्षी।
2: और सुबह सुबह पापा और मैं जब यहाँ घूमने आते हैं तब भी ऐसा ही नजारा होता है।
1: हाँ तब कभी कभी यहाँ रंग बिरंगी तितलियाँ भी दिखाई दे जाती हैं, है ना पापा? भैया कल से आप मुझे भी अपने साथ लेकर आना।
4: अरे चल चल, स्कूल जाने के लिए तो समय पर तैयार हो नहीं पाता, सुबह 6 बजे कैसे घूमने आएगा।
3: मानव अगर तू सुबह जल्दी उठ गया तो मैं प्रॉमिस करता हूँ कि हम तुम्हें भी साथ लेकर आएंगे।
1: अच्छा पापा कल से मैं भी जल्दी उठकर आपके साथ घूमने आऊंगा।
2: मानव क्या सोच रहा है?
1: भैया मैं सोच रहा था कि हवा में जल के मौजूद होने पर जैसे गिलास की बाहरी सतह गीली हो जाती है, वैसे हमारा शरीर या अन्य पदार्थ गीले क्यों नहीं होते?
4: मानव हवा में उपस्थित वाष्प तभी द्रवित होती है जब वो हवा से कम तापमान की किसी वस्तु के संपर्क में आती है। जैसे गिलास में ठंडा पानी डालने पर गिलास की बाहरी परत गीली हो जाती है।
1: अच्छा तभी तो मैं कहूँ कि जब मैं गिलास नल के पानी से भरता हूँ तब गिलास की बाहरी परत गीली क्यों नहीं होती। अच्छा भैया क्या ये वाष्पन हमेशा होता रहता है?
2: हाँ मानव हमेशा, कभी कम तो कभी ज्यादा।
3: पर कभी ऐसी स्थिति भी आती है जब वाष्पन बिल्कुल नहीं होता बेटे।
1: वो क्यों?
2: क्योंकि वाष्पन किसी स्थान पर वायु के तापमान पर निर्भर करता है।
1: भैया हमारी टीचर ने बताया था कि हवा की नमी की मात्रा को आर्द्रता कहते हैं और किसी भी समय हवा की अधिकतम नमी को सोखने की एक सीमा होती है।
2: अच्छा।
1: हवा की नमी धारण करने की इस अधिकतम क्षमता को हवा में मौजूद नमी की तुलना को अपेक्षित आर्द्रता कहते हैं।
2: क्या बात है मानव, क्या बात है, कमाल है मानव, कमाल, खीर का असर है सब। ऐसे मानव बात तो तुमने बिल्कुल ठीक कही, अगर हवा में मौजूद नमी हवा की कुल नमी सोखने की क्षमता के बराबर हो जाए तब वाष्पन की क्रिया नहीं होती है।
1: अच्छा जैसे मुझे भरपेट खीर मिल जाए तो फिर और कुछ खाने की इच्छा ही नहीं होगी।
4: वाह मानव, पार्क की खुली हवा से तेरा दिमाग भी खुल गया लगता है।
2: भाई कभी कभी ही तो मानव समझदारी की बात करता है।
1: अच्छा भैया जल चक्र में वाष्पन के बाद कौन सी क्रिया होती है?
4: वाष्पन के बाद संघनन और फिर द्रवीकरण, है ना भैया?
3: लगता है सृष्टि ने खीर के साथ बादाम ज्यादा खाए हैं।
1: मेरे हिस्से के भी खा लिए लगता है।
4: क्या पापा आप भी मेरा मजाक उड़ाते रहते हो।
1: पापा दीदी रोज जो इतना पढ़ती है इसीलिए इतना कुछ जानती है।
2: और तुझे हम रोज पढ़ने को कहते हैं और तू फिर भी नहीं पढ़ता।
4: हाँ, तभी तो ये मानव नासमझ है क्या दीदी।
3: अच्छा जो भी हो, ये सही है कि भाप में जल के अणु गैसीय अवस्था में होते हैं। ये भाप ऊपर उठती जाती है और फिर धीरे धीरे इसमें उपस्थित जल के अणु आपस में टकराते हैं, जिससे इनकी गुप्त ऊर्जा कम होती जाती है और तब जल वाष्प के नन्हे नन्हे अणु आपस में जुड़ते जाते हैं।
4: मतलब संघनन की क्रिया आरंभ हो जाती है।
2: करेक्ट। हाँ सृष्टि, लेकिन संघनन की क्रिया तब शुरू होती है जब हवा नमी से लबालब भर जाती है।
4: भैया, क्या संघनन की क्रिया धूल के कणों पर भी निर्भर करती है?
2: हाँ, धूल के कण अधिक होने पर संघनन की क्रिया तेज हो जाती है।
1: भैया, जैसे खाने की महक मेरी भूख बढ़ा देती है, ऐसे ही ना?
2: हाँ मानव, अब तो तुझे मेरी सारी बात अच्छी तरह समझ आने लगी
4: नहीं
2: है।
4: नहीं भैया, आपकी बात नहीं, मानव खाने की बात जल्दी समझता है।
1: भैया, संघनन की क्रिया भी क्या मेरी भूख की तरह लगातार चलती रहती है?
2: मानव, तू और तेरी भूख। नहीं मानव, ऐसा नहीं। अच्छा एक बात बता, जब तुझे तेरी आवश्यकता अनुसार खीर मिल जाएगी तब तू और कुछ खाएगा क्या? और अगर खाएगा तो क्या होगा?
1: भैया, ज्यादा खाने से तो उल्टी हो जाएगी।
2: हाँ मानव, इसी प्रकार एक निश्चित ताप पर, जिसे ड्यू पॉइंट यानी ओसांग कहते हैं, इस ताप पर वर्षा की बूंदें बनना शुरू हो जाती हैं।
4: अच्छा भैया, तो आप जल चक्र की तीसरी अवस्था यानी द्रवीकरण की बात कर रहे हो, है ना?
2: सृष्टि, संघनन के द्वारा जल के अणुओं के आकार में वृद्धि होती जाती है। एक निश्चित आकार के बाद जल धरती पर वापस वर्षा के अनेक रूपों, जैसे वर्षा, ओले, हिमपात के रूप में बरसता है और ये क्रिया द्रवीकरण कहलाती है।
4: भैया, मैंने कहीं पढ़ा था कि प्रतिवर्ष जल चक्र द्वारा लगभग 40,000 घन किलोमीटर जल धरती से वाष्पित हो संघनन व द्रवीकरण के बाद धरती पर वापस गिरता है।
2: इस प्रकार वाष्पन, संघनन और द्रवीकरण द्वारा जल चक्र से जल की विशाल मात्रा धरती और हवा के मध्य चक्रित होती रहती है।
1: लेकिन भैया, जल में विलय लवणों का क्या होता है?
2: मानव, जल में विलय लवण वाष्पन की क्रिया में ज्यों के त्यों रहते हैं।
4: अच्छा, तो समुद्र में इसीलिए लवणता बढ़ती जाती है।
1: तो क्या धरती पर सभी जगह जल की वाष्प उपस्थित होती है?
3: मानव बेटा, अत्यंत सूखे रेगिस्तानी इलाकों को छोड़कर पृथ्वी पर हवा में जल वाष्प की मात्रा 0 से लगभग 4% तक होती है।
2: धरती के कुल शुद्ध जल का एक भाग का भी 1,000वां भाग वातावरण में जल चक्र द्वारा वाष्प के रूप में मौजूद रहता है।
3: बच्चों, तुम्हारी बातें पूरी हो गई हो तो अब घर चलें।
1: हाँ पापा, अंधेरा भी हो गया है।
3: मुझे डर भी लग रहा है।
4: मानव को खीर खाने की भी जल्दी हो रही होगी, है ना मानव?
1: दीदी, अब तुमने खीर याद दिला ही दी है तो अब घर तो चलना ही पड़ेगा।
2: चलो भाई, मुझे पढ़ाई भी करनी है।
4: हाँ, अब तो सूर्य भी अस्त होने को है।
2: अरे सृष्टि, इससे याद आया, धरती और हवा के बीच का ऊष्मा वितरण सूरज की ऊर्जा के सहयोग से ही संभव हो पाता है, जिसमें जल की महत्वपूर्ण भूमिका होती है।
3: हाँ बेटा, सूर्य की गर्मी से पृथ्वी पर जल चक्र नियमित चलता रहता है
1: और पार्क में भी गुलाब के फूल खिलते रहते हैं।
3: हाँ मानव, सूर्य ऊर्जा से ही पौधे अपना भोजन बनाते हैं।
1: लेकिन सूरज गर्मी भी बरसाता है।
4: मानव, धरती पर जीवन के लिए गर्मी भी तो आवश्यक है।
3: अरे चलो भाई, चलो घर चलो, शाम के ठंडे मौसम में गर्मी की बात अच्छी नहीं लगती।
1: लो, अब तो घर भी आ गया है। शायद नल नहीं आया, मम्मी बाहर ही खड़ी हैं।
3: अरे क्यों वसुधा, नल में पानी नहीं आया क्या?
5: हाँ जी, कोई कह रहा था कि चौराहे की टंकी में पानी नहीं भरा है, इसलिए नल नहीं आएगा।
1: मम्मी पता है, आज हम पार्क में बहुत घूमे और अब तो मुझे भूख भी लग गई है।
2: मम्मी, अपनी पानी की टंकी तो भरी है ना?
5: हाँ हाँ, क्यों?
2: बस नहाने की इच्छा हो रही थी।
5: तो नहा लेना बेटा, टंकी में इतना पानी तो है ही।
1: मम्मी, आज मैंने वातावरण में पानी की उपस्थिति के बारे में बहुत सारी बातें जानी है।
4: हाँ मम्मी, आज विवेक भैया ने मानव को जल चक्र के बारे में बहुत कुछ बताया है।
5: तो तुमने आज पार्क में घूमने के साथ साथ अच्छी बातें भी सुनी।
1: हाँ मम्मी, और अब मैं खीर खाने की तैयारी करने जा रहा हूँ, मगर पहले नहा लूँ। कहाँ रखा है मेरा तौलिया?
5: अरे बाथरूम में, और कहाँ? अच्छा, जा, अच्छा, जा, जा, जा, जा, जा।
2: लो मम्मी, मैं तो नहा लिया, अब जिसे नहाना हो नहा ले।
1: मम्मी मैं भी आता हूँ।
5: अरे कहाँ जा रहे हो, अभी तो आए हो तुम बाथरूम से, मैंने तुम्हारी खीर लगा दी है।
1: मम्मी मैं नल टाइट बंद करने जा रहा हूँ, अब मैंने जल के महत्व को जान लिया है।
2: चलो भाई, अब अगर मानव जल संचय करना सीख गया तो फिर सारी समस्याएं दूर।
5: मानव खीर पर टूट पड़ा है, इधर जल्दी चलो वरना खीर संचय नहीं हो पाएगा।
2: चलो भाई चलो जल्दी।

0: धरती मेरी धरती। अभी आप विज्ञान प्रसार के संयुक्त प्रयास से तैयार और प्रसारित किए जाने वाले विज्ञान धारावाहिक धरती मेरी धरती की 21वीं कड़ी सुन रहे थे, हवा में जल।
1: Hi, this is Sharmali Kholgare and you're listening to me on 90.8 FM Suno Sharda।

0: ग्रेटर नोएडा के शारदा अस्पताल ने समाज के प्रति अपनी जिम्मेदारी समझते हुए
1: ग्रामीण और गरीब तबके के मरीजों के लिए 500 बेड समर्पित किए हैं।
0: अब महंगे इलाज और दवाइयों से मिलेगा आपको छुटकारा,
1: क्योंकि सरकारी अस्पताल की तर्ज पर शारदा अस्पताल में आधारभूत जांचें, दवाइयां, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड और डॉक्टर की सलाह समेत सभी सुविधाएं मुफ्त दी जा रही है। अधिक जानकारी के लिए 7428292462 या फिर 9803742732 पर संपर्क करें।

0: सफाई ही आधा ईमान है,
1: यानी स्वच्छता में ही ईश्वर का वास है।
0: और ये भी तय है, स्वच्छ रहकर ही हम तमाम बीमारियों को मात दे सकते हैं।
1: कैसे, कब कब हाथ धोने चाहिए, चलिए ये हम आपको बताते हैं।
0: खाना बनाने से पहले,
1: खाना खाने से पहले,
0: बच्चों को खाना खिलाने से पहले,
1: शौचालय के प्रयोग के बाद,
0: बच्चों के मल को साफ करने के बाद,
1: बाहर से आने के बाद,
0: पशु को छूने और उनके मलमूत्र को साफ करने के बाद,
1: खांसने और छींकने के बाद साबुन और साफ पानी से अपने हाथों को धोएं और हर बार हाथों को कम से कम 40 सेकंड तक धोएं।
0: हमारा भविष्य हाथों में है,
1: हम साथ मिलकर आगे बढ़ें।
0: यूनिसेफ के सहयोग से
1: सुनो शारदा 90.8 FM द्वारा
0: जनहित

भाई, मैं हूँ थारो ज्ञानी ताऊ, जो लेके आ रहा हूँ अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM नए अंदाज में। सुनो शारदा 90.8 FM, सगन सुन वारन कू ताऊ की तरफ से राम राम। भाई अपनो रेडियो सुनो शारदा 90.8 FM, सुबह 7 से लेकर रात के 8 बजे तक समुदाय की घनी जानकारी के साथ मनोरंजन भी सिर्फ ग्रेटर नोएडा के अपने रेडियो स्टेशन पर। तो सुनते रहिए सुनो शारदा 90.8 FM।

0: सुना शारदा 90.8 FM।
1: पापा कहते हैं बेटा बड़ा नाम करेगा, पता नहीं मेरा देवांश क्या करेगा। 12th पास हो गया देवांश, फ्यूचर के बारे में कुछ सोचा है कि नहीं सोचा है?
2: बिल्कुल सोचा है पापा।
1: क्या सोचा है?
2: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट ऑफर करता है एनिमेशन, VFX, गेमिंग डिजाइन एंड विजुअल इफेक्ट्स का कोर्स। मेरे तो सभी फ्रेंड्स ने वहाँ पे एडमिशन ले लिया है और आपके बेस्ट फ्रेंड शर्मा जी के बेटे ने भी वहाँ पर एडमिशन ले लिया है।
1: ये शर्मा वही है ना जिनके बेटे ने टॉप किया है?
2: जी पापा।
1: क्या बात है, तो फिर आज ही चलते हैं।
2: हाँ पापा बिल्कुल।
3: The programs under Sharda School of Media, Film and Entertainment are designed to enable students to develop skills to think about artistic and cultural interventions critically.
4: So where are you? The world is here at Sharda University.

0: शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट, जहां सपने सच होते हैं। यदि आपका भी सपना है जर्नलिस्ट बनने का, आरजे बनकर अपनी आवाज से दुनिया पर छा जाने का, स्टोरी टेलिंग, कैमरा टेक्निक्स, साउंड डिजाइन, सिनेमेटोग्राफी या फिर फिल्म मेकिंग में करियर बनाने का, तो आज ही विजिट करें SSMFE शारदा यूनिवर्सिटी। यकीन के साथ कहता हूँ, आप यहीं के होकर रह जाएंगे। अधिक जानकारी के लिए आज ही विजिट करें www.sharda.ac.in। नमस्कार, आप सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन, सुनो शारदा 90.8 FM, मेरे यानी गगन के साथ। जिंदगी में तनाव बहुत ज्यादा है और हर कोई ये चाहता है कि तनाव से मुक्त आप रहें, हम रहें। यही एक वजह की बात हेल्थ की आज हम बात करना चाहते हैं कि तनाव को कैसे दूर भगा सकते हैं। मैं समझता हूं, अगर आप एक अच्छी सी मुस्कान अपने ऊपर रखकर चलते हैं, धारण करकर चलते हैं, तो निश्चित तौर पर आप तनाव से अपने आप को बचा कर रख सकते हैं। कहने का आशय सिर्फ और सिर्फ यही है कि मुस्कान कितनी जरूरी है आपकी जिंदगी में, या यूं कहें कि आज का जो विषय है वो विषय है स्माइल प्लीज। बात करते हैं, मुस्कुराहट एक ऐसी दवा है जो इंसान को न केवल मुफ्त में मिलती है बल्कि ये उसके ज्यादातर शारीरिक और मानसिक रोगों के निदान में बहुत कारगर साबित होती है। मुस्कुराते रहने वाले मनुष्य की सेहत दुरुस्त रहती है और उसका मिजाज भी हमेशा बढ़िया रहता है। आइए जानते हैं मुस्कुराने के 10 हेल्थ बेनिफिट्स के बारे में। प्रतिदिन सुबह मुस्कुराहट के साथ उठना, नई ऊर्जा से भरकर अपने दिन का स्वागत करना, प्रसन्नता से जीवन जीने का सर्वोत्तम धन है। नंबर 2, मुस्कुराने से हमारा मन अपने आप ही चिंताओं से मुक्त हो जाता है और मन को एक आत्मिक सुकून मिलता है। नंबर 3, हंसी के ठहाकों के साथ तालियां बजाने से जीवन में उत्साह का संचार होता है तथा जब हम तालियों के साथ हंसी का व्यायाम करते हैं तो शरीर की सुप्त अवस्था में रहने वाली कोशिकाएं भी जागृत हो जाती हैं, जिससे शरीर में एक नई ऊर्जा का संचार होता है। नंबर 4, मुस्कुराना कई रोगों की अचूक औषधि है। ये एक ऐसी दवा है जिसका हमारे शरीर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। नंबर 5, मुस्कुराते रहने से मनुष्य का इम्यूनिटी सिस्टम सक्रिय होता है। इससे प्रकृति किलर सेल्स में बढ़ोतरी होती है जो वायरस जनित रोगों और ट्यूमर सेल को खत्म करने का कार्य करती है। मुस्कुराहट या दिल खोलकर हंसना हृदय के लिए एक सर्वोत्तम व्यायाम है जिसे टी सेल की संख्या में बढ़ोतरी होती है। नंबर 7, मुस्कुराने से एंटीबॉडी इम्यूनोग्लोब्यूलिन ए की मात्रा बढ़ती है जो श्वसन नली में होने वाले इन्फेक्शन से बचाव करती है। मुस्कुराने से तनाव को जन्म देने वाले हार्मोन्स का स्तर घटता है। पाचन तंत्र सही रखना, वजन घटाना और चर्बी कम करने में भी हंसी अहम भूमिका निभाती है। जोर से हंसने या मुस्कुराने से हमारे शरीर में एक तरंग सी दौड़ जाती है जिसमें एंड्रोफिन हार्मोन भी होता है जो प्राकृतिक रूप से हमारे शरीर का दर्द निवारक है। ये शरीर में स्फूर्ति बढ़ाने और स्वस्थ बनाए रखने में अहम भूमिका निभाता है। नंबर 9, मुस्कुराने से मस्तिष्क के दाएं और बाएं दोनों भागों की सक्रियता बढ़ती है जिससे आपकी मेमोरी शार्प होती है। मुस्कुराना एक ऐसी संजीवनी बूटी है जो मनुष्य की मनोस्थिति को बदलकर उसे खुश रहते हुए जीने का अंदाज सिखाती है। हमेशा मुस्कुराना एक सकारात्मक भावना है जिसमें व्यक्ति को ऊर्जावान और शांतिपूर्ण बनाने के सभी तत्व उपस्थित रहते हैं। जैसे उदास एवं मुरझाया हुआ चेहरा किसी को भी नहीं भाता है, तो वहीं एक मासूम बच्चे की खिलखिलाती सी मुस्कुराहट हर किसी को अपनी ओर आकर्षित कर लेती है, क्योंकि मुस्कुराना एक ऐसा एहसास है जो मन को सुकून प्रदान करता है। अतः हमें ये बात हमेशा ध्यान में रखना चाहिए कि मुस्कुराने के लिए कोई दिन कोई समय तय करने की जरूरत नहीं है। बस हमेशा अपने चेहरे पर मुस्कान कायम रखिए और सेहतमंद बनने के साथ साथ दूसरों को भी सेहतमंद बने रहने में काफी मदद कीजिए। ऐसी खास जानकारी के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना कम्युनिटी रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
1: हमारा शरीर जब अग्नि के संपर्क में आता है तो शरीर को बड़ी पीड़ा होती है। कल्पना करिए जब किसी इंसान के चारों तरफ आग ही आग हो और जब वो वहां फंस जाए जहां से निकलना मुश्किल हो, तो हम कल्पना कर सकते हैं कि कितनी बड़ी घटना दुर्घटना घट सकती है। आग से अपने आप को हम कैसे बचा कर रखें, वो कौन कौन सी सावधानियां हैं जो आपको हमें बरतने की बहुत जरूरत है। राम राम, दो असलाम, सत श्री अकाल, आदाब, मैं हूं गगन आपके साथ और आप सब सुन रहे हैं ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि कहीं कभी जनधन हानि ना हो, लेकिन अगर हम लापरवाही बरत रहे हैं तो ये हमारे लिए सही नहीं है। इस गर्मी के मौसम में हमें सिर्फ कुछ सावधानियों को ध्यान में रखने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में बढ़ती आग की घटनाओं की वजह से जनधन हानि हमें देखने को मिल रही है। और इन घटनाओं से सबक लेते हुए गौतम बुद्ध नगर जिला क्या कर रहा है उसके बारे में बात करते हैं, और हमें क्या करना है। क्लब, होटल, मॉल, स्कूल और अस्पतालों के प्रबंधकों के साथ एक हमें मीटिंग करनी चाहिए, जो कि सरकारी अमला ये करता रहता है समय दर समय। हमारा फर्ज बनता है कि इस तरीके की मीटिंग में हमें सहयोग करना चाहिए। जी हाँ, आपदा प्रबंधन योजना, इसके तहत अग्नि सुरक्षा उपकरण, हर मंजिल पर वर्किंग कंडीशन में स्मोक डिटेक्टर, फायर अलार्म और सही श्रेणी के अग्निशमक यंत्र लगाए, निकास मार्ग यानी कि आपातकालीन सीढ़ियों और बाहर निकलने के रास्तों को हमेशा साफ रखें, वहां कोई सामान जमा ना करें, विद्युत सुरक्षा यानी कि बिजली के आउटलेट को ओवरलोड ना करें, और शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए सालाना वायरिंग की जांच करवाएं, इमरजेंसी प्लान यानी अपने संस्थान या घर का एक फ्लोर प्लान यानी निकासी नक्शा बनाएं, और समय समय पर फायर मॉक ड्रिल का अभ्यास करें। आग लगने की स्थिति में तुरंत क्या करें, ध्यान दीजिए, अलार्म बजाएं। आग दिखने पर तुरंत फायर अलार्म का बटन दबाएं और आग चिल्लाकर दूसरों को सतर्क करें। तुरंत कॉल करें अग्निशमन सेवा को, सूचित करने के लिए तुरंत 101 नंबर पर कॉल करें। सीढ़ियों का प्रयोग यानी बाहर निकलने के लिए हमेशा केवल सीढ़ियों का उपयोग करें, लिफ्ट का उपयोग बिल्कुल ना करें। धुएं से बचाव अर्थात यदि कमरे में धुआं भरा हो तो नाक मुंह को गीले कपड़े से ढकें और फर्श पर झुककर या रेंगकर बाहर निकलें। दरवाजा जांचें, इसके अंतर्गत बात सामने आती है कि किसी भी बंद दरवाजे को खोलने से पहले उसे हाथ के पिछले हिस्से से छू कर देखें, यदि वो गर्म है तो उसे न खोलें। कहने का आशय यही है कि आपकी जान बेशकीमती है। कहते हैं कि सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, हमें दुर्घटना घटने से बचाना है तो सावधानी को ध्यान में रखना है। अपना ख्याल रखिए और ऐसी जनहित में जारी जानकारी को सुनने के लिए सुनते रहिए ग्रेटर नोएडा का आपका अपना सामुदायिक रेडियो स्टेशन सुनो शारदा 90.8 FM।
2: तुम ना शादी के बाद भी ऐसे ही रहना, बिल्कुल बदलने की जरूरत नहीं है।
3: अरे वाह, आज तो एकदम शाहरुख खान निकल रहा है।
2: सच्ची?

0: फिल्म मेकिंग एक क्रिएटिव फील्ड है और यदि आप क्रिएटिव सोचते हैं तो ये फील्ड आप ही के लिए है। तो आज ही विजिट करें शारदा यूनिवर्सिटी के शारदा स्कूल ऑफ मीडिया फिल्म एंड एंटरटेनमेंट डिपार्टमेंट में। यहाँ से आप फिल्म निर्माण से जुड़ी बारीकियाँ सीखकर फिल्म और टीवी प्रोग्राम बनाने से लेकर एडवर्टाइजिंग फिल्म, डॉक्यूमेंट्री फिल्म, वीडियो एल्बम में और इस क्षेत्र से जुड़े फील्ड में आप अपना करियर बना सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए विजिट करें www.sharda.ac.in।
1: The world is here.
2: ओकुड़ी मैनू कहती